एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 सितंबर सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 14 सेकंड हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकरोधी नीति और रणनीति प्रहार सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में प्रहार के 7 स्तंभों पर चर्चा हुई। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सभी तरह के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से 2026 के बीच सरकार 36 देशों से 288 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाई है। श्री शाह ने नया प्रत्यर्पण पोर्टल भी शुरू किया। ये विदेशों में मौजूद भगोड़ों को भारत वापस लाने के प्रयासों में समन्वय और तेजी लाने में सहायता करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में होगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के इस सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों और स्थानों के संचालक तथा क्षेत्रीय कमांडर भाग लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अभियानगत तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्री हितों की रक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बीच चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमरीका की यात्रा पर रहेंगे। वे कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। श्री गोयल अन्य सदस्य देशों के व्यापार और उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। श्री गोयल अमरीका के वाणिज्य मंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसमें भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने तथा अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने के प्रयासों पर चर्चा होगी। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा बढ़ाने को भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं को त्रुटियों के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं, बूथ स्तर के अधिकारी उनके घरों से दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसका उद्देश्य मतदाताओं के लिए सुनवाई प्रक्रिया को सुगम बनाना है। इस बीच SIR के अंतर्गत आज से दिल्ली के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में युवा मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। देश में इस वर्ष अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP द्वारा मापे गए औद्योगिक उत्पादन में वार्षिक आधार पर 8% की वृद्धि हुई है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक गतिविधि का विस्तार जारी है। जुलाई की IIP वृद्धि दर पहले के 6.7% के अनुमान से बढ़कर 7.4% हो गई है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी, क्रिकेट, कुराश, एथलेटिक्स और मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पुरुष क्रिकेट टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब तक भारत कुल 45 पदक प्रतियोगिता में जीत चुका है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन। प्रभु के चरणों में समर्पण का अर्थ केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करना नहीं, बल्कि अपने मन को भी प्रभु की इच्छा के प्रति सहज बनाना है। हम जीवन में बहुत कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन हर इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं। कभी रास्ते हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होते, फिर भी हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए कि प्रभु जो कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई सीख जरूर छिपी है। पूर्ण समर्पण तब है जब सुख में हम प्रभु को भूले नहीं और कठिन समय में उनसे शिकायत करने की बजाय उनका हाथ थामे रहें, अपनी चिंताएं, भय और अहंकार को उनके चरणों में रख दें, कर्म पूरी ईमानदारी से करते रहें और परिणाम की इच्छा प्रभु की इच्छा पर छोड़ दें। यही समर्पण मन को सच्ची शांति देता है। चिंतन के बाद अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका प्रभु के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण था। आइए इसी भाव के साथ हनुमान जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हैं, उनका गुणगान करते हैं

भगवान शिव के दर्शन की चाह केवल आंखों की इच्छा नहीं, आत्मा की पुकार भी है। जिस पल मन सच्चे भाव से महादेव को याद करता है, वही पल अपने आप में पावन हो जाता है।

माता रानी की द्वार में सच्चे मन से झुका सर और श्रद्धा से फैला आंचल कभी खाली नहीं लौटता। माँ अपने भक्तों की हर मनोकामना हर इच्छा को पूर्ण करती हैं।

श्रोताओ, ये थी कार्यक्रम वंदना की अंतिम भक्ति रचना। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:40 हुए हैं। अब सुनिए श्री रामचरित मानस से एक और भक्तिमय रचना, मानस गान।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: श्रोताओं, अभी आपने मानस गान का भाग 224 सुना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। 7:10 पर रोजाना आप सुना करते हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। लोकगीतों का कार्यक्रम शुभप्रयाग हम आपको सुनवाएंगे 7:40 पर। सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 8:30 पर आज सुनिएगा लोक संगीत। सुबह 9:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण। ये कार्यक्रम 9:50 तक सुना जाएगा और 9:50 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन, जिसे आकाशवाणी शिमला से रिले किया जाएगा। 10:00 हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों का कारवां लेकर, पहाड़ों के सुर। लोकगीतों का ये कार्यक्रम 10:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 11:00 आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो एक बार आपको फिर लिए चलेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए। लोकगीतों का आनंद एक बार श्रोता फिर ले सकते हैं 11:05 पर। 11:30 का समय रहता है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग के प्रसारण का। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम सैनिक भाई बहन सुनते हैं दोपहर 12:00। 12:30 पर बहनें अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनो सखी सुनेंगी। 1:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 1:10 से लुत्फ उठाइएगा विविध भारती के कार्यक्रमों का, जिन्हें हम आकाशवाणी मुंबई से रिले करेंगे। इसी दौरान दोपहर 3:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे शाम 5:00 तक और शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से हम समाचार रिले करेंगे। शाम 5:10 पर आनंद लीजिएगा संध्याकालीन भजनों का। आज कार्यक्रम में फिल्मों से कुछ भजन सुनवाए जाएंगे। युवा साथी कार्यक्रम युवा मंच सुन सकते हैं शाम 5:25 पर। आज कार्यक्रम में बात होगी सैर सपाटा के अंतर्गत। शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे सुरमई सांझ। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम का लुत्फ आप उठाएंगे शाम 6:05 पर। किसान बागवान भाई बहनों के कार्यक्रम मौजियां गराइंदियां का प्रसारण किया जाएगा शाम 6:30 पर। शाम 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आकाशवाणी शिमला से आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी। शाम 7:45 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 8:00 आनंद लीजिएगा मिलेजुले गीतों के कार्यक्रम सबरस का। देशगान रात 8:30 पर सुनवाए जाएंगे। रात 8:45 पर समाचार संध्या 9:00 न्यूज 8:09 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज गायक शान के गाए कुछ गीत आप सुन पाएंगे। धाम गीता दिए कार्यक्रम सुनिएगा 9:30 पर और 10:30 तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। इसी दौरान 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे दिल्ली हाईलाइट्स ऑफ एशियाई खेल 2026। 10:30 पर लुत्फ उठाना न भूलिएगा पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा। चित्रपट संगीत और सभा के अंत में समाचार आप सुन सकते हैं। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये समाचार बुलेटिन रिले किए जाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही देर में पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। न्यूयॉर्क नगरे आयोजितायाः संयुक्त राष्ट्र महासभायाः 81वें सत्रस्य उच्चस्तरीय उपवेशने भारतेन रंगभेदस्य, प्रजातीय विभेदस्य, परदेशी द्वेषस्य तथा तत्सम्बद्धानां असहिष्णुतानां उन्मूलनार्थं स्वकीया असंदिग्धा प्रतिबद्धता पुनः प्रकटिता। DDPA इति दुर्बन घोषणा तथा कार्ययोजनायाः अंगीकरणस्य 25वें वार्षिकस्य स्मरणावसरे भारतस्य आधिकारिकं वक्तव्यं वितरता विदेश कार्यमंत्रालयस्य सचिवेन CB जॉर्ज इत्यनेन जागतिक समतायाः मानव प्रतिष्ठायाः च संवर्धनार्थं भारतस्य पक्षः प्रकटीकृतः। विदेश कार्यमंत्रालयस्य प्रवक्त्रा रणधीर जयसवालेन उक्तं यत् सचिवेन सर्वेषां कृते समानतायाः गौरवस्य च संरक्षणार्थं अमोघ संकल्पः पुनः संप्रख्यापितः। ONGC इत्यायोगस्य अन्वेषण निदेशकः ओम प्रकाश सिंहा संप्राह यत् E20 एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इंधनं वैदेशिक तैल आयातं अधिक मात्रायां घटयित्वा देशस्य आत्मनिर्भरतां वर्धयिष्यति। अहमदाबादे भारत ऊर्जा सप्ताह 27 इत्यस्य पूर्वालोकन प्रसंगे भाषमाणः सः अवोचत् यत् E20 इंधनम् एकं समाह्वानम् अस्ति, किन्तु आधुनिक प्रविधिना अस्य परिहारो भविष्यति। सः स्पष्टं न्यगादीत् यत् पश्चिमैशिया युद्धस्य कारणात् जगति देशैः वैदेशिक निर्भरता न्यूनीक्रियते। अस्मिन् काले भारतस्य वर्धमानां ऊर्जा आवश्यकतां विचार्य भारत ऊर्जा सप्ताहः एका प्रमुखा पीठिका वर्तते। भारतीय रेल विभागेन पूर्वोत्तर रेल विभागस्य वाराणसी मण्डले 14,600 किलोमीटर परिमित क्षेत्रे कवच 4.0 इति प्रणाल्याः स्थापनायै 23,200 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। अनुमोदितया परियोजनया वाराणसी मण्डलस्य चिह्नितेषु अवशिष्टेषु खण्डेषु कवच 4.0 इति प्रणाल्याः विस्तारो भविष्यति, येन रेल परिचालनाय उपलब्धं सुरक्षातंत्रं सुदृढं भविष्यति। उपक्रमोयम् अधिक सुरक्षितं

0: विश्वसनीयं च रेल परिचालनं सुनिश्चेतुं तथा सम्पूर्णे भारतीय रेलजाले स्वदेशीय कवच प्रौद्योगिक्याः विस्ताराय क्रियमाणानां प्रयासानां समर्थनं करिष्यते। भारतेन स्वीय वस्तूनां सेवानां च आहत्य निर्यातस्य परिमाणं 63.8 बिलियन डॉलर परिमित धनात् वर्धयित्वा 1 ट्रिलियन डॉलर परिमितं विधातुं उच्च लक्ष्यं विनिर्धारितम्। ह्यः मुंबय्यां संजातस्य भारत संयुक्त अरब अमीरात निवेश संबंधी उच्चस्तरीय संयुक्त कार्यबलस्य 14 उपवेशनानन्तरं अस्य ऐतिहासिक लक्ष्यस्य घोषणा कारी। वाणिज्योद्योग मंत्रिणा पीयूष गोयलेन प्रोदीरितं यत् जागतिक संकटेषु सत्यपि प्रवृत्तस्य वित्तीय वर्षस्य प्रथम षट् मासेषु पण्य निर्याते 15% अधिकं वृद्धिः समवापि। जापान देशस्य आईची नागोया नगरे आयोज्यमानासु एशिया क्रीडासु भारतस्य पदक प्राप्ति क्रमः ह्यः अपि अनुवर्तितः। लक्ष्यवेद क्रीडा क्रिकेट कुराश मुष्टियुद्धम इत्यादिषु क्रीडासु भारतीय क्रीडकैः पदकानि प्राप्तानि। भारतेन पदक संख्यायां 8 पदकानि अधिकानि योजितानि। भारतीय पुरुष क्रिकेट दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। पुरुषाणां कुंतक्षेप स्पर्धायां भारतस्य 2 पदके प्राप्ते। यशवीर सिंहेन रजत पदकं तथा रोहित यादवेन कांस्य पदकं अवाप्तम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्र हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को और मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस बुधवार से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा होगी। इस यात्रा से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तु, कृषि कारोबार, खुदरा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वे कारोबारियों, स्टार्टअप और नवोन्मेषी कंपनियों के साथ परिचर्चा में भी हिस्सा लेंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि UAE ने भारत में अब तक करीब 25 अरब डॉलर का निवेश किया है और जल्द ही 25

0: अरब डॉलर का अतिरिक्त निवेश भी करने जा रहा है। हमारा दीर्घकालिक निवेश का लक्ष्य 100 अरब डॉलर है। भारत ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और इससे जुड़ी असहिष्णुता से लड़ने के अपने संकल्प को दोहराया है। डर्बन घोषणा और कार्य योजना DDPA की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव CV जॉर्ज ने वैश्विक समानता और मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने पर भारत का रुख स्पष्ट किया। दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से अगले वर्ष 31 जनवरी तक धूल उत्पन्न करने वाली तोड़फोड़ गतिविधियों और बाहरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये फैसला केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बीच हुई बैठक में लिया गया। कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के 500 पेट्रोल पंप पर POC प्रमाण पत्र नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्रीशंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत, 21 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Union Home Minister Amit Shah inaugurated the conference on Prahar National City Policy and Strategy in New Delhi yesterday. The conference deliberated upon the 7 pillars of Prahar, including prevention, response, aggregating internal capacities, human rights, attenuating conditions for terrorism, aligning international efforts and recovery and resilience through a whole-of-society approach. Speaking on the occasion, the Home Minister said, The government has adopted a zero-tolerance policy against all forms and manifestations of terrorism. He highlighted that from 2019 to 2026, the Narendra Modi government successfully brought back 288 fugitive criminals to India from 36 countries. Mr. Shah said as a result of better coordination among agencies, more than 40 modules of Shehzad Bhatti network involved in cross-border smuggling of weapons, explosives and narcotics were busted. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 Trade Ministers meeting, which will commence tomorrow. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal will hold bilateral meetings with his counterparts. The engagements will focus on expanding opportunities for farmers, fishermen, women entrepreneurs, startups, MSMEs and other enterprises. The minister will also engage bilaterally with his counterpart from the United States as part of ongoing efforts to advance a balanced and mutually beneficial India-US bilateral trade agreement and finalize an interim deal. The Supreme Court has directed the Centre and the CBSE to consider extending to the current Class 6 students the exemption from the three-language framework that has been granted to students of Class 7. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Joy Mallya Bagchi and V. Mohanna asked the Centre and the CBSE to grant the same relaxation granted to students of Class 7, 8 and 9 to students of Class 6 this year. The Solicitor General told the bench that the latest data showed that implementation-related difficulties affected only about 1.2% of CBSE-affiliated schools. According to the Centre, nearly 99% of schools had adopted the third language policy and had the necessary facilities. Indian Navy will host the second edition of Commanders Conference 2026 in New Delhi from today till Thursday. The three-day conference will provide an avenue for senior naval leadership, including outstation operational and area commanders. On the opening day of the conference, Defence Minister Rajnath Singh will share his vision and guidance on national maritime perspectives and expectations from the Indian Navy. The Chief of the Defence Staff and the Chief of the

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ, कभी आपने एक बात पर गौर किया है, या आपने कभी सोचा है कि सुबह की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है, सुबह का सबसे खूबसूरत किस्सा क्या होता है? चले, दिमाग पर बिल्कुल भी जोर मत डालिए। हम नहीं चाहते सुबह सुबह हमारे श्रोता दिमाग पर जोर डालें। हम ही आपको बताते हैं, सुबह की सबसे खूबसूरत बात है कि ये आपके पास हर रोज एक नया मौका लेकर आती है फिर से शुरुआत करने का। एक नया दिन, नई सोच, नई उम्मीद और खुद को थोड़ा खुश करने की एक और नई वजह ढूंढने का मौका। तो स्माइल कीजिए, जी हाँ, मुस्कुराइए जनाब, क्योंकि आपकी सुबह अब और खूबसूरत होने वाली है। लेकर आ गए हैं हम प्रोग्राम सुबह सुहानी, जिसमें ढेरों जानकारियां आपके लिए होती हैं, साथ ही साथ प्यारे प्यारे से गीत आपके लिए होते हैं, और सबसे पहले बात होती है सुविचार की। तो जानते हैं आज का सुविचार। कर्म ध्यान से कीजिए, किसी की ना तो दुआ खाली जाती है ना ही बद्दुआ। बिल्कुल श्रोताओं, कर्म सिर्फ वो नहीं जो हम दुनिया को दिखाई देते हुए करते हैं, कर्म वो भी है जो किसी के दिल पर असर छोड़ जाते हैं। किसी के मुश्किल वक्त में दिया हुआ साथ दुआ बन सकता है और किसी का दिल दुखाना बद्दुआ का कारण बन सकता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ते हुए इतना ध्यान रखिए कि हमारे कर्म जो हैं वो ऐसे हों किसी के लिए दर्द का कारण ना हो, बल्कि राहत की वजह जो है हमारे कर्म किसी के लिए बने, किसी की खुशी का हिस्सा बने हमारे द्वारा किए गए काम। बिल्कुल, हम भी आपके लिए राहत की वजह अब बनेंगे इस प्यारे से गीत के साथ, और कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, बाकी की बातें करेंगे इस गीत के बाद।

103.4 मेगाहर्ट्ज पर इस समय आप जुड़े हुए आकाशवाणी धर्मशाला के साथ सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। दोस्तों, अगर आज से पीछे मुड़कर देखें तो इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी बताता है कि उन घटनाओं का क्या असर रहा। और 29 सितंबर के पन्नों पर भी संघर्ष है, उपलब्धियां हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें याद करना जरूरी है। तो आइए 29 सितंबर के इतिहास के पन्नों को साल दर साल पलटते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं साल 1836 में। आज के दिन 1836 में मद्रास में मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स

और इंडस्ट्री की स्थापना हुई। व्यापार और उद्योग से जुड़ी गतिविधियों को संगठित रूप देने वाली इस संस्था ने आगे चलकर मद्रास के व्यावसायिक इतिहास में अपनी जगह बनाई। और अब करीब एक सदी आगे बढ़ते हैं, तारीख वही है, लेकिन इस बार कहानी एक ऐसी भारतीय उपलब्धि की जिसने देश का नाम समुद्र के उस पार तक पहुंचा दिया। लहरों से मुकाबला और इतिहास की नई लकीर। साल था 1959। भारतीय तैराक आरती शाह ने इंग्लिश चैनल पार करके इतिहास रचा और ऐसा करने वाली पहली एशियाई महिला वो बनी। ये सिर्फ एक खेल उपलब्धि नहीं रही, ये इस उस दौर में भारतीय महिला खिलाड़ियों के साहस और क्षमता का शानदार उदाहरण भी बनी। समुद्र की लहरों से अब नजर उठाइए और पहुंचिए आसमान के तारों तक। 29 सितंबर साल 1962 की ये बात कोलकाता का प्रसिद्ध बिरला तारामंडल आज के दिन जनता के लिए खोला गया, जिसका औपचारिक उद्घाटन बाद में साल 1963 में हुआ। आसमान, ग्रहों और तारों की दुनिया को आम लोगों और विद्यार्थियों के करीब लाने वाली ये जगह विज्ञान को समझने और उसमें रुचि जगाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। और अब इतिहास का ये सफर आ पहुंचा है साल 2006 में, जहां कहानी धरती के ऊपर उठकर सीधे अंतरिक्ष तक जाती है। 29 सितंबर साल 2006 को ईरानी मूल की अमेरिकी नागरिक अनुशेह अंसारी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपनी अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके पृथ्वी पर सकुशल लौटी। वे दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक थीं और उनकी ये यात्रा अंतरिक्ष पर्यटन के इतिहास में एक यादगार पड़ाव बनी। और इस तरह 29 सितंबर के ये अलग अलग पड़ाव हमें एक लंबी यात्रा कराते हैं। व्यापार और संस्थाओं के विकास से लेकर स्वतंत्रता संग्राम, खेल की उपलब्धि, विज्ञान, दुनिया और राष्ट्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण अध्याय जुड़े हैं। यही तो है इतिहास। हर तारीख अपने साथ सिर्फ बीता हुआ कल नहीं लाती, बल्कि उस दौर की सोच, संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी भी लेकर आती है। और अब हम इस कहानी को, यानी आज के इतिहास को, थोड़ा सा विराम लगाते हैं और श्रोताओं का मनोरंजन करवाते हैं इस प्यारे से गीत के बाद, और बातचीत जारी रहेगी इसके बाद।

कार्यक्रम सुबह सुहाने में एक बार फिर सभी श्रोताओं का स्वागत। आज के इतिहास की जानकारी हम साझा कर रहे हैं। अब इतिहास की घटनाक्रम में थोड़ा रुक करते हैं उन चेहरों की तरफ जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पहचान बनाई। 29 सितंबर को जन्मे नामों में सबसे पहले याद आते हैं बृजेश मिश्रा, भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अनुभवी राजनयिक। कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान बहुत सराहनीय रहा। इसी तारीख ने हिंदी सिनेमा को दिया महमूद जैसा शानदार कलाकार। अभिनय, कॉमेडी, गायन और निर्देशन, कई भूमिकाओं में उन्होंने अपनी पहचान बनाई और 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। और न्यायपालिका के इतिहास में भी 29 सितंबर का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन ने दिया एक महत्वपूर्ण नाम न्यायमूर्ति SH कपाड़िया, जो आगे चलकर भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। यानी एक ही तारीख किसी को कूटनीति की दुनिया में पहचान देती है, किसी को अदालत के सर्वोच्च पद तक पहुंचाती है और किसी को सिनेमा के पर्दे पर अमर कर देती है। अब कुछ उन नामों को याद करते हैं जिनकी विदाई भी अपने पीछे एक बड़ी विरासत छोड़ गई। मातंगिनी हजारे, इनका नाम आज की तारीख के साथ सामने आता है। ये एक ऐसी वीरांगना है मातंगिनी हजारा, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साहित्य की दुनिया में बालमणि अम्मा को याद करना 29 सितंबर को ज़रूरी हो जाता है। मलयालम की प्रसिद्ध कवियत्री, जिन्हें उनकी मातृत्व केंद्रित रचनाओं के कारण विशेष पहचान मिली, साल 2004 को इस दुनिया से रुखसत हुई और सिनेमा की दुनिया के प्रसिद्ध अभिनेता, रंगकर्मी और लेखक टॉम ऑल्टर, जिन्होंने हिंदी सिनेमा और थिएटर में अपनी एक अलग पहचान बनाई, आज ही के दिन साल 2017 में इस दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा। ये तो बात हुई श्रोताओं इतिहास की, और इतिहास हमें हर दिन नई जानकारी देता है और हर दिन हमें अचंभित करता है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हम अछूते हैं, जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता। और हमारे माध्यम से यही कोशिश होती है कि उन विषयों पर हम आपको जानकारी दें। श्रोताओं, थाली में खाना परोसते वक्त हम अक्सर स्वाद देखते हैं, लेकिन क्या कभी इसकी कीमत के बारे में भी हमने सोचा है? उसे एक निवाले तक पहुंचने में किसान की मेहनत, पानी, ज़मीन, ऊर्जा और न जाने कितने लोगों का योगदान उस निवाले तक जुड़कर पहुंचता है। आज का दिन यानी 29 सितंबर हमें भोजन की बर्बादी पर रुक कर सोचने का मौका देता है। ये दिन खाद्य हानि और अपशिष्ट को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। खेत से बाजार तक और हमारी रसोई से डाइनिंग टेबल तक भोजन कई चरणों से होकर गुजरता है और कहीं ना कहीं उसका कुछ हिस्सा बर्बाद हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भोजन की बर्बादी के साथ पानी, जमीन, ऊर्जा और मेहनत जैसे संसाधन भी व्यर्थ जाते हैं। इसलिए 29 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस के रूप में मनाना हमें एक बहुत ही सादा सा संदेश देता है। उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। जी हाँ, आदत छोटी है लेकिन अगर हर घर अपनाए तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। कार्यक्रम में बातचीत को अब कुछ पल के लिए विराम लगाते हैं, श्रोताओं का मनोरंजन एक बार फिर करवाते हैं।

0: आप जुड़े हुए इस समय आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी। श्रोताओं, घर की सफाई हमें अक्सर याद रहती है, मोबाइल चार्ज करना ये भी याद रहता है, गाड़ी की सर्विस करवानी है ये भी हमें याद रहता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी सर्विस का हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं आता, वो है हमारा दिल। आज का दिन यानी 29 सितंबर का दिन विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमें इसी तरफ ध्यान हमारा दिलाता है कि दिल की सेहत को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। जी हाँ, विश्व हृदय दिवस पर एक संदेश हमारे पास है, आइए संदेश सुनते हैं और देखते हैं डॉक्टर रचना हमसे क्या कहना चाहती हैं।
1: नमस्कार, आज 29 सितंबर 2026 को हम विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मना रहे हैं। इसे हर साल सन 2000 से वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हर साल एक नई थीम पर लोगों को हृदय संबंधी जानकारी और जागरूकता प्रदान करना है। इस बार की थीम है डोंट मिस अ बीट, यानी दिल की धड़कन को ना चूके। यह थीम इस बात पे जोर देती है कि हृदय की जो बीमारियां हैं वो बहुत छोटे छोटे हल्के लक्षणों के रूप में हमारे शरीर में छिपी रह सकती हैं, जैसे असामान्य थकान, सांस का फूलना या सीने में हल्के दर्द होना। इन लक्षणों को पहचानना, समय पर डॉक्टर से जांच कराना और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना ही इस बात की जागरूकता है। डॉक्टर कहते हैं कि हृदय रोगों से होने वाली 80% असामयिक मौतों को सही आदत और समय प्रबंधन यानी कि टाइमली मैनेजमेंट से रोका जा सकता है। इसके लिए हमें नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करानी चाहिए, जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर लेवल्स को टाइमली अपने डॉक्टर से चेक करवाते रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी अपनी रूटीन में हमें रखनी है, जिसमें कम से कम 30 मिनट की तेज वॉक, दौड़ना, साइकिल चलाना या योगा करना जैसी एक्टिविटी।

0: सेवन जो है वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ धूम्रपान और अन्य नशों से भी हमें दूरी बना के रखनी है। ज्यादा शराब का सेवन, उसका हमें परहेज करना चाहिए। इन सब चीजों को फॉलो करते हुए हम अपने हार्ट यानी कि हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। लास्ट में मैं ये बोलूंगी, टेक केयर ऑफ योर हार्ट एंड इट विल टेक केयर ऑफ यू, यानी अगर हम अपने दिल का ख्याल रखेंगे तो हम अपने जीवन को खुशहाल रखेंगे। धन्यवाद।
1: जी बिल्कुल, डॉक्टर रचना का ये संदेश हमने सुना। और दिल से जुड़ा कुछ भी आप महसूस करते हैं, कुछ भी दबाव दिल पर महसूस करते हैं, तो उस पर उसको कल पर ना टालें और कोशिश करें कि अपने दिल की सेहत का पूरी तरह से ख्याल रखें। और फिलहाल हम ख्याल रखेंगे आपके मनोरंजन का इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओं, सुबह सुहानी कार्यक्रम में अब वक्त है आज की खबरों का। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रखा और विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की दिशा में कई पहलों पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने साल 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। देश में प्रस्तावित 3 दिन की बैंक हड़ताल स्थगित कर दी गई है। यह हड़ताल 28 सितंबर को शुरू होनी थी। भारत और मंगोलिया के बीच पहली नियमित सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई है। नई दिल्ली से उलान बटार के बीच ये सेवा दोनों देशों के बीच यात्रा को आसान बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून, बाढ़ और भूस्खलन से हुई भारी नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम आज कुल्लू जिले के सैंज क्षेत्र का आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी। इसके बाद शाम को टीम जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ

0: बैठक करेगी। बात करें खेल समाचारों की तो जापान में चल रहे एशियाई गेम्स 2026 के नौवें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एथलेटिक्स, शूटिंग और कुराश में 8 नए पदक देश की झोली में डाले, जिससे भारत के कुल पदकों की संख्या 45 हो गई है। बॉक्सिंग में 3 भारतीय मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए 3 और पदक पक्के कर दिए हैं, जिनका मुकाबला आज और कल खेला जाना है। भारतीय क्रिकेट टीम की दूसरी तरफ वहीं बात करें तो उन्होंने कल मैच जो हुआ भारतीय और अफगानिस्तान के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला, खराब मौसम के कारण बिना किसी एक गेंद खेले ही रद्द करना पड़ा और मैच रद्द होने के बाद नियमों और बेहतर स्थिति के आधार पर टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल में पहुंच गई। भारत का ये सेमीफाइनल मैच 1 अक्टूबर को खेला जाएगा। बात करें मौसम की तो आज कई राज्यों में बारिश और गरज चमक की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, तमिलनाडु, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में आज भी हल्की से मध्यम बारिश रहने की संभावना है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। धर्मशाला की बात करें तो पिछले दिनों बारिश के कारण तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। 28 सितंबर को जो बारिश हुई उसके कारण तापमान में बहुत ही ज्यादा गिरावट आई है। आज भी बादल और हल्की बारिश रहने की संभावना है और मौसम सुहावना लेकिन ठंडा रह सकता है। जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम सुबह सुहानी में आज बस इतना ही।
1: सुबह सुहानी।
0: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी। अब वक्त है लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ भ्याग का।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है कुछ ही देर में। पहले आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, जिन्हें आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस वर्ष CBSE की त्रिभाषा नीति से कक्षा 6 के विद्यार्थियों को छूट देने पर विचार करने को कहा। भारतीय नौसेना आज से बृहस्पतिवार तक नई दिल्ली में कमांडर्स सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगी। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना तैयार की। अमेरिका ने भारत और 19 अन्य देशों से आयातित विशेष दवाओं पर टैरिफ हटाया और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के मौजूदा सत्र में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कक्षा 7 के विद्यार्थियों की तरह त्रिभाषा नीति से छूट देने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व वाली पीठ ने केंद्र सरकार तथा CBSE की ओर से उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा कि वे कक्षा 6 के विद्यार्थियों को भी वही छूट दें जो कक्षा 7, 8 और 9 के विद्यार्थियों को दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को CBSE से कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए 2027 से शुरू होने वाले अगले शैक्षणिक सत्र से भारतीय मूल की दो भाषाओं सहित 3 भाषाओं के अनिवार्य अध्ययन वाली अपनी नीति को लागू करने पर विचार करने को कहा था। ये विवाद CBSE के अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और विद्यालय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने के निर्णय से संबंधित है। इस रूपरेखा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए दो भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि को बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि प्रभावी वसूली की व्यवस्था में इस पहल से सुधार किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और PUC प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। भारतीय नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के बीच भारत के ऊर्जा हितों की सुरक्षा सहित समुद्र हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की भूमिका को रेखांकित करने की दृष्टि से यह सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय समुद्री हितों और भारतीय नौसेना से अपेक्षाओं पर अपना दृष्टिकोण और मार्गदर्शन साझा करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और थल सेना अध्यक्ष भी नौसेना कमांडरों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इसका उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और एकीकरण को सुदृढ़ करना है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा के लिए कल एक उच्चस्तरीय बैठक की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में अब तक उठाए गए कदमों और सर्दियों के मौसम से पहले उसके दौरान जरूरी उपाय की समीक्षा की गई।
2: कार्य योजना के अंतर्गत दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर पीयूसीसी नहीं तो ईंधन नहीं व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके लिए जागरूकता अभियान और नियमों का पालन सुनिश्चित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक तोड़फोड़ और निर्माण कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण सार्वजनिक अभियान के माध्यम से दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और परिवहन सुविधा बेहतर की जाएगी। वृक्षारोपण कार्य में तेजी लाई जाएगी और मलबा ऐप पर पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा। सर्दियों की कार्य योजना के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर रोक, अधिक पार्किंग शुल्क, कार्यालयों के समय में बदलाव और वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 और परिवर्तन योजना को बढ़ावा देने के लिए पंजीकरण अभियान और जन भागीदारी शिविर आयोजित किए जाएंगे। बैठक में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 37 चिन्हित प्रदूषण स्थलों पर 10 अक्टूबर तक जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित करने और संबंधित पक्षों को शामिल करने पर बल दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि निर्णयों तथा चिन्हित कार्रवाई बिंदुओं का धरातल पर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नितिका गुप्ता के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम नजर डालेंगे कि कैसे मिशन लाइफ की सहायता से इस सोच को जमीनी हकीकत में बदला गया है।
3: देश का 40% खनिज संसाधन समेटने वाले झारखंड में औद्योगिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने युवाओं को पर्यावरण अनुकूल आदतें सिखाने के लिए अपने सभी कॉलेजों में स्नातक स्तर पर 2 क्रेडिट और 10 सप्ताह का अनिवार्य कोर्स शुरू किया है। इस आंदोलन के मूल विजन को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं,
4: हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि प्रकृति से जितना हासिल किया है उसे लौटाने का प्रयास भी करना चाहिए। इसलिए भारत ने विश्व को एक नया मार्ग सुझाया है जिस पर चलते हुए हम पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। ये मार्ग है मिशन लाइफ, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का।
3: प्रधानमंत्री के इसी विजन को कोडरमा जिले की जरगा पंचायत ने सच कर दिखाया है। यहाँ के कझाटांड गांव की कभी बंजर रही भूमि को जल योद्धा पार्वती देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सामूहिक भागीदारी से हरा भरा कर दिया है। पार्वती देवी को इसके लिए राष्ट्रपति से सम्मान भी मिल चुका है।
5: पहले बारिश के पानी सीधे जंगल चल जाता था, कुछ नहीं होता था यहाँ पे। अभी जिसके घर जाइएगा सब सारा अनाज मिलेगा, बहुत अच्छा फसल होता है बारिश के पानी जब से रुका है।
3: साहिबगंज के आदिवासी इलाकों में इस साल 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर जल, जंगल और वन्य जीवों को नया जीवन दिया गया है। इससे स्थानीय आदिम जनजातियों को गांव में ही रोजगार और पत्तों और बांस से अतिरिक्त आय मिल रही है।
6: नाम है चुन्ना हल्दा। इस जंगल में हम लोग आम भी लगवाए हैं और केन भी है, फल उल दर है। उससे हम लोग गाँव वाला को भी यहाँ उस बेच उच करके हम लोग का सुविधा होगा।
3: ये बदलाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक सीमित नहीं है। झुमरी तिलैया जैसे शहरी क्षेत्रों में भी 10,000 से अधिक घरों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में गठित इको क्लब्स बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा और पानी की बचत सिखा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा और साहिबगंज से अनंत ओझा के साथ रांची से मैं महविश रहमान।
1: सरकार ने कहा है कि देश का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर इस वर्ष मार्च में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। इसमें करीब 61% की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजमार्गों के तेजी से विस्तार से संपर्क सुविधाएं मजबूत हुई है और बाजारों तक भी पहुंच बेहतर हुई है। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों को हरित बनाने का काम ग्रीन हाईवेज नीति 2015 के तहत किया जा रहा है।

0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे इस कल से शुरू होने वाली 2 दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से अलग श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को संतुलित और दोनों देशों के लिए लाभकारी बनाने के प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और निवेश संबंध और मजबूत होंगे। भारत ने इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं के कुल निर्यात को पिछले वर्ष के 863 अरब डॉलर से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों में देश के वस्तु निर्यात में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है। श्री गोयल ने कल मुंबई में भारत संयुक्त अरब अमीरात UAE निवेश संबंधी उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 14वीं बैठक के बाद संवाददाता को बताया कि भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होकर करीब 100 अरब डॉलर हो गया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
2: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका में भारत और 19 अन्य देशों से आयात होने वाली दुर्लभ बीमारियों के इलाज के में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ विशेष दवाओं और उनके संबंधित घटकों पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। अमेरिका के वाणिज्य विभाग ने इन देशों की सूची फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित की है। अमेरिका 29 सितंबर से कुछ पेटेंट दवाओं और उनके संबंधित घटकों के आयात पर 100% शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है। और अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
3: जापान में चल रहे एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने निशानेबाजी सहित कई स्पर्धाओं में और पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भी भारत को 2 पदक मिले हैं। यशवीर सिंह ने रजत पदक जीता जबकि रोहित यादव ने कांस्य पदक हासिल किया। पुरुषों की लंबी कूद में श्री शंकर मुरली ने रजत पदक जीता। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। निशानेबाजी में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस बीच भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत अफगानिस्तान क्वार्टर फाइनल मैच खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया। पदक तालिका में भारत कुल 45 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है, जिनमें 4 स्वर्ण, 20 रजत और 21 कांस्य पदक है।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरलम, माही, कोंकण, गोवा और ओडिशा में भी आंधी तूफान के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद जया। महिला सुरक्षा पर शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान की खबर को आज सभी अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है किशोरियों से गैंगरेप, पूरे तंत्र की विफलता, रेप मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कई निर्देश जारी, स्थिति रिपोर्ट तलब, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। आम लोगों से जुड़े 4 और मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां आज के अखबारों की सुर्खियां हैं। जनसत्ता ने UPI भुगतान से जुड़े फैसले को प्रमुखता से दिया है। सुप्रीम कोर्ट का MDR पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बवाल के बाद लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 10 दिन के लिए बंद, पंजाब केसरी की खबर है। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट का सुझाव लिखा है ट्रैफिक चालान ना भरें तो बिजली बिल में जोड़ दें, बच्चों की सोशल मीडिया पहुंच को नियंत्रित करने के लिए

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए लोक संगीत। जी हाँ श्रोताओं, लोक संगीत हमारी संस्कृति की सबसे मधुर परिचय ये लोक धुनें लेकर हाजिर हैं हम इस कार्यक्रम में। और शुरुआत इस कार्यक्रम की हम कर रहे हैं नियामत हुसैन के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
1: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
5: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
4: RBI कहता है जानकार बनिए,
5: सतर्क रहिए।
6: लोक संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। श्रोताओ, जहाँ लोक गीत बसते हैं वहाँ अपनी मिट्टी की महक अपने आप महसूस होने लगती है, और मिट्टी की इसी महक से आपको रूबरू हम करवा रहे हैं इस कार्यक्रम में। अगला लोकगीत लीजिए सुनिए, ओम प्रकाश और साथियों का गाया।

0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
0: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.67 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
0: Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
4: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
3: RBI कहता है जानकार बनिए,
4: सतर्क रहिए।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki France, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your France today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
5: जान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
6: लोक संगीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से। लोक संगीत हमारी पहचान है और हमारी विरासत भी। इन लोक धुनों में रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन की मिठास छिपी हुई है। अगली लोकधुन आपको सुनवा रहे हैं आवाज़ करनैल राणा की।

0: drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
0: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just ₹6.75 lakh.
1: Yes, ₹6.75 lakh. Valid till 30th September.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
0: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
4: अरे इतना तेज बुखार, ऊपर से खांसी और बदन दर्द, दवा ले लो।
5: हाँ वही पुरानी एंटीबायोटिक ले लेता हूँ।
4: नहीं, बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं, ये इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू भी हो सकता है। चलो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
6: तेज बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द या बहती नाक को नजरअंदाज ना करें। हाथ साबुन से बार बार धोएं और खांसते छींकते समय मुंह नाक ढकें। ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाएं। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
0: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display, and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
7: आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं, आज सुन रहे हैं लोक संगीत, जहां हर सुर में हिमाचल की आत्मा झलकती है। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत, जिसमें बात है हमारे प्यारे हिमाचल की।

0: यार 2 दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
1: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
2: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
1: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
2: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
3: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
4: Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
3: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa.
6: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
7: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
6: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
7: रेबीज जानलेवा है, लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
6: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
3: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
4: Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
3: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa.
8: देवभूमि हिमाचल की मीठी बोली, रंग बिरंगी संस्कृति और लोक धुनों की खुशबू इस समय हम बिखेर रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला पर। आप सुन रहे हैं लोक संगीत कार्यक्रम में। अब लीजिए सुनिए महेंद्र राम का गाया ये लोक भजन।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनबाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa. लोक संगीत आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं अंतिम पेशकश कमलेश कुमारी का गाया ये लोकगीत।

आप सुन रहे थे लोक संगीत। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वीं संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटी सी उंगली जिसने पहली बार स्कूल की किताब को छुआ, एक गाँव का बच्चा जिसके लिए स्कूल तक पहुंचना ही कभी सबसे बड़ी चुनौती थी, और एक युवा जिसके हाथ में डिग्री तो थी लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके सामने सवाल था कि क्या मेरी शिक्षा मुझे भविष्य के लिए तैयार कर रही है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ कक्षा, किताब और परीक्षा का नाम नहीं है। शिक्षा वो नींव है जिस पर किसी व्यक्ति का भविष्य और किसी राष्ट्र की दिशा तय होती है। गुजरात में शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे प्रयासों से शुरू हुई एक सोच ने स्कूल में प्रवेश से लेकर सीखने की गुणवत्ता तक का सवाल उठाया, और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, कौशल विकास, विशेषज्ञता आधारित उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में सुधार ने शिक्षा को केवल डिग्री नहीं बल्कि ज्ञान, कौशल और क्षमता से जोड़ने की दिशा तय की। इसी यात्रा में परीक्षा पे चर्चा ने परीक्षा को जीवन का अंतिम पड़ाव नहीं बल्कि सीखने की यात्रा का एक पड़ाव मानने की बात की। तो गुजरात से दिल्ली तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में बिताए 25 वर्षों में क्या कुछ बदला इस दिशा में, आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा में आज का हमारा विषय है शिक्षा और कौशल भविष्य की नींव। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ रही हैं पूर्व UGC सदस्य सुषमा यादव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद और नमस्कार।
1: संजीव जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने शाला प्रवेश उत्सव और गुणोत्सव जैसे अभिनव प्रयोग शुरू किए थे, और इसका असर ये हुआ कि राज्य में ड्रॉपआउट रेट काफी कम हो गए, और यहीं से जब आगे बढ़े तो निपुण भारत और विद्या प्रवेश जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जब हम देखते हैं तो गुजरात के उस मॉडल और आज के राष्ट्रीय विजन के बीच आप किस तरह का समायोजन या संबंध देख पा रहे हैं?
3: जैसे भारत कोशिश कर रहा है कि विकसित भारत बनने की 2047 में, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है उसके नागरिकों की शिक्षा। जब देश शिक्षा में निपुण होगा तभी देश आगे तरक्की कर सकता है। तो इस विषय में जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब 25 साल पहले अपनी यात्रा गुजरात से शुरू करी थी एज चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने वहां स्टेट में देखा, गुजरात तब शिक्षा के स्फेयर में इतना डेवलप्ड नहीं था, तो उन्होंने देखा ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है, सोशल डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं। सो उन्होंने ये दो इनिशिएटिव्स, एक शाला प्रवेशोत्सव जिसमें कि एंट्री एनरोलमेंट स्टूडेंट्स की बढ़ाने के लिए ये प्रयोग किया था 2003 में, सबसे पहले जो ड्रॉप आउट रेट था 37% था गुजरात में, तो धीरे धीरे करके इससे बढ़ते हुए बहुत कंसिडरेबल ड्रॉप आउट रेट रिड्यूस हुआ। तो एक तो ये था, और दूसरा था गुणोत्सव जिसमें कि इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी बच्चों की देखी जाती है। तो इन दोनों इनिशिएटिव से उन्होंने आगे प्रयोग शुरू किया और उसको अब स्टेट लेवल, जैसे गुणोत्सव तो असम में भी अडॉप्ट हुआ और कुछ और स्टेट्स भी अब करना चाह रही हैं, और नेक्स्ट इनिशिएटिव 7th edition जो है वो January 7, 2027 को होगा असम में, और गुजरात में तो चल ही रहा है। तो ऐसे इनिशिएटिव जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के फील्ड में जैसे भारत जाना जाता है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से, यूथ पॉपुलेशन जो यंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो भारत में है और वर्ल्ड में पॉपुलेशन एज हो रही हैं, तो भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब उसके जो नागरिक और यूथ हैं वो निपुण हो, शिक्षा के तरीके से स्किल्ड हो, निपुण हो, और तभी देश भी आगे तरक्की करेगा और तभी दुनिया में लीड कर सकता है भारत।
1: जी हाँ, हम अपने आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सरल शब्दों में बताएं तो गुणोत्सव जो योजना थी वो प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, छात्रों के सीखने के स्तर, शिक्षकों की उपस्थिति और स्कूल के बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन करने से जुड़ी थी। जब हम निपुण भारत की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बच्चा प्राथमिक कक्षा के अंत तक बुनियादी साक्षरता और जो नंबर ज्ञान है उसे अवश्य हासिल कर ले। विद्या प्रवेश की जब हम बात करते हैं तो इसका मुख्य मकसद यही रहा कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों को स्कूल के नए माहौल में ढलने और औपचारिक पढ़ाई के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार किया जा सके। विद्या प्रवेश की चर्चा को प्रोफेसर सुषमा जी अगर आगे बढ़ाएं तो जैसा कि विद्या प्रवेश के बारे में हमने बताया कि 3 महीने के प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल का मुख्य लक्ष्य रखा गया कि बच्चा जब स्कूल में जाए उससे पहले उसको एक भावनात्मक और शैक्षणिक माहौल प्रदान किया जाए कि स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो सके। कुछ समय पहले तक इस तरह की सोच रखना भी सरकारी स्तर पर किसी योजना को बनाया जाए कि बच्चा पहली कक्षा में जाने से पहले तैयार हो, इसके लिए कोई योजना लाई जाए, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता थी कि इस योजना को न सिर्फ शुरू किया गया बल्कि इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। सामाजिक परिवर्तन के लिहाज से और बच्चों के मानसिक विकास के लिहाज से कैसे देखती हैं इस योजना को आप?
2: भारत में विद्या प्रवेश या विद्यालय जाना बच्चों के लिए एक प्रकार से एक पनिशमेंट होती थी, वो क्योंकि सीधे स्कूल में जाना घर का माहौल होता है जहाँ उस प्रकार की नियमबद्धता नहीं होती और बच्चा अपनी मर्जी का ऑलमोस्ट मालिक होता है, स्वामी होता है। और जब वो विद्यालय में जाता था तो बहुत सारे समय के अनुशासन की सीमाएं उस पर लग जाती थी। उस गैप को दूर करने के लिए यह एक प्रकार से मैं बहुत सुंदर प्रयास मानती हूँ जो स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया गया। और ये NEP 2020 जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहते हैं, उसमें कहा गया कि लर्निंग शुड बी ए प्लेजेंट एक्सरसाइज, यानी सीखना आरंभ बच्चे का ऐसा होना चाहिए कि वो उसको एंजॉय करे, वो उसके लिए एक फन जैसी एक्सरसाइज हो। तो इस विद्या प्रवेश का यही उद्देश्य है। और आप जान सकते हैं कि बड़े शहरों में और शहरी उच्च वर्ग में प्ले स्कूल्स का कंसेप्ट आ चुका था लेकिन वो पूरे देश के बच्चों को उपलब्ध नहीं था, तो उनको भी खेल आधारित गतिविधियों के आधार पर सीखने की प्रक्रिया आरंभ करना, औपचारिक शिक्षा आरंभ होने से पहले उनको उस माहौल में सहज रूप से ढाल लेना और वहीं से निपुण भारत की भी नींव रखना। निपुण इज वेरी इंटरेस्टिंग, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और आपको याद होगा आयुषर जैसी बहुत सारी संस्थाएं पहले ये कहती रही कि 10वीं तक बच्चा पहुंच जाता है देश के सरकारी विद्यालयों में, लेकिन ना वो पढ़ सकता है, ना वो लिख सकता है पूरी बात, और ना ही वो गणना में निपुण होता है। इसलिए वह मिशन रखा गया था और उसी की रणनीति की नींव मजबूत करने के लिए, बुनियाद मजबूत करने के लिए विद्या प्रवेश का ये एक बहुत सुंदर मॉड्यूल बनाया गया। और जिसमें ये हो सकता था क्योंकि ये प्रारंभिक है तो हर राज्य अपनी अपनी स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार पाठ्य सामग्री तैयार कर सकता था ताकि बच्चे को बहुत अजनबी भाव ना लगे वहां पर, जैसा वो घर में अभी तक रहा उसी को थोड़ा आगे ले जाते हुए पढ़ना लिखना और गणना करना आरंभ कर दे। थोड़ा शाला प्रवेशोत्सव पर और गुणोत्सव पर भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि वो कन्या केलमणि महोत्सव था एक तरह से, कि कन्या किस प्रकार से विद्यालय पहुंचे भी और फिर वहां रहे भी, क्योंकि ड्रॉपआउट दर बहुत ज्यादा थी उनकी, तो इसलिए बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल उसके माध्यम से दिया गया था। और 3 दिवसीय अभियान यानी जिसमें जनप्रतिनिधि भी और अधिकारी भी गांव-गांव जाकर बच्चों को बाल वाटिका, आंगनवाड़ी, प्राथमिक ये खेल विद्यालय इन सब में प्रवेश दिलाते, शिक्षण सामग्री किट वितरित करते, तो अपने आप ही एक नामांकन उत्सव जैसा बन जाता और बच्चों को भी इसमें रुचि होती और शिक्षक इसलिए सजग रहते क्योंकि इसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का विशेष ध्यान था। यही गुणोत्सव का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है क्योंकि ये माना गया कि जितने सरकारी विद्यालय हैं उनमें गुणवत्ता कम होती जा रही। तो गुजरात में 2009 में जो शुरू हुआ, बेसिकली माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जब ये मुख्यमंत्री थे तब भी, इसीलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने जिस भी क्षेत्र पर ध्यान दिया वहां गुणवत्ता और जवाबदेही उत्तरदायित्व निश्चित करने पर बल दिया और विद्यालयी शिक्षा में इन तीनों के माध्यम से ड्रॉपआउट कम करने की बात और शिक्षा और शिक्षण और शिक्षार्थियों की गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई।
1: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और संजीव जी कुछ और योजनाओं पर चर्चा करते हैं। गुजरात से शुरुआत हुई डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी विशेष स्पेसिफिक विषय को लेकर शुरू की गई यूनिवर्सिटी को डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान। इस तरह के विश्वविद्यालय आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। सवाल आपसे ये है संजीव जी कि जो पारंपरिक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां हम देखते हैं कि आर्ट्स की भी पढ़ाई हो रही है, कॉमर्स भी पढ़ाए जा रहे हैं, विज्ञान के विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं, उनसे अलग 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जो डोमेन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज शुरू हुए, आज के दौर में भारतीय युवाओं के लिए कितने कारगर हैं और 21वीं सदी की चुनौती के लिए वो कैसे तैयार कर रहे हैं?
3: जी, जैसे आपको पता होगा कि पहले यूनिवर्सिटीज में जनरली सब हर फील्ड में एजुकेशन दी जाती है, मास्टर्स आप अचीव करते हो, उसके बाद पीएचडी उसी फील्ड में लेते हो। लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे इंजीनियरिंग होता था तो इंजीनियरिंग भी एक ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जैसे लॉ फॉर एग्जाम्पल, लॉ का यूनिवर्सिटी का 2 ईयर कोर्स होता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको 5 ईयर्स कोर्स स्पेसिफिक कर दिया कि बच्चे को 12वीं के बाद ही एकदम एडमिशन वहां चले जाएं उस यूनिवर्सिटी में और उसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन दें। तो लॉ के 5 ईयर कोर्सेज बने, 3 ईयर कोर्सेज भी बने, 5 ईयर कोर्सेज भी हैं कई। ये जरूरी था कि डोमेन स्पेसिफिक, जैसे फिर आपको बताऊं कि प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एंटर कर चुका है, लॉ स्कूल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में बने ही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम और एनर्जी की एक यूनिवर्सिटी देहरादून में बनी, वो प्राइवेट सेक्टर में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहां एक लॉ स्कूल भी बना प्राइवेट सेक्टर में, वही 5 ईयर स्कूल
1: जी।
3: वहां बच्चे खूब जाने लगे एंड उनकी इनटेक इन द इंडस्ट्री भी बढ़ गई बिकॉज वो उसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे थे। जैसे कई यूनिवर्सिटीज में मैं आपको बताऊं, उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, जैसे इंटरनेशनली फॉरेंसिक साइंस है या एस्ट्रोनॉमी की फील्ड, तो नासा वगैरह में भी यहाँ के स्टूडेंट्स कई गए हैं जो यहाँ से यूनिवर्सिटीज में पढ़ के, हालांकि एस्ट्रोनॉमी के लिए स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी की मास्टर्स कराई जाती है। तो सिमिलरली फोरेंसिक साइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइम की फील्ड में और कई फील्ड्स में, एनर्जी और पेट्रोलियम मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन मैंने आपको बताया, जैसे भारत बहुत आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स की फील्ड में, जैसे एस्पिरेशनल इंडिया आगे चल रहा है, हर फील्ड में तरक्की हो रही है। सिमिलरली डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक बन रही हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बनी और जैसे लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, और इनकी एडमिशंस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो होता है CUET उसके थ्रू होती है। इसमें क्या है कि इंडस्ट्री की डिमांड, जब बच्चा ज्यादा टाइम एक ही फील्ड में लगाता है तो इंडस्ट्री की डिमांड उसको समझ में आती है और इंडस्ट्री को भी समझ में आता है कि ये बच्चा हमारे फील्ड की मास्टरी कर चुका है और इसको इनटेक लेना है। सो एक तो उससे मास्टरी होती है उस सब्जेक्ट में, दूसरी इंटरनेशनली भी प्रिपेयर होता है बच्चा, और तीसरा उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होती हैं बहुत ज्यादा।
1: सुषमा जी, अगर इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर जो शिक्षण संस्थान और उद्योग के बीच की दूरी की बात होती रही है, और हमने देखा कि इस कारण कई बार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो युवक हैं या जो छात्र हैं वो रोजगार से वंचित रह जाते थे। गति शक्ति विश्वविद्यालय या नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे डोमेन स्पेसिफिक मॉडल आपके अनुसार इस खाई को कैसे पाट रहे हैं, इस अंतर को कैसे खत्म कर रहे हैं?
2: जी, संजीव जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, ये विश्वविद्यालय तो है ही, जैसे अगर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो अपनी तरह का एक विश्वविद्यालय ही है और उसने बाकियों से MOUs किए हैं, और फोरेंसिक टेस्ट के लिए हमारे यहाँ इतना लंबे समय अभी तक लगता था, वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, अब इस विश्वविद्यालय ने उसको संभालना और अपने कैंपसेस के माध्यम से कुछ और एक्सपर्ट्स भी हमें प्रोवाइड किए हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय

0: विश्वविद्यालय जो है पहले रक्षा शक्ति माना जाता था. देर वॉज नो यूनिवर्सिटी इन इंडिया विच वुड स्पेशली टैकल दिस एक्सेप्ट एनडीए. तो वहां भी अब कुछ विशेषज्ञ तैयार कर रही है. लेकिन इसके साथ साथ आरंभ तो गुजरात से हुआ, लेकिन कौशल विश्वविद्यालय भी देश के बहुत सारे प्रांतों में खोले गए हैं जो स्पेसिफिकली स्किल इम्पार्टिंग यूनिवर्सिटीज हैं. पहले नहीं थे. चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी खोली गई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, विमेन यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, और इनकी संख्या जो बड़ी है. केवल इतना ही नहीं, उसी बात को जो आपने मुझसे अभी पूछा है
1: जी
0: उसको ही पाटने के लिए मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि यूजीसी से संबद्ध रही हूँ. 2014 में यदि इस देश में 723 यूनिवर्सिटीज थी, अब जाकर के लगभग 1400, डबल ऑफ द नंबर, 1400 से अधिक विश्वविद्यालय खोल दिए गए हैं.
1: जी
0: इसका मतलब है एनरोलमेंट अधिक हो रहा है, विशेषज्ञता भी बढ़ रही है, और टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज भी खुली हैं जो पहले कहीं नहीं थी. एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खुली है, उद्यमिता विश्वविद्यालय,
1: जी
0: यानी ये जो स्किल बेस्ड एरियाज थे, डोमेन्स थे, वहां पर विशेषज्ञ उत्पन्न करने के लिए, तैयार करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालय खोले गए हैं. एक तरफ राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है हम मेरू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज भी खोल रहे हैं जो थी पहले भी, लेकिन दूसरी तरफ जो विशेष विशेष क्षेत्र पहचाने गए जहां जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता थी वो यूनिवर्सिटीज खुली हैं. कॉलेजेस को भी ऑटोनोमस बनाने का प्रयास किया गया है. और जब मैं यूजीसी में थी तो मैं बता सकती हूँ कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों को हमने इनकरेज किया कि वो ऑटोनोमी के लिए आगे आए, बिकॉज इस देश में कुछ कुछ कॉलेजेस तो इतने बड़े थे दे कुड बीट एनी यूनिवर्सिटी और दे कुड कंपेयर विद द बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज. तो
1: जी
0: उनको ऑटोनोमी देने की बात, ताकि शिक्षा का विस्तार हो. जहां 38,000 के करीब कॉलेजेस थे 2014 में, वो अब 55,000 के लगभग हो गए हैं. उसका विस्तार भी आप समझ सकते हैं. इनके अपने तरीके भी हैं. एडमिशंस क्लैट के माध्यम से लॉ यूनिवर्सिटीज में होता है.
1: जी
0: पहले केवल लॉ कॉलेजेस होते थे, अब लगभग हर प्रांत में एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो जो लॉ ग्रेजुएट्स को तैयार कर रही है या एक्सपर्ट्स को तैयार कर रही है. और जो एक हमारे यहाँ गैप जिसकी आपने बात की कि मैं बीए हूँ, मैं एमए हूँ, मैं पीएचडी भी हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार उदाहरण देते हैं, तो बच्चा कोई जवाब नहीं दे पाता विश्वविद्यालयों के माध्यम से. अब जब बच्चा निकलता है तो उसके पास कोई ना कोई निपुणता, कोई ना कोई कौशल, कोई ना कोई विशेषज्ञता अवश्य होती है, और इस प्रकार ये रोजगार से जोड़ने का माध्यम है. दूसरी बात जो आपने पूछी है, इंडस्ट्री, अब लगभग हर विश्वविद्यालय को ये निर्देश दिया गया है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से भी और यूजीसी के माध्यम से भी, कि वे तीसरे वर्ष में, हो सके तो सेकंड से ही शुरू कर लें, इंटर्नशिप करें, इंडस्ट्री से बात करें, आसपास जो भी इंडस्ट्री हो उनको कांटेक्ट भी करें, उनको किस प्रकार की आवश्यकता है. एक तो बच्चों को वहां इंटर्नशिप के लिए भेजें, इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स को, उन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स हैं उनको विश्वविद्यालयों के स्टडी बोर्ड्स में या उनके मैनेजमेंट बोर्ड्स में, एकेडमिक काउंसिल में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में स्थान दें, ताकि रोजगार और शिक्षा के बीच का, कौशल और विद्या के बीच का जो अंतर अभी तक था वह अंतर समाप्त हो सके. यह प्रयास विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से किया जा रहा है, और इसमें बहुविषयक और लचीली शिक्षा हमने इसमें जोड़ी है उसके साथ ही, और कौशल कक्षा 6 से ही आरंभ हो जाए, और IITs का नंबर बढ़ाया गया है, IIMs का नंबर बढ़ाया गया है, NITs बहुत सारी खोली गई हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस बहुत सारे खोले गए हैं, ICERs बनाए गए हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक प्रकार से समानांतर बन सके, ताकि बच्चों को सच में ही, जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आप सपना देखें हम आपको उड़ान का अवसर देंगे, तो ये विश्वविद्यालय वस्तुतः उन सपनों को सत्य करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करने के लिए सच में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं. कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में आ सकते हैं और बच्चों को अपनी विशेषज्ञता से लाभान्वित कर सकते हैं. ये बिल्कुल नई बात लगभग पिछले 3 वर्षों से भारत की उच्च शिक्षा में आई है.
1: और इन सब का उद्देश्य यही है कि जो बच्चे जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वो थियरी के साथ साथ इंडस्ट्री में क्या कुछ घट रहा है उसको भी करीब से जान सकें, समझ सकें, ताकि जब वो इंडस्ट्री में प्रवेश करें तो वो उन चीजों के लिए नए नहीं रहें। संजीव जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अगर पढ़ाई बीच में छूट जाए तो साल बर्बाद हो जाता था, लेकिन जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और उसमें बीच में पढ़ाई छोड़ने पर क्रेडिट्स सुरक्षित रखने वाला एबीसी सिस्टम हो या फिर मातृभाषा में पढ़ाई, कागजों पर तो ये बहुत बड़े नियम लगते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव हो गया, लेकिन बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो में क्या बदला है इससे?
2: ग्राउंड जीरो पे बदलाव तो आया है। आप अगर देखेंगे तो भारत का फोकस जो था पहले, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पहले आई 1986 में, उसमें कुछ बदलाव हुआ 1992 में, लेकिन तब से लेके उसके बाद नेक्स्ट पॉलिसी आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने पॉलिसी ही नहीं लेके आए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, मतलब ऑलमोस्ट 3 दशक बाद। तो अब ये जरूरी भी थी बिकॉज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंडिया ने हस्ताक्षर किया था 2015 में, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके मुताबिक लानी थी टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल बाय 2030। सो उसमें बदलाव तो काफी आया है, लेकिन अगर आप एंशियंट इंडिया में देखें, हमारा ज्ञान पहले 3 चीजों पर आधारित था, ज्ञान जो नॉलेज, विजडम प्रज्ञा, और ट्रूथ सत्य को अचीव करने के लिए। सो आप देखेंगे कि हमारे एंशियंट भारत में तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की यूनिवर्सिटीज थी जो उन एंशियंट इंडिया में पुरानी शताब्दियों में भी लोग चाइना से और यूरोप से और कहां कहां से लोग पढ़ने आते थे वहां, और इन हाउस फैसिलिटी थी वहां स्टूडेंट्स के रहने की, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चा वहां पढ़ता था। तो भारत ने कहीं ना कहीं बीच में जब इन्वेड हुआ, पहले मुगल से फिर ब्रिटिश से, समहाउ ये अपनी एज लूज कर दी। उसके बाद भारत ने दोबारा फोकस किया है, अब दोबारा अपने आप को, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो भारत के पक्ष में है और यंग कंट्री इंडिया माना जा रहा है, और स्किलिंग को बढ़ावा देते हुए हर युवा को स्किल से एम्पावर करने से उसको सक्षम बनाएं कि वो वर्ल्ड में टेक ओवर कर सके। सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अब की है, ये बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट था जो प्रिपेयर किया, इसमें हायर एजुकेशन में बहुत रिफॉर्म्स आए, इसमें लोअर एजुकेशन में रिफॉर्म्स आए, जैसे हमने पहले इनिशिएटिव डिस्कस किए कि कैसे बच्चे को बचपन से ही प्ले स्कूल से ही उसको रुझान उसका ताकि स्कूल जाने का हो, ड्रॉप आउट ना हो, ये सब इंश्योर की, और प्लस क्वालिटी हायर एजुकेशन। जैसे हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि पहले बहुत ज़्यादा किसी लेवल तक करप्शन भी थी, और आज भी जो बच्चा कभी विचलित हो जाते हैं कभी, लेकिन रिफॉर्म्स के माध्यम से, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी पहले, उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन लेके आए, एंट्रेंस से एग्जाम होता है, अभी और रिफॉर्म्स प्रोसेस में हैं, और रिफॉर्म्स कस्तूरी रंजन कमेटी बैठी है, और इसके ऊपर हाई पावर्ड कमेटी एक और रिफॉर्म्स को आगे लेके जा रही है। सो ये बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और इसमें जो टार्डिनेस है, जो करप्शन है, जो चीजें एम्बेड कर जाती हैं हमारे सिस्टम में, उसको रिमूव करने के लिए कंटिन्यूसली रिफॉर्म्स की प्रोसेस जरूरी है। शिक्षा ही भारत को आगे ले जा सकती है, जब हर इंडियन जब निपुण होगा शिक्षा में, तभी भारत आगे विकसित बन सकता है।
1: सुषमा जी, अभी संजीव जी ने एक अपने सवाल के जवाब में जो बताया एनएमसी के बारे में, हम उसी पर चर्चा करते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन। एनएमसी के आने के बाद देश में मेडिकल सीटों को लेकर एक बड़ा बदलाव आया है, एमबीबीएस और पीजी दोनों की सीटें लगभग दोगुनी हो गई हैं। डॉक्टरी की पढ़ाई के इस तरह आसान और सुलभ होने से हमारे देश के युवाओं के लिए और गांव शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, और पिछले 2 दशकों में इसमें जो परिवर्तन हुए हैं वो भावी भारत के निर्माण में कितनी अहम भूमिका निभा सकते हैं?
0: अगर विकसित भारत की बात करें और भावी भारत की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य वो 2 मजबूत पिलर्स होते हैं जिनके आधार पर किसी भी विकसित राष्ट्र की नींव रखी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत परिवर्तन किए हैं, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर से लेके, जिसकी बात अभी हमने की, शिक्षा के लिए विद्यालय से पहले ही खेल खेल में तैयार किया जाए, से विशेषज्ञ डोमेन स्पेसिफिक विश्वविद्यालय खोले गए हैं, वह एक बात है। लेकिन रेगुलेशन भारत में एक समस्या थी, और ये माना जाता था या ये घटित हो गया था कि जो भी नियंत्रक नियामक आयोग हैं या परिषदें हैं, वह अपने आप में भ्रष्ट निकाय बन गए थे, क्योंकि पारदर्शिता नहीं थी। इसलिए एक तरफ अभी हेकी जो जल्दी ही आएगा, यूजीसी का स्थान लेगा और बहुत सारी परिषदों का स्थान लेगा, लेकिन 2020 में ही भारतीय चिकित्सा परिषद के स्थान पर भारतीय चिकित्सा आयोग या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग लाया गया, क्योंकि मेडिकल

0: गए, साथ ही साथ पारदर्शी प्रवेश व्यवस्था हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कौन सा स्थान है, आपने कहाँ अप्लाई किया है, एंड एवरी इंस्टीट्यूशन इज सपोज टू पुट इट ऑन देयर बोर्ड, पुट इट ऑन देयर वेबसाइट। तो यह भविष्य के लिए इसलिए बहुत सुंदर है कि भारत का बच्चा कहीं यूक्रेन भागता था, कहीं चीन भागता था, कहीं और किसी विदेश में भागता था, क्योंकि यहाँ मेडिकल सीट्स उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। तो मेडिकल सीटों का बढ़ना दो प्रकार से उत्तम है। एक, जो बच्चा यहाँ चिकित्सा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, चाहती है, उसको यही अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, और जो भारत के विभिन्न चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है या टीचर, मेडिकल टीचर्स उपलब्ध नहीं थे, वह भी अब उपलब्ध होंगे।
1: भारत की
0: जी
1: डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ उठाने के लिए स्किल इंडिया, जिसे हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कहते हैं, PMKVY 4.0 की शुरुआत हुई है इस देश में, और उसके तहत हम देख रहे हैं कि आज के समय की जरूरत के अनुसार AI, रोबोटिक्स और 3D प्रिंटिंग जैसी फ्यूचरिस्टिक स्किल्स में युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल और रोजगार के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, और जब से ये योजना शुरू हुई है करोड़ों युवाओं को इससे प्रशिक्षित किया जा चुका है। और सुषमा जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कौशल से जुड़े विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, युवाओं में उनको स्किल्ड बनाने में, उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने में, नौकरी खोजने की बजाय नौकरी देने में इसकी कितनी बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं?
2: जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत को विकसित बनाने के लिए शिक्षा का बहुत महत्व है, और शिक्षा का महत्व ये है कि अगर जब तक उसके हर सिटीजन ट्रूली ग्लोबल सिटीजन ना बने, कि शिक्षा यहाँ ग्रहण करे और हर जगह उसकी वैल्यू हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका विजन भी यही था कि एक तो अपनी मदर टंग में शिक्षा प्रदान करनी, उस पे फोकस था, दूसरा इंडियन इथॉस में रूटेड हो हमारा एजुकेशन, और तीसरा हर सिटीजन को एक ट्रूली ग्लोबल सिटीजन बनाना। तो स्किलिंग बहुत जरूरी एस्पेक्ट था, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड आपने बात करी, भारत का एक एडवांटेज है, बहुत मेजर एडवांटेज है, और जब तक उसके युवा शिक्षित नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे कि वर्ल्ड पावर के साथ जो बाकी देशों के युवा हैं उनके साथ कंपीट करने के लिए, जब ट्रूली ग्लोबल नहीं होंगे तो वो कंपीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्किल यूनिवर्सिटीज, अगर आपको याद हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में एक स्किल डिपार्टमेंट, एक स्पेशल अलग बनाया, जिसमें युवाओं को स्किल करने के लिए, जैसे पहले हमारे हायर लेवल पे IITs होती थी स्किल करने के लिए, IIMs थे, लोअर लेवल पे ITIs वगैरह थी और पॉलिटेक्निक्स थे। तो उसके अलावा अब स्किल यूनिवर्सिटीज भी बन रही हैं, और जैसे एम्स की बात करी कि वो हेल्थ एजुकेशन में, अब एम ये है कि हर स्टेट के पास एक एम्स जरूर हो, एक एटलीस्ट हो, 12 या 14 निर्माण हो चुके हैं एम्स एक से शुरू करके, सिमिलरली हर स्टेट के पास होगा। सो स्किल यूनिवर्सिटीज में भी स्पेसिफिक फील्ड्स में, जैसे हायर एजुकेशन की हमने बात करी, तो स्किल प्रदान करने के लिए युवाओं को इवन पॉलिटेक्निक्स और ITIs जो थे उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है। तो बहुत सारा फोकस जो है वो स्किलिंग पे लग रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एजुकेशन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग इवन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है, सो दैट द यूथ बिकम एम्पावर्ड विद ग्लोबल स्किलिंग स्किल्स।
1: सुषमा जी, एक सवाल परीक्षा पे चर्चा से जुड़ा भी। परीक्षा की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षा की चर्चा करते हैं, तो 2 दशक पहले के भारत में जब मैं विद्यार्थी था तो घर का माहौल ऐसा हो जाता था कि पता नहीं घर में क्या हो गया है। TV ऑन होना बंद हो जाते थे, अगर कोई मेहमान आने वाले हैं तो बता दिया जाता था कि अभी परीक्षा चल रही है बच्चों की, आप थोड़े समय बाद आइए, घर में शोर शराबा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की, खुद बच्चों से बात करते थे, खुद उनके अभिभावकों को बताते थे, और कुल मिलाकर एक माहौल तैयार किया गया कि परीक्षा डर का मामला नहीं है, इसे आप एक त्योहार की तरह देखिए, एक उत्सव की तरह देखिए, अगर उसमें आप नाकाम हो भी जाते हैं तो सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, जीवन में बहुत सारे अवसर हैं। इस बदलाव से बच्चों के मेंटल हेल्थ और कॉन्फिडेंस में बहुत परिवर्तन आया, अभिभावकों को भी बातें समझ में आई। कैसे देखते हैं बच्चों के मनोविज्ञान के नजरिए से, उनके विकास के नजरिए से और सामाजिक परिवर्तन के नजरिए से कितना बड़ा बदलाव आप मानती हैं परीक्षा पे चर्चा को?
0: जी, सबसे पहले तो इसकी जो खूबसूरती है या सौंदर्य है वो ये है, प्रधानमंत्री स्वयं बच्चों से बात करें। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रधानमंत्री से बात करने का, संवाद करने का अवसर मिल रहा है। तो राष्ट्र के शीर्ष

0: नेतृत्व के साथ वो बात करते हैं, सीधा संवाद करते हैं, विद्यार्थी करते हैं, शिक्षक करते हैं, अभिभावक करते हैं, और इसको एग्जाम वॉरियर्स अभियान भी उन्होंने आरंभ में चलाया। ये मुझे लगता है बहुत ही समीचीन था और सामयिक भी था, क्योंकि एक समय ऐसा आया, बिल्कुल सही है, मैं भी उसी समय की उपज हूं, जब आपने कहा टेलीविजन भी बंद, घर में मेहमानों का आना भी बंद, कमरा भी बंद, और बच्चे के लिए जैसे सजा हो उसे एक एग्जाम के लिए तैयारी करनी है और अधिक से अधिक मार्क्स लेने, उसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने हैं, और एक एग्जाम ना हुआ, ऐसा लगता था जैसे जीवन वहीं रुक गया है, और वहीं रुककर उसको सफलता ही हासिल करनी है, उसके बाद उसका दरवाजा खुलेगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के संवाद से आया है, और इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि 3 करोड़ से अधिक पंजीकरण अब तक, नौवां संस्करण 2026 में हुआ था उसमें इतने पंजीकरण हुए, और सहभागिता भी बहुत बड़ी है,
1: क्योंकि कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, अलग अलग श्रेणियों में पंजीकरण कराते हैं, और उद्देश्य भी यह है परीक्षा के तनाव को कम करना। यहाँ मैं विशेष तौर पर एक आंकड़ा लेना चाहती हूँ कि हमारे देश के यदि विद्यालयों के आंकड़े हम लें तो विद्यार्थी माध्यमिक स्तर तक तो एनरोलमेंट 88.5% है, लेकिन 9वीं से 12वीं तक ये घटकर 56.4, 56.4% हो जाता है। मुझे लगता है कि इनको भी एड्रेस करना अवश्य ही माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य रहा होगा, ताकि जीवन के प्रति, परीक्षा के प्रति, अंकों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो और तनाव कम हो, तो व्यक्ति अपने आप अवसर देखने लगता है,
2: जी।
1: खोजने नहीं पड़ते, पर उसको अर्थ कर सकेंगे।
2: संजीव जी, आखिर में परीक्षा पे चर्चा का एक और महत्वपूर्ण पहलू रहा स्ट्रेस को कम करना, और कहीं ना कहीं उससे जो परिणाम हमें देखने को मिले वो बहुत शानदार रहे। संक्षेप में, कार्यक्रम में समय कम है, क्या बताएंगे आप?
3: जी, ये जो परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इनिशिएटिव शुरू किया, इसका पर्पस मेनली यही था कि हाउ टू अप्रोच एग्जाम्स इन अ स्ट्रेस फ्री एंड इजी मैनर। सो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री ने इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट के साथ, मैं आपको बता दूं कि टोटल इस इनिशिएटिव के साथ अभी तक टोटल 4.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी, यू नो, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स जुड़ चुके हैं। 4.2 करोड़ तो स्टूडेंट्स ही हैं, 25 लाख टीचर्स हैं, 6 लाख पेरेंट्स हैं, और पहला संस्करण इसका 16 फरवरी 2018 को हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री ने इसमें काफी पहलू उठाए। फॉर एग्जाम्पल, 1 2024 में उन्होंने इस पे बहुत इंपॉर्टेंटली बच्चों को ये भी बताया कि अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए रीलें देखने में, और हैव एनफ स्लीप, नींद बहुत जरूरी है ताकि अगले दिन फ्रेश होके अपना एग्जाम दे सकें। उन्होंने पहले एक बारी पबजी का भी, जो
2: जी
3: बहुत क्रेज की तरह बच्चों में फैल चुका था, बाद में तो गेम बैन हो गई, लेकिन पबजी के बारे में भी मेंशन किया कि वो बच्चे नहीं उसमें करें। सो ये जो इनिशिएटिव था, बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उसके साथ अपने अनुभव भी उसके साथ जोड़ देते हैं।
2: तो श्रोताओं, शाला प्रवेश उत्सव से शुरू हुई प्राथमिक शिक्षा की एक छोटी सी चिंगारी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत और गतिशक्ति विश्वविद्यालय जैसे वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। गुजरात के दूर दराज के गांव में ड्रॉपआउट रेट कम करने के लिए एक संकल्प से लेकर आज 145 करोड़ भारतीयों के विकसित भारत 2047 के सपने तक, ये यात्रा सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि सोच के परिवर्तन की यात्रा है। जब देश का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा को केवल कागजी डिग्रियों तक सीमित न मानकर हर बच्चे के आत्मविश्वास, उसके मानसिक स्वास्थ्य, उसकी मातृभाषा और उसकी कुशलता से जोड़ता है, तब जन सेवा की यही भावना वास्तव में एक स्वर्णिम देश सेवा का रूप ले लेती है। चर्चा में शामिल होने के लिए संजीव जी आपका और सुषमा जी आपका बहुत बहुत आभार।
3: जी, बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
4: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 12वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, शिक्षा और कौशल, भविष्य की नींव। इसमें भाग ले रहे थे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की पूर्व सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव और वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR Official पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: 9:45 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
3: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
4: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
3: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
4: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
3: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
4: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
3: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
5: Nexa.
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार, कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम भारद्वाज से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया ई चलान को बिजली बिल से जोड़ने पर विचार के दिए निर्देश। सीडब्ल्यूसी की नई दिल्ली में बैठक आज, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे भाग। अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू, त्वरित और सुलभ न्याय पर जोर। वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर तक बढ़ी और 21,678 वार्डों में उप ग्राम सभाओं की बैठक कल। लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों पर करेंगे चर्चा। अब समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चलान की राशि की वसूली में सुधार के लिए बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिए कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र तथा ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। साथ ही न्यायालय ने परिवहन पोर्टल पर लंबित चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने के भी सुझाव दिए हैं। लगातार चलान का भुगतान नहीं करने की स्थिति में वाहन जब्त करने की संभावना पर भी विचार करने को कहा गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने आंकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। सीबीडीटी ने कहा है कि इस विस्तार से संबंधित करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नई दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए वे कल सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सीडब्ल्यूसी के सभी वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ भावी आंदोलन का खाका तैयार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाना है। ऐसे में पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद के आगामी सत्र में विपक्षी दलों के साथ मिलकर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग का प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के ढुलमुल रवैये के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लेकर देशव्यापी सांझा विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं आगामी राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद शिमला लौट आएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। भाजपा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं के बीच विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। बिंदल ने मुलाकात के बाद कहा कि अमित शाह का मार्गदर्शन और स्नेह हमेशा प्रेरणादायी रहा है। उन्होंने इस भेंट को ऊर्जा और नई प्रेरणा देने वाला बताया। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है।
3: और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
4: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
3: चल अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
4: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जांच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: मंडी जिले में केंद्र और राज्य सरकार की कृषि आधारित योजनाओं से मिल रहे आर्थिक सहयोग, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन से युवा नौकरी का इंतजार करने के बजाय स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

0: और अपनी नियमित आय भी अर्जित कर रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
1: मंडी जिले के सुंदरनगर निवासी अंकित कुमार ने सरकारी प्रोत्साहन और स्वरोजगार की राह अपनाकर मशरूम उत्पादन को सफल व्यवसाय में बदल दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की कृषि आधारित योजनाओं से मिल रहे सहयोग और अपने परिश्रम के दम पर अंकित आज हर महीने करीब 20 क्विंटल मशरूम बेचकर लगभग 1.5 लाख रुपए की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। अंकित ने अपने सफर की शुरुआत महज 200 बैग से की थी, जो अब बढ़कर 7,000 बैग तक पहुंच गई है। 12वीं तक पढ़े अंकित ने नौकरी का इंतजार करने के बजाय पहले मशरूम फार्म पर काम कर अनुभव हासिल किया और फिर कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर से वैज्ञानिक प्रशिक्षण लिया। सीमित भूमि से अधिक उत्पादन के लिए उन्होंने वर्टिकल फार्मिंग अपनाई। सुंदरनगर के बाद अब पंजाब के भरतगढ़ के पास भी नई इकाई स्थापित की है। कुंभ विकास योजना के तहत उन्हें शेड निर्माण के लिए 50,000 रुपए की सहायता मिली है। अंकित की कहानी युवाओं को संदेश देती है कि सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण और मेहनत के सहारे स्वरोजगार की आत्मनिर्भरता की मजबूत राह बनाया जा सकता है। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों के जल्द और आपसी सहमति से निपटारे के लिए मेडिएशन फॉर नेशन 3 विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की मेडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वाधान में आयोजित ये अभियान हिमाचल में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सिंधावालिया के संरक्षण में चल रहा है। प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से सहमति आधारित समाधान निकालने में मदद करेंगे। इससे समय और खर्च की बचत के साथ त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ने कहा कि अभियान का मकसद अदालतों में मामलों का बोझ कम करने के साथ लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में ये काम करना है। प्रदेश में ग्रामीण विकास और स्थानीय जरूरतों से जुड़े मुद्दों को ग्राम सभा तक पहुंचाने के लिए कल सभी 21,678 वार्डों में उप ग्राम सभाओं की बैठकें होंगी। इन बैठकों में लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों पर चर्चा करेंगे तथा आवश्यक प्रस्ताव और सिफारिशें तैयार की जाएंगी। उप ग्राम सभाओं की सिफारिशों को 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा। भारतीय सेना की 26 पंजाब यूनिट द्वारा युवाओं में फिटनेस, अनुशासन, साहस और राष्ट्रीय सेवा की भावना बढ़ाने के लिए साइकिलिंग अभियान चलाया जा रहा है। अंबाला कैंट से शुरू हुआ ये अभियान केलंग होते हुए जालंधर तक चलेगा, जिसमें जवान करीब 1,200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अभियान के दौरान सेना के जवान पलचान, केलंग, पंडो और चौंतड़ा में विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद कर रहे हैं। इस दौरान युवाओं को भारतीय सेना में करियर के अवसर, भर्ती की पात्रता, चयन प्रक्रिया और विभिन्न प्रवेश योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। मौसम से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल के पहाड़ सितंबर में ही बर्फ से लकदक, सामान्य से 10 डिग्री गिरा पारा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रोडू में लैंडस्लाइड, 800 परिवारों का संपर्क कटा, आज भी बारिश के आसार। वहीं दिव्य हिमाचल ने लिखा है, भारी लैंडस्लाइड, दुनिया से कटा रोडू का गांव। दैनिक जागरण की खबर है, एशियाई खेलों में हिमाचल के पदक विजेता खिलाड़ियों पर होगी धनवर्षा। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को देंगे 5,33,00,000 की पुरस्कार राशि। हिमाचल दस्तक के शब्द है, दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू, आज सीडब्ल्यूसी बैठक में होंगे शामिल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया ई चलान को बिजली बिल से जोड़ने पर विचार के दिए निर्देश। सीडब्ल्यूसी की नई दिल्ली में बैठक आज, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे भाग। अदालतों में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष मध्यस्थता अभियान शुरू, त्वरित और सुलभ न्याय पर जोर। वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर तक बढ़ी और 21,678 वार्डों में उप ग्राम सभाओं की बैठक कल। लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों पर करेंगे चर्चा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 PM। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गीतों का कारवां।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं गीतों का कारवां आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बेताब फिल्म से।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa. Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
3: श्रोताओ, इस समय आप इंजॉय कर रहे हैं फिल्मी गीत, गीतों का कारवा आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आशिक बनाया फिल्म से। सुनिधि चौहान और अभिजीत सावंत की आवाज़ों में आप सुन रहे हैं आशिक बनाया, आपने फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

साधना सरगम और कुमार शानू की आवाजों में आप सुन रहे हैं इस गीत को। इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीतकार है समीर। साजन का घर फिल्म का गीत इस समय आप एंजॉय कर रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम का अंतिम गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गूंज पहाड़ों की

प्रदीप परदेसी और फौजा सेन की आवाजों में सुन रहे हैं आप इस हिमाचली गीत को।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए, कार्यक्रम का ये अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, धीरे शर्मा।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पहाड़ों के सुर आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से FM बैंड 103.4 MHz पर सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप स्वीटी लवली से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बकाया यातायात के ई चालान की राशि की वसूली में सुधार के लिए बिजली बिलों से जोड़ने पर विचार करने को कहा है। न्यायालय ने यह भी सुझाव दिया कि लंबित चालान का भुगतान होने तक वाहन पंजीकरण के नवीनीकरण, स्वामित्व हस्तांतरण, फिटनेस और पीयूसी प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगाई जाए। साथ ही न्यायालय ने परिवहन पोर्टल पर लंबित चालान वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का भी सुझाव दिया है। लगातार चालान का भुगतान न करने की स्थिति में वाहन जब्त करने की संभावना पर भी विचार करने को कहा गया है। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में 8 और 9 अक्टूबर को महिला एवं बाल विकास से संबंधित 2 दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को सम्मेलन के समापन सत्र में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। इस शिखर सम्मेलन की तैयारियों को लेकर कल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल भी शामिल हुए। शांडिल ने कहा कि सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पर विचार विमर्श होगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का आज सुबह निधन हो गया। उनके निधन से कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सेना में सेवा देने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। मेजर मनकोटिया अपनी विवाक राय और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते हैं। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया और इसे हिमाचल की राजनीति के लिए बड़ी क्षति बताया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में भाग लेने के लिए वे कल सड़क मार्ग से दिल्ली के लिए रवाना हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और CWC के सभी वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होगी। बैठक में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली पहुंच गए हैं। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ भावी आंदोलन का खाका तैयार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद को लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाना है। ऐसे में पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद के आगामी सत्र में विपक्षी दलों के साथ मिलकर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग का प्रस्ताव ला सकती है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के ढुलमुल रवैये के खिलाफ विपक्षी दलों को साथ लेकर देशव्यापी साझा विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा भी तय की जाएगी। वहीं आगामी राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। बैठक में भाग लेने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर बाद शिमला लौट आएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: प्रदेश भाजपा ने संगठन में फेरबदल करते हुए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में नई नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने आज जारी अधिसूचना में ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। अधिसूचना के अनुसार प्रोफेसर रविंदर ठाकुर को प्रदेश बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक पद से हटाकर प्रदेश प्रकोष्ठ संकुल सह समन्वयक नियुक्त किया है। वहीं अब तक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक रहे डॉ. सतीश शर्मा को प्रकोष्ठ का नया प्रदेश संयोजक बनाया गया है। बिंदल ने कहा कि दोनों नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे। साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। CBDT ने कहा कि इस विस्तार से संबंधित करदाताओं को अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। CBDT इस फैसले को लागू करने के लिए औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से ही जारी करेगा। 3 दिन मौसम खराब रहने के बाद आज मौसम ने फिर करवट बदली है। आज राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ है और धूप खिली है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं गूंज पहाड़ों की आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

0: style icon at an EMI of just ₹899 per month.
1: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: गुंज पहाड़ों की आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं प्रदीप परदेसी के आवाज में गाया हुआ ये हिमा।

शतौगुज पहाड़ों की आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो आइए कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अंजना व रीता देवी की आवाज़ में।

श्रोताओ, इस समय आप लुत्फ उठा रहे हैं हिमाचली गीतों का, यानी गूंज पहाड़ों की, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दीजिए कार्यक्रम का अगला हिमाचली गीत आप सुन रहे हैं अशोक कुमार की आवाज में।

श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम का अंतिम हिमाचली गीत। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 11:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने।
2: लिखते हैं, शिक्षा वो प्रकाश है जो ज्ञान के अंधकार को दूर कर जीवन को सही दिशा देता है।
3: आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का, और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल दिवांगन जी ने लिखा है। अजीत जी, विमलेश जी, सादर नमस्कार।
2: 1 सितंबर के उमंग कार्यक्रम में बालक बाजी राउत के साहस, संघर्ष और बलिदान के बारे में सुनकर मन भावुक हो गया। इतनी कम उम्र में देश की आजादी के लिए अंग्रेजों का विरोध करते हुए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बाजी राउत की शहादत हमें सिखाती है कि देशभक्ति उम्र नहीं जज्बे की मोहताज है। ऐसे वीर बाल शहीद को शत शत नमन।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, नरेंद्र कुमार तिवारी और कृष्ण कुमार यादव जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है सहजपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुली चंद साहू और सतीबाई साहू जी का।
3: और वो लिखते हैं, प्रिय उद्घोषक जी, मन ला राम राम जय जोहर पहुँचे। उमंग कार्यक्रम प्रसारित होते एमा बहुत सुंदर ज्ञान वर्धक बात लगत है। शहर में गंदगी से कैसे बचे और सावधान रहे, ये सब बात बताते हमरा बहुत सुंदर लगत। एक हर बार बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे।
2: हमें दिनांक 28 अगस्त 2026 का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद आया, जिसमें आपने कहानी सुनाई। वो कहानी थी बुद्धिमान किसान। हमें बेहद अच्छी लगी। इस कहानी के जरिए हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर चीज का बारीकी से निरीक्षण करना चाहिए। ये सुनवाने के लिए मैं NCERT उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, उमंग कार्यक्रम मुख्य रूप से विद्यार्थियों का शैक्षिक कार्यक्रम है
2: जी।
3: इस क्रम में हम मुख्य रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं एक नई श्रृंखला, भारत के बहादुर बच्चे।
2: जी हाँ श्रोताओं, इस श्रृंखला के 2 एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मेघालय राज्य के 2 ऐसे बच्चों की जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।
3: तो आज सुनिए श्रोताओं, एक ऐसे बालक की कहानी जिसकी उम्र तो केवल 13 वर्ष थी, लेकिन उसके साहस ने उसे हमेशा के लिए अमर बना दिया।
2: श्रोता, उस बहादुर बालक का नाम था मेघराज। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना पड़ा। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था।
3: मित्रों, ये घटना है 12 मई 1997 की। मेघराज अपने 6 मित्रों के साथ शिलोंग के प्रसिद्ध एलिफेंट फॉल्स में गया था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे कि तभी एक दुर्घटना हो गई।
2: ओ, क्या हुआ था?
3: हुआ ये कि मेघराज के 11 वर्षीय मित्र किशन सिंह का पैर फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। किशन तैरना नहीं जानता था, वो पानी में डूबने लगा।
2: श्रोताओं, मेघराज तैरना जानता था। उसने एक पल भी अपने मित्र को अकेला नहीं छोड़ा। उसे मालूम था किशन तैर नहीं सकता है। मेघराज तुरंत उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया।
3: लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न है मेरे मन में
2: जी,
3: क्या उसे अपनी जान का डर नहीं लगा?
2: अजीत जी, स्वाभाविक तो है, थोड़ा डर तो जरूर लगा होगा, लेकिन उस क्षण उसके सामने अपनी सुरक्षा से बड़ी प्राथमिकता थी अपने मित्र को बचाना।
3: तो विमलेश जी, क्या मेघराज अपने मित्र किशन सिंह को बचा पाया?
2: जी, वो बचा पाया। पानी में डूबते किशन सिंह को बचाने के लिए मेघराज को बहुत संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसने अपने मित्र किशन को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की। किशन की जान बच गई।
3: तो फिर मेघराज भी बाहर आ गया होगा?
2: नहीं अजीत जी, यही मेघराज की कहानी का सबसे दुखद और हृदय को छू लेने वाला भाग है। मेघराज ने किशन को तो बचा लिया, लेकिन बचाते समय मेघराज का पैर चट्टानों के बीच में फंस गया।
3: ओह,
2: वो स्वयं पानी से बाहर नहीं निकल पाया और उसकी मृत्यु हो गई।
3: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज ने अपने मित्र की जान तो बचा ली, लेकिन अपनी जान दे दी।
2: एक 13 वर्ष के बालक ने मित्रता की ऐसी मिसाल कायम की जिसे लोग आज भी याद करते हैं।
3: जी हाँ श्रोताओ, मेघराज को उसकी बहादुरी के लिए 1997 का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया गया
2: जी।
3: गणतंत्र दिवस के अवसर पर 22 जनवरी 1998 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने उनकी माता को ये पुरस्कार प्रदान किया।
2: जी
3: आइए श्रोताओं, अब विचार करते हैं कि इस कहानी से हमें क्या क्या संदेश या सीख मिलती है।
2: जी, तो सबसे पहली सीख हमें मिलती है, सच्ची मित्रता संकट के समय ही दिखाई देती है। कहावत है ना, सच्चे मित्र की पहचान जरूरत और संकट के समय ही होती है।
3: श्रोताओं, मेघराज की कहानी

0: वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बालक मेघराज को मरणोपरांत राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किनके द्वारा और किसे दिया गया?
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: जी
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है बीरबल की खिचड़ी।
2: अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति कह रहा था,
3: मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। हाँ।
2: अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा,
3: यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा।
2: वह मान गया। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा,
3: हैं? तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे?
2: उसने नम्रता से उत्तर दिया,
4: महाराज, आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा।
2: बादशाह ने कहा,
3: तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।
2: वह बहुत दुखी हुआ और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले,
3: चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं।
2: जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा, एक बहुत लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा,
3: बीरबल, भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है।
2: बीरबल ने उत्तर दिया,
3: हुजूर, अगर वो व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती?
2: अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम बीरबल की खिचड़ी और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मेजर शैतान सिंह।
1: इस कार्यक्रम में भारत और चीन के युद्ध के दौरान असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले मेजर शैतान सिंह की जीवन गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि युद्ध के दौरान उन्होंने किस प्रकार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: भारत और चीन का युद्ध अपने चरम पर था। वो दिन था 18 नवंबर 1962 का। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, साए साए करती बर्फीली हवा और लद्दाख क्षेत्र की हड्डियां जमा देने वाली ठंड। रात भर भीषण गोलाबारी के बाद अभी कुछ देर के लिए वातावरण शांत हुआ था। सुबह होने ही वाली थी और भारतीय सैनिक समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट यानी 5,000 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर अपनी चौकी पर पूरी मुस्तैदी से डटे हुए थे।
1: ये 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी थी, जिसे लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात किया गया था। बटालियन में कुल 120 जवान थे, जिनके पास ना तो इस भयंकर ठंड से जूझने के लिए पर्याप्त कपड़े थे और ना ही उन्हें बर्फीली जगहों पर युद्ध करने का अनुभव था। और तो और, उनके पास हथियारों के नाम पर पुरानी 303 राइफलें थीं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दी गई थीं।
0: अचानक बर्फीली सुबह की धुंध में उन सैनिकों को कुछ दिखाई दिया।
2: रामसिंह,
3: हाँ,
2: वो सामने तुम कुछ देख रहे हो?
3: हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मन मशाले लेकर इधर आ रहा है।
2: हाँ, लेकिन लड़ाई के मैदान में कोई मशाल लेकर भला क्यों आएगा?
3: ये बात तो तुम ठीक कहते हो, ऐसा जोखिम कोई क्यों उठाएगा?
2: हाँ,
3: अरे देखो, रोशनी के ये गोले अब तो और पास आ रहे हैं।
2: हाँ,
3: हमें तुरंत कमांडर को इसकी सूचना देनी चाहिए।
2: हाँ, चलो जल्दी चलो।
3: हाँ,
2: उन्हें बता देते हैं।
3: जय हिंद सर।
4: जय हिंद राम सिंह।
3: सर, पहाड़ की पूर्वी घाटी से लगता है कुछ चीनी सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं।
4: क्या कहा? सैनिक मशाले लेकर इधर ही आ रहे हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहीं ये दुश्मन की कोई चाल तो नहीं है? समझा। सुनो।
3: जी सर।
4: फौरन मोर्चा संभालो और फायरिंग शुरू करो।
3: जी सर।
4: लेकिन ध्यान रहे, हमारे पास गोलियां कम हैं, इसलिए हमें गोलियां बचा कर रखनी है। बस कुछ एक गोलियां ही चलाना।
3: जी सर।
4: जय हिंद।
3: जय हिंद सर।

0: और सैनिकों ने मोर्चा बांधकर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन आश्चर्य, वो मशालें रुकी नहीं, वो आगे बढ़ती रहीं। जब वो बिल्कुल पास आ गई तो साफ साफ दिखाई देने लगा। पता चला कि वो मशालें नहीं थी, लालटेन थी, जिन्हें चीनी सैनिकों ने स्थानीय याक पशुओं के गले में बांधकर भारतीय सेना की ओर भेजा था।
1: 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में एक सैनिक परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम शैतान सिंह भाटी था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। बचपन में उनकी बाल सुलभ शरारतों के कारण संभवतः उनका नाम शैतान रख दिया गया हो, लेकिन निजी जिंदगी में वो बेहद विनम्र और सौम्य व्यक्ति थे।
0: शैतान सिंह ने जोधपुर स्थित राजपूत उच्च विद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। सन 1943 में स्कूल की पढ़ाई के बाद वो सिंह जसवंत सिंह कॉलेज गए और स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 1 अगस्त 1949 को वो एक सेना अधिकारी के रूप में जोधपुर रियासत की सेना में शामिल हो गए। अपने सैन्य जीवन में विनम्रता और कार्य कुशलता के कारण वो अफसरों और सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय थे।
1: तो आइए एक बार फिर से चलते हैं उसी युद्ध के मैदान में, जहां 13वीं कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी लद्दाख के चुशुल सेक्टर में तैनात थी। ये जगह थी रेजांग लाह की घाटी। सामरिक दृष्टि से भारत कमजोर स्थिति में था। चीनी सैनिक सैकड़ों की संख्या में पूरी तैयारी के साथ बेहतर हथियारों से लैस थे और उन्हें बर्फीले क्षेत्र में युद्ध करने का भी खासा अनुभव था। जबकि भारतीय सैनिकों की संख्या उस चौकी पर मात्र 120 थी।
0: ऐसे में चीनी सेना से युद्ध में मुकाबला करना भी आत्महत्या करने के समान था। और आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। 18 नवंबर 1962 की सुबह चीनी सेना ने हल्की मशीन गनों द्वारा भारतीय पोस्ट पर हमला कर दिया। मेजर शैतान सिंह सतर्क हो गए और अपने साथियों को मोर्चा बंदी करने का आदेश दिया। और जैसे ही चीनी सैनिक निकट आए, भारतीय सैनिकों ने उन पर लाइट मशीन गन, राइफल्स, मोर्टार और ग्रेनेड से हमला कर दिया और कई चीनी सैनिक मार गिराए।
2: जवानों, हमारे पास दो ही विकल्प हैं, मरो या मारो। तुम सब भारत माता के बहादुर सिपाही हो। तुमने अपनी जन्मभूमि की रक्षा करने की शपथ ली है, तो आगे बढ़ो। हम किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। फायर! फायर! कालिका माता की
3: जय!
2: भारत माता की
3: जय!
4: आगे बढ़ो।
5: साहब, साहब वो देखिए, घाटी के दूसरे रास्ते से दुश्मन के बहुत से सैनिक इधर ही आ रहे हैं।
6: फतेह सिंह, अभी उन्हें और पास आने दो। जब पास आ जाएं, तो हथगोलों का इस्तेमाल करो।
5: जी साहब।
0: चीनी सेना के सिपाही भारतीय सेना के प्रचंड प्रहार के सामने टिक नहीं सके और पीछे हटने लगे। उनके बहुत से सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन शीघ्र ही चीनी सेना ने रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने घाटी में ऊंचे स्थानों पर बनी चौकियों से भारतीय चौकी पर जबरदस्त बमबारी की।
1: भारतीय सैनिकों के बंकर नष्ट हो गए। उनके पुराने हथियार चीनी सैनिकों के नए हथियारों के मुकाबले बेकार साबित हो रहे थे। भारी संख्या में भारतीय सैनिक मारे जा चुके थे। चीनी सैनिक घोड़ों और याक पर और अधिक हथियार लाद कर ले आए और आक्रमण जारी रखा।
0: लेकिन मेजर शैतान सिंह भला हार कहां मानने वाले थे। उन्होंने इस दुर्गम परिस्थिति का डटकर मुकाबला किया।
2: जितना असला है पूरा इस्तेमाल करो, मैं तुम्हें और बक्सा लाके देता हूं असले का। फायर! हुकम सिंह
5: जी सर।
2: एलएम जी सवाल छोड़, फायर कर, राइट साइड पे फायर कर।
1: वो उनका साहस बंधाते और उन्हें लड़ने मरने के लिए प्रेरित करते। गोलियां कम थीं, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। अपनी मशीन गनों और बंदूकों के ट्रिगर पर भीषण ठंड के कारण उनकी उंगलियां काम नहीं कर रही थीं। चीनी सैनिकों से ये बचे हुए जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लोहा लिया। उस दिन चीन की प्लाटून के बहुत से सैनिक मारे गए।
0: मेजर शैतान सिंह को भी कई गोलियां लगी थी जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे।
3: अरे साहब, आप तो बहुत घायल हो गए हैं, कितना खून बह रहा है, आपके आपके दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं।
6: राम सिंह, मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। मेरे लिए एक मशीन गन लाओ। मशीन गन लाओ?
3: जी साहब, अभी लाया। अरे हुकुम भाई, जरा साहब के लिए एक मशीन गन ले आना।
5: अच्छा, सर यही मशीन गन।
6: हुकुम सिंह, एक काम करो
5: जी,
6: गन के ट्रिगर को एक रस्सी से बांध दो।
5: जी साहब।
6: मैं छोड़ूंगा नहीं दुश्मन को,
5: जल्दी करो।
6: जी साहब। बांध दिया साहब, ठीक से बन गई रस्सी ट्रिगर के साथ। इस रस्सी को मेरे बाएं पैर के साथ बांधो, जल्दी टाइट करके, खींच करके, खींच के इस तरफ निकल, ढील नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल।
5: जी सर।
6: ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: कहते हैं कि मेजर शैतान सिंह ने मशीन गन को दुश्मन के आने की दिशा में निशाना लगाकर जमीन पर जमा दिया और रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार खून बहने से मेजर शैतान सिंह अब अर्धमूर्छित अवस्था में आ गए थे। कुछ सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए।
3: संभल कर, संभल कर।
6: सब यहाँ सर टिका लीजिए
3: सर, आराम से।
7: कालिका माता की जय।
0: वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में उनके प्रिय कमांडर मेजर शैतान सिंह चीनी सैनिकों के हाथ लगें। मेजर शैतान सिंह को कभी कभी होश आ जाता था।
7: छोड़ना नहीं, आखिरी सांस, फायर, फायर।
0: सैनिक बारी बारी से मेजर शैतान सिंह को अपनी पीठ पर लादे हुए उबड़ खाबड़ बर्फीले रास्तों पर चल रहे थे कि तभी चीनी सैनिकों की एक और टुकड़ी दिखाई दी जो उनकी ओर आ रही थी। मेजर समझ गए थे कि अब उनका सफर यहीं तक है। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया।
7: साथी, हाँ, हमें चीनी सैनिकों ने देख लिया है और वो इधर ही आ रहे हैं। मेरी चिंता मत करो, मुझे यहीं छोड़ दो।
6: साहब,
7: तुम लोग आगे निकलो।
3: साहब, ये आप क्या कह रहे हैं साहब, ऐसा नहीं हो सकता साहब, हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे।
7: नहीं, नहीं, बात को समझो, अगर मुझे लेकर चलोगे तो पकड़ लिए जाओगे, अपनी जान बचाओ।
3: नहीं साहब,
7: क्या मालूम चीनी सैनिक तुम लोगों से कैसा सलूक करे। मुझे यही मेरे हाल पर छोड़ दो।
3: नहीं साहब, नहीं आदेश।
7: इट्स एन ऑर्डर
3: सर।
7: जाओ, अलविदा, अलविदा दोस्तों, अलविदा भारत माता की।
1: भारी मन से सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह को वहीं छोड़ दिया और आगे चल दिए। इसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। 1963 के फरवरी महीने में भारत चीन युद्ध समाप्त हो गया। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और चरवाहों का एक दल भेड़ों के झुंड के साथ चुशुल में रेजांग ला घाटी से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। चारों तरफ भारतीय सैनिकों के मृत शरीर बिखरे पड़े थे। उनके हाथों में

0: हथियार थे, चेहरे विकृत थे और आंखें आसमान की तरफ ताक रही थी।
1: उन चरवाहों ने तुरंत भारतीय पोस्ट पर अधिकारियों को सूचना दी।
2: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है।
1: भारतीय सेना ने तुरंत कार्यवाही की। सेना के जवानों के साथ वहां रेड क्रॉस सोसाइटी भी थी। उन्हीं दिनों एक और चरवाहे ने सूचना दी कि एक चट्टान के नीचे कोई दिखाई दे रहा है। खोजी दल उस चट्टान के पास पहुंचा। वहां किसी और का नहीं, मेजर शैतान सिंह का पार्थिव शरीर पड़ा हुआ था। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था।
0: उनके पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ उनके गृह नगर जोधपुर लाया गया और पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।

0: युद्ध के शहीदों की स्मृति में रेजान ला घाटी में एक स्मारक बनाया गया है। आज भी बर्फीले पर्वतों के जंगली घोड़े कियांग और नीली भेड़ों के झुंड उस स्मारक के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो वो सैनिकों की याद में बने इस स्मारक की प्रेम से रखवाली कर रहे हैं।
1: कई बार बर्फीले पर्वतों पर साए साए चलने वाली हवाएं कहीं दूर से बुरांश के फूलों को लाकर उस स्मारक पर डाल देती हैं, जैसे श्रद्धांजलि दे रही हूं।
0: हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रेजांग ला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1,800 सैनिक इस जगह मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था, और ये संभव हुआ था मेजर शैतान सिंह के असाधारण शौर्य के कारण।
1: परमवीर चक्र से सम्मानित भारत भूमि के इस पराक्रमी महायोद्धा को हमारा सलाम।
2: और इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
3: जगबंधु,
2: चेतना,
3: अर्शद,
2: सौम्या,
3: प्रसून
2: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
3: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रही थी NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.4 MHz पर दोपहर के 12 बजे हैं और हाजिर हैं हम कार्यक्रम सैनिकों के लिए के साथ।

घर से दूर हैं मगर घर की हिफाजत करते हैं। वो सरहद के सिपह सलार अपने फर्ज से ऐसी मोहब्बत करते हैं। हमारी खातिर जो अपनी तमाम खुशियां कुर्बान कर देते हैं, उन वीर जवानों के जज्बे को हम दिल से सलाम करते हैं। सैनिक भाइयों और बहनों, जय हिंद। कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत। कहते हैं दिल में बहुत कुछ होता है, कुछ बातें कही जाती हैं, कुछ महसूस की जाती हैं। और सैनिकों के दिल की बात करें तो उनके दिल में घर की याद होती है, अपनों के लिए दुआएं भी होती हैं, साथियों के लिए अपनापन और सबसे बढ़कर अपने वतन के लिए ऐसा जज्बा जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां कर पाना आसान नहीं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इसी खूबसूरत दिल के नाम, और सैनिक भाई आनंद लें इस बहुत

जी सैनिक साथियों, दिल है कभी ना तो किसी की बात मानता है ना डरता है, और कभी वही करता है जो नहीं करना है, क्योंकि दिल है दिल ठहरा, दिल है कि मानता नहीं।

0: सैनिकों के लिए कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से और आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर इसे और साथ ही साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन सकते हैं। कार्यक्रम में अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
1: लड़ी हक की लड़ाई,
2: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: सैनिक साथियों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सैनिक साथियों, कभी आपने सोचा है एक मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे उसके दिल में क्या कुछ चल रहा होता है? कितनी कहानियां छिपी होती हैं, हर मुस्कान के पीछे एक अलग ही एहसास होता है। तो चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे गीत की तरफ जिसमें दिल का जिक्र भी है, एहसास भी, और बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आपके रेडियो सेट तक पहुंचा रहे हैं।

0: प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सैनिकों के लिए मैं एक बार सभी सैनिक साथियों का फिर स्वागत है। सैनिक साथियों, कुछ गीतों को सुनकर लगता है जैसे कोई हमारी ही कहानी कह रहा हो। बोल भले किसी और के हो, मगर एहसास अपने से लगते हैं। यही तो खूबसूरती है संगीत की, हर सुनने वाला उसे कहीं ना कहीं अपने आप से जोड़ ही लेता है। आप सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सैनिकों के लिए कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं और सैनिक साथियों दिल से दिल तक का हमारा आपसे रिश्ता है आकाशवाणी धर्मशाला का आपके साथ और आपका आकाशवाणी धर्मशाला के साथ। ये रही इस दिल की रिश्तेदारी को निभाते हुए कार्यक्रम की आखिरी सौगात, ये गीत आपके लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और दोपहर के 12:30 का समय प्यारी बहनों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि सुमन स्टूडियोज में आ चुकी हैं कार्यक्रम सुनो सखी लेकर। तो आइए सुनिए कार्यक्रम सुनो सखी।

सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को, सखियों को, आपकी अपनी सखी सुमन की प्यार भरी नमस्ते। सखियों, आज है मंगलवार और मंगलवार को हम फोन के जरिए जुड़ती हैं आपके साथ और आप जुड़ती हैं हमारे साथ और करती हैं अपने दिल की बात और सुनती हैं अपनी पसंद की फिल्मों के गीत। जी हाँ सखियों, तो देरी किस बात की, जल्दी से उठाइए अपना फ़ोन और जुड़ जाइए हमारे साथ यानी महिला महफिल में और डायल करें हमारे स्टूडियो का नंबर जो है 01892224391। नंबर सखियों एक बार फिर से नोट कर लें, हमारे स्टूडियो का नंबर है 01892224391। और जिन फिल्मों से आज हम आपको गीत सुनवाएंगे वो फिल्में हैं बेमिसाल, चांदनी, डॉन, एक दूजे के लिए, हीना, काला पत्थर, कच्चे धागे, कोयला, लावारिस और लव स्टोरी। तो सखियों, जब तक आपकी कॉल नहीं मिल रही है तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप कोशिश करते रहिए, जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आप अपनी पसंद का गीत सुन सकें।

हेलो हेलो हेलो हेलो

0: बड़ी देर से हमें लग रहा है हमारी कोई सखी जो है हमसे बात करना चाहती है। आइए देखते हैं कौन सखी है और क्या कहना चाहती है हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो। नमस्ते
0: हाँ जी, नमस्कार जी।
1: मैम जी, मैं साक्षी बोल रही नूरपुर से। ठीक
0: अच्छा साक्षी जी, कैसी हैं आप?
1: हो? आप बताओ, ठीक हो?
0: मैं बढ़िया हूँ। आप कौन सी फिल्म का गीत सुनने वाली हैं?
1: मैं एक दूजे के लिए।
0: एक दूजे के लिए, ठीक है।
1: हाँ
0: क्या
1: जी,
0: करती
1: कोई
0: हैं आप?
1: कुछ नहीं करती हूँ, मैं घर में रहती हूँ, क्या करूँ?
0: पढ़ते हो आप?
1: नहीं, पहले
0: अच्छा
1: जाती थी स्कूल, अभी नहीं जाती हूँ।
0: अच्छा
1: मैं चल नहीं ना सकती, हैंडीकैप हूँ।
0: अच्छा जी, अच्छा, चलो कोई बात नहीं।
1: हाँ
0: अब
1: जी, आप मेरे से पहली बार बात कर रहे हो।
0: जी बिल्कुल, पहली बार हम

0: सगियो महिला महफिल में हमारे साथ एक और आवाज जुड़ने जा रही है, देखते हैं कौन हमसे बात करना चाहता है। हेलो हेलो
1: मैडम,
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक है मैडम जी, आप बताइए कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया हैं हम। कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैडम जी हम कठुआ से बात कर रहे हैं।
0: बड़ी दूर से आप हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
1: हाँ जी मैडम जी।
0: जी तो बताएं क्या हाल चाल है आपके कठुआ के?
1: हाँ मैडम जी बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है सभी।
0: मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है या नहीं?
1: मैडम जी दिन को थोड़ी गर्मी होती है तो रात को बस सर्दी हो जाती है, बहुत अच्छा मौसम हो जाता है।
0: जी यानी सर्दी का आगमन हो चुका है ना।
1: हाँ मैडम जी,
0: तो आप जल्दी से बता दीजिए आप कौन सी फिल्म का गीत सुनने वाली हैं।
1: कच्चे धागे का सुना दो, दिल पर देसी हो गया।
0: ठीक है जी, ठीक है, आपकी पसंद पर आपको सुनवाते हैं आपका ये गीत।
1: ओके मैडम जी।

सखी एक और सखी जो है हमारे साथ जुड़ने वाली है, देखिए कौन है और क्या कहना चाहता है। हेलो हेलो, हेलो जी। चलो जब तक हमारी सखी हमसे जुड़ना चाहती है, तब तक हम उन्हें सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। तो सखी यूं ही आप मिलाते रहे हमारे स्टूडियो का नंबर। हमारे स्टूडियो का नंबर है 01892224391। जब तक सखियाँ मिला रही हैं नंबर, तब तक हम उनको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

फिर से एक सखी जुड़ने की कोशिश कर रही है, देखते हैं उनसे हमारी बात हो पाती है या नहीं। हेलो, फोन कॉल तो कट चुकी है लेकिन गीत हम अपना जारी रखेंगे और सखियों को फिर से सुनवाते हैं अगला गीत। तो सखी यूं ही जुड़े रही हमारे साथ, यानी महिला महफिल के साथ, और जुड़े रहिए और साथ साथ अपनी पसंद के गीत भी सुनते रहिए।

0: सखियों, हमें इंतज़ार है आपकी फ़ोन कॉल्स का। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी सखियां हमारे साथ जुड़ जाएं। और सखियों, कुछ गीत भी हम आपको सुनवा रहे हैं। तो कहते हैं, गीत सुनने के साथ साथ हम गीतों को महसूस भी करते हैं, और जब गीतों को महसूस करते हैं तो कुछ अपने पल की यादें भी हमारे साथ जुड़ जाती हैं। तो सखी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ, देखते हैं कौन सखी है और क्या कहना चाह रहे हैं। तो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, सखियों, लगता है आज हमारी सखियां भी थोड़ी सी व्यस्त हैं, या अपने कामकाज में हैं, या वो कोशिश कर रही हैं, किसी कारण से उनकी कॉल नहीं लग पा रही है। तो खैर, फिर से सखी ने प्रयास किया है और उनका प्रयास लगता है सफल होने वाला है। देखते हैं क्या कहना चाह रही हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी,
1: मैं मीनाक्षी बात कर रही हूँ सोनलोटी से।
0: अच्छा मीनाक्षी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बताएं कि आज कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहती हैं।
1: मैम डॉन फिल्म का है।
0: अच्छा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैम मैं हाउसवाइफ हूँ, साथ में घर में ही सिलाई का काम करती हूँ।
0: अच्छा जी, सिलाई का काम करना अच्छी बात है, क्योंकि सिलाई आजकल बाज़ार में देखो तो बहुत ही महंगी ही सिलाई देनी पड़ती है। जितने का कई बार सूट नहीं आता है उतनी सिलाई हमें देनी पड़ती है ना। और आप तो बड़े सारे पैसे बचा रही हैं, और आजकल के समय में अगर हम अपने कपड़े भी सिल लें तब भी बहुत अच्छी बात होती है।
1: बहुत बड़ी बात है मैम।
0: जी, तो आपकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत।
1: ओके, थैंक यू।

0: सखी कहते हैं कि गीत कभी प्यार की बात करते हैं तो कभी यादों को छू जाते हैं तो कभी चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सखियों के साथ भी होता होगा। और खैर गीत बहुत अच्छे होते हैं, मन को सुकून भी देते हैं और संगीत ज़िंदगी में होना बेहद ज़रूरी होता है। इसी संगीत के साथ साथ हमारी सखी फिर से हमारे साथ कुछ कहना चाहती है। देखते हैं महिला महफिल का हिस्सा ये बन रहे हैं तो क्या कुछ इनकी डिमांड है, कौन सी फिल्म पर बात करना चाहती हैं। हेलो हेलो नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
1: मैडम जी आप बताइए कैसे हो।
0: मैं अच्छी हूँ। आप पहले हमें ये बता दें आप कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं।
1: हीना का सुना दो मैडम जी।
0: कौन सी?
1: हीना फिल्म का।
0: हीना फिल्म का, ठीक है जी। क्या करती हैं आप?
1: हम घर का काम करते हैं मैडम जी।
0: बिल्कुल, घर के काम तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं घर के काम। और अगर मुझे लगता है कि अगर रात ना हो तो वो हमारे काम भी खत्म ना हो। सही है ना? और आजकल वैसे भी बरसात का मौसम जो है ख़त्म हो रहा है तो बड़े सारे काम हमें साफ सफाइयों के साथ ही साथ अपने बिस्तरों को धूप लगानी होती है, अपने कपड़ों को गर्म कपड़े जो हैं उन्हें धूप लगवानी है ताकि पहनने लायक वो हो जाएं, क्योंकि मौसम का बदलाव जो है हो चुका है ना
1: मैडम जी। मैंने सारे कपड़े धोकर ना तो रख दिए।
0: ठीक है जी, तो आइए आपकी पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। आपने कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

जी हाँ सखियों, हमें भी लग रहा है कि कहीं हमें देर ना हो जाए सखियों के साथ बात करने के लिए। तो एक सखी फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। हेलो।

0: नमस्कार मैम
1: नमस्कार जी, कैसे हैं आप?
0: जी। बढ़िया हैं आप? बताओ आप कैसे हो
1: बढ़िया जी, बढ़िया। कहाँ से बात कर रही हैं
0: जी? रानीताल से बोल रही हूँ सविता मैम
1: जी? तो पहले ये बता दे, कौन सी फिल्म का गीत सुनने चाहती हैं आप आज?
0: जी। काला पत्थर फिल्म का गाना सुनवा दीजिए, धूम मचे धूम
1: अच्छा
0: आज
1: जी,
0: की रहना
1: ठीक है जी। तो क्या करती हैं आप?
0: जी। कुछ नहीं, हाउस वाइफ हूँ मैम, घर के काम करती हूँ।
1: तो चलिए, आपकी पसंद पर आपको सुनवा रहे हैं हम ये गीत।
0: थैंक यू मैम जी।

सखियो इस प्यारे से गीत के साथ अनुमति दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की। अगली बार नई बातों नई जानकारियों के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करते हैं जितेंद्र पाल सिंह और तकनीकी सहयोग दिया है अंकित धीमान ने। प्यारी सखियो नमस्कार।

0: अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम सुनो सखी, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी की धर्मशाला की।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरा होने का स्वागत भी किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तीन दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने तथा ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिक्की

0: 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री सिंह ने कहा कि कोई कहानी केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वो किसी विषय, स्थान या मुद्दे के बारे में लोगों की सोच को प्रभावित कर सकती है और समाज को एक दूसरे को समझने के तरीके को आकार दे सकती है।
1: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि यह प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। फिल्म शूटिंग और उसके साथ साथ में किसी एक लोकेशन को प्रमोट करने के लिए फिल्म का उपयोग, यह पर्यटन के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: फिक्की एम्बेसडर और अभिनेता आयुष्मान खुराना ने कहा कि भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र अब फिल्म, वेब सीरीज, टेलीविजन, गेमिंग, खेल, संगीत, कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म तक विस्तारित हो चुका है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव प्रभात ने गलत सूचना, सिंथेटिक कंटेंट और तेजी से उत्पन्न हो रही AI जनित सामग्री से उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये मयूर विहार फेज 1 और सराय काले खां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करता है और पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। इस अवसर पर उन्होंने 1900 करोड़ रुपए से अधिक की कनेक्टिविटी परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें पार्टी की संगठनात्मक प्राथमिकताओं को अधिक प्रभावी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड भी कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said India's relationship with China is better today than it was last year. Speaking at an event organized by Asia Society in New York, Dr. Jaishankar said the relationship started improving once the border standoff was resolved. He said India has long been telling China that a dip in bilateral relationship does not help either country and a long standoff does not serve interests of any nation. Speaking about the India-US relationship and the trade deal negotiations, the External Affairs Minister said both nations have reached a situation where there is an understanding on the trade agreement. He pointed out that India is a society of small producers, small agriculture producers, and small factories. He added that apart from the per capita gap between India and the US, the nature of production and the nature of society are very different. He said a trade negotiation required a certain amount of patience and detailing to see it through. He admitted that tariffs did create a bump for the relationship last year. India and Saudi Arabia reviewed cooperation in defence, security, trade, investment, energy, technology, healthcare and education during a meeting with Saudi Finance Minister Mohammed Al-Jadan on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Finance Minister Nirmala Sitharaman described Saudi Arabia as a trusted and valued strategic partner of India. They welcomed the successful conclusion of negotiations on the India-Saudi Arabia bilateral investment treaty aimed at providing a stronger and more predictable framework for investments. Ms. Sitharaman also met Switzerland's AIIB Governor, Ambassador Pietro Lazzeri, and discussed investment opportunities in India, including through NIIF and GIFT IFSC. The government has said the country's national highway network has grown by nearly 61% to over 146,000 kilometres in March this year from over 91,000 kilometres in 2014. This rapid development has strengthened connectivity, improved access to markets, and supported faster movement of people and goods. The greening of India's national highway network is guided by the Green Highways Plantation, Transplantation, Beautification and Maintenance Policy 2015. Five new sites and serial and transnational proposals have been included in India's UNESCO tentative list, increasing India's count to 78. The newly added sites include the Buddhist murals of Bagh, cave paintings, group of temples of the Chambal Valley, the Gupta era Udaygiri caves, the tribal legacy of Ginnorgarh, and the sites of Satyagraha. In a social media post, Union Minister of Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat said these additions reflect the extraordinary diversity of India's heritage. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated Parapula Phase 3 corridor, providing a signal-free link between Mayur Vihar Phase 1 and Sarai Kale Khan, and improving connectivity between East and South Delhi. He also launched connectivity projects over 1,900 crore rupees. During the inaugural ceremony, Delhi Chief Minister Rekha Gupta, Public Works Department Pravesh Sahib Singh, Urban Development Minister Ashish Sood, and other ministers were present. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a visit to the US from today till the 5th of next month. During the visit, Mr. Goyal will participate in the two-day G20 Trade Ministers meeting, which will commence tomorrow. Mr. Goyal will also hold bilateral meetings with his counterparts on the sidelines of the G20 meeting. Neeru Tanda has made history by becoming the first Indian shooter to win a gold medal in the women's trap individual event in the Asian Games 2026. This was after she carried India to a silver medal in the women's trap team event with Ashima Ahlawat and Manisha Kher. In boxing, Parveen Huda and Ankush Bangal have stormed into the gold medal bouts of their respective weight categories with semi-final wins at Nishio today. In athletics, India secured a double podium finish in the men's javelin throw. Yashveer Singh won the silver medal, while Rohit Yadav claimed bronze. President Draupadi Murmu has congratulated Neeru Tanda for winning India's first individual gold medal at the Asian Games 2026. And with that, we end this news bulletin.
3: FM band 103.4 MHz par hum Akashvani ke Dharmshala kendra se bol rahe hain. अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।
4: फिर धर्म पत्नी ने कहा कि पहले ज़्यादा तारीफ करते थे, तो मैंने कहा देखो जब हम नया मोबाइल लाते हैं, शुरू करते हैं, तो कितना ध्यान रखते हैं। तो इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। चलिए आज हंसने हंसाने की बातें भी हैं और दिल की सेहत की बातें भी है। तो आज हम आपसे विश्व हृदय दिवस पर ये पूछना चाहते हैं कि आजकल लोगों के हृदय की जो सेहत है वो गिरती चली जा रही है, तो आपको क्या कारण नज़र आते हैं और किस तरह से हृदय की सेहत को हम पहले की तरह अब भी ठीक रख सकते हैं, इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी है तो आप हमें बताइए। और चलिए अगला गाना आपको सुनवाते हैं, जौहर महमूद इन गोवा, इस फिल्म का ये गाना है। मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हमारे एक साथी ने ये बात लिखी कि मैं अपनी योग क्लास में रोज हास्यासन करवाती हूँ, पहले नकली हंसी लेकिन बाद में वो असली हंसी में परिवर्तित हो जाती है। दिल को दुरुस्त रखने वाले आसन भी हम लोग डेली करते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते। और आज सुरीला सफ़र की प्रस्तुति जो है उसमें इस तरह के गीतों की इन्होंने बात की है। और लिखा है कि आज सुबह मैं 8 बजे जो उठा हूँ दिन के, तो उसके बाद में अब हंस सका हूँ, अच्छा लग रहा है। अध्यापक को भी वर्ग में थोड़ा बहुत बच्चों के साथ हास्य और विनोद करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि सच खाली में ही तो समूचा विश्व ही अवस्थित है, और ये खालीपन तो सभी के हृदय में पाया ही जाता है। सोचिए अगर ये खालीपन नहीं रहता तो फिर हम कहाँ रहते। जी, आपकी ये बात है। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि हंसना सेहत के लिए और ख़ास करके हृदय के लिए बहुत लाभदायक है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर हंसते रहते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल हंसते नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि तेरी हंसी की कीमत क्या है, बता दे तू। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है, महमूद जी अपना मेहनताना मुख्य अभिनेता से केवल 1 रुपये कम लेते थे। उनका किसी भी फिल्म में किरदार जो भी रहे, पूरी फिल्म की जान रहते थे, और फिल्म में कॉमेडी तो को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का काम भी किया है। जी हाँ, धन्यवाद आपको। चलिए अब सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाएंगे। महमूद और साथियों की आवाज़ें हैं और मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। संगीत किसका है, अगर आपको पता है तो हमें बताइए।

बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता फी न मिलती अगर तू माँ के पोते के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। तो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

ये हॉकी फ्रॉम वेयर दिस इंग्लिश बैंड, आज कहां का नेशन, काहे की धरती मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सत्य।

सबसे बड़ा रुपया इस फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत बासु मनोहारी का। अब आपको तय करना है कि सबसे बड़ा क्या है आपके जीवन में, रुपया, पैसा, सेहत, हंसी या खुशी, या अपने सगे संबंधी। चलिए, महमूद विनोद मेहरा और मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया ये गाना है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज हमारे खान पान में शुद्धता की कमी है और लोग अक्सर खाद्य पदार्थों के पैकेट पर दी गई ज़रूरी जानकारी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल के बारे में, जिससे दिल के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ होती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आजकल के रहन सहन का तरीका बहुत तनावपूर्ण रहता है, खान पान भी ठीक नहीं होता है, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, मनोरंजन में कमी मिलकर तनावपूर्ण जीवन बनाते हैं, फिर दिल के डायबिटीज़ आदि रोग भी हो जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ मानव प्राणी ही ऐसा है जो हंस सकता है, और पड़ोसन एक चतुर नारी है जो हमें हंसाती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे शरीर में जो कोई सबसे ज़्यादा प्रामाणिक अवयव है वो हृदय है, जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हमारी रक्षा करता है। विमान में 4 इंजन लगाए जाते हैं, लेकिन भगवान ने हृदय में 6 गुना ज़्यादा ताकतवर बनाया है। एक साथी लिख रही है कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की ज़रूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लाफ्टर क्लब की ज़रूरत पड़े उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर हंस लीजिए। जी हाँ, हंस लीजिए। हम आज अभिनेता महमूद को याद कर रहे हैं, उनके द्वारा जो एक हास्य कलाकार के रूप में उन्हें ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन उन्होंने और भी मतलब अभिनय के क्षेत्र में जो है उन्होंने अपना एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि दूसरी तरह की जो भूमिका है उन्हें भी उन्होंने बहुत संजीदगी से पूरा किया है या निभाया है। चलिए, शबनम फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, जावेद अनवर के बोल हैं, संगीत है उषा खन्ना का।

चमन जान बहार जान चमन हर तावा शिकन तावा शिकन।

बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि सबसे बड़ा धन तो अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत अच्छा है तो आप धन कमा सकते हैं, पर धन से आप सेहत नहीं खरीद सकते। ये बात हमारे एक साथी ने लिखी है जो हमने आपको पढ़ के सुनाई। एक साथी लिख रहे हैं कि आज सुबह सुबह गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। जब मैं सिलेंडर बदलने के लिए नया सिलेंडर लेने लगी तो पतिदेव ने पूछा कि क्या गैस ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा नहीं, इस वाले सिलेंडर को घुमाने ले जा रही हूँ। फिर दोनों ठहाके मारकर हंस पड़े और दिन बन गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अनिद्रा सबसे बड़ा कारण है दिल के लिए। जब भी रात को नींद ना आए तो लंबी लंबी सांस ले और श्वासासन में थोड़ी देर लेटे और मोबाइल से तो दूरी ही बना ले तो आपको लाभ अवश्य होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि आज जो आपने टॉपिक लिया है बड़ा अच्छा है, हंसना मुस्कुराना और अपने दिल का ख्याल रखना, ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। सबसे बड़ा रुपया, इस गाने पर मुझे याद आ गया कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हम लोगों ने 4-5 लड़कियों ने मिलकर इस गाने पर डांस किया था। वो फोटो आज भी देखती हूँ तो अपने आप चेहरे पर हंसी आ जाती है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अब हृदय को पहले की तरह स्वस्थ नहीं रख सकते हृदय, क्योंकि हृदय ही क्यों बल्कि पूरे शरीर को ही नहीं रख सकते, क्योंकि अब वो चूल्हे की रोटी नहीं खा सकते। अब तो गैस आ गई है जिससे पेट में गैस बनना शुरू हो गई और पहले की तरह फिट रहना एक सपना है। यदि व्यक्ति गैस की पकी रोटियाँ खाना बंद कर दे तो स्वास्थ्य पुनः लौट आएगा, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं है क्योंकि आजकल कोई कुछ करना नहीं चाहता है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल की दुनिया में हंसी और चाहत का अपना ही रंग है। किसी की मुस्कुराहट दिल को सुकून देती है, किसी की सादगी मन को छू जाती है और किसी का माकपन दिल पर तीर सा असर कर जाता है। अपनों के साथ हंसी के ठहाके जीवन में खुशियों के रंग भर देते हैं, कभी अटपटे चटपटे पल भी चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। चलिए धन्यवाद आपका। इसी के साथ एक सवाल और मैं आपके हवाले करती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो

बात बात पर बहुत हंसता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी मुस्कुराता नहीं है, चाहे कितनी ही हंसी की बात हो, वो न कभी हंसते हैं न मुस्कुराते हैं। तो ऐसे लोगों को जब आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में, बताइएगा। चलिए अगला गाना गुमनाम फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और महमूद की आवाज़ें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, महमूद और हेलन पर फिल्माया गया ये गाना।

0: ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में, ख्यालों में। जय हंगामा, कहां भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हमें, काले हैं तो क्या।

वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या

बाता तंदाना, दिल तोड़ ये घाता तंदाना, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे तेरे तेरे चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। ताली तक धुम तक ताली तक जम तक धला अंग तक जुग तक ताजी के नक तक नक तक जुम तक नक नक जुम तक नक नक जुम तक नक नक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने तारी तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के ने जम तारी जग तारी ता नक नक ता जिंद ता जम तारी जग तारी जाने जाने को ता जिंद ता जम ता जिंद ता ताक जंग कर दम कर दम कर दम ताक जंग कर दम पाखा नारंगी की पाका पाता चूचा रंगी चालान जैसे मस्त शराबी हालत रंग बिरंगी।

गुमनाम फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जो बिल्कुल हंसते नहीं, ऐसे लोग तो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, हमारे परिवार में हम सब हंसते हंसाते रहते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि परिवार में है तो मैं रिश्ते की बात नहीं करूंगी, शायद रेडियो पर सुन ले तो संबंध खराब हो जाएगा, पर 40-42 सालों से मैंने कभी उन्हें ठहा के लगाकर हंसते हुए नहीं सुना। अगर वो कभी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं तो सोचती हूँ कि आज निश्चित कुछ अजीब होने वाला है। परिवार के लोग उनके इस एटीट्यूड से वाकिफ है और पीछे से जो है उनके बारे में ये बात भी होती है, तो आज कुछ अच्छी बात हो तो 1-1.5 इंच वो मुस्कराएंगे ज़रूर। एक साथी ये लिख रहे हैं कि अक्सर बहुत से कॉमेडियन की असली जीवन जो है वो बहुत तनावपूर्ण रहता है, दूसरों को हंसाकर खुद अंदर से वो दुखी रह होते हैं। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गुजराती मुहावरा है कि हंसे तेनू घर वसे, मतलब जो सदा हंसता मुस्कुराता रहता है उसका घर आसानी से बस जाता है। वैसे अच्छी तंदुरुस्ती यानी सेहत के लिए हंसना मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो अपने मित्र सगे संबंधी हो या कोई और हो। एक साथी ने ये बात लिखी कि महमूद अपने पूरे शरीर से अभिनय करते थे, एक समय ऐसा था कि वे पर्दे पर आते और हंसी का जो दौर दर्शकों के मन में चलता वो ख़त्म ही न होता। एक ज़माना तो ऐसा था महमूद अकेले अपने दम पर पर्दे तक दर्शकों को खींच कर ले आते थे। वैसे तो फिल्मी दुनिया के पिटारे में अनेक हास्य कलाकार आए और गए, मगर महमूद एक रत्न थे। वे उस अनमोल मोती की तरह थे जो हर फिल्म निर्माता अपनी अंगुली में पहनना चाहता था। ऐसे रत्न सदियों में एक बार ही जन्म लेते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए आरती फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, रोशन का संगीत। एक बार फिर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो बात बात पर ठहाके लगाकर हंसते हैं और माहौल खुशनुमा हो जाता है? कोई ऐसे व्यक्ति जो चाहे कितनी भी हंसी की बात हो बिल्कुल भी नहीं मुस्कराते? चलिए गीत सुनिए।

गीत सुनते सुनते और आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं ये पढ़ते पढ़ते गीत कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, और बहुत सारे कमेंट्स हमारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बिहार में कहते हैं कि हंसे तो फंसे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हंसिए मत। किसी की नाकामियों पर, शारीरिक दुर्बलता पर मजाक उड़ाते हुए मत हंसी, ऐसी हंसी किस काम की। जी हाँ, किसी के ऊपर हंसने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी की कमियों पर हंसें, हंसें हंसने वाली बातों पर हंसे, या अपनी ही किसी गलती पर हंसे, या कोई मूर्खतापूर्ण कार्य जब आप हम स्वयं कर लेते हैं तो हमें अपने आप पर हंसी आ जाती, हम उस हंसी की बात कर रहे हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने का हंसने के अलावा एक और बहुत ही दिल के लिए लाभदायक बात है, वो है अपने हृदय में कोई भी बात दबाना नहीं चाहिए, कह डालना चाहिए, हृदय हल्का भी होगा और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा। साथ में विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम का आनंद भी हम ले सकते हैं। और एक साथी की ये बात है कि खुशी से खिला हुआ चेहरा सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि दिल, दिमाग और शरीर का हर अंग खिल जाता है। पता नहीं हम हंसने में भी कंजूसी क्यों कर देते हैं, पहले हम खुद मुस्कुराएं तभी तो हम दूसरों के होठों पर मुस्कान ला पाएंगे। एक साथी ये लिख रहे हैं कि एक वाक्य याद आ गया जो विविध भारती पर किसी प्रोग्राम में सुना था कि महमूद साहब के घर पर कोई पार्टी हो रही थी जिसमें जूनियर महमूद साहब को नहीं बुलाया, उन्हें पार्टी में जूनियर महमूद साहब बिना बुलाए पहुँच गए, वैसी ही टी शर्ट और ड्रेस पहनकर जैसी महमूद साहब ने पहन रखी थी। इस गीत में हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले, इस गीत में जो पहन रखी और ये गीत गाने लगे, बस फिर क्या था, महमूद साहब ने जूनियर महमूद को अपने गले से लगा लिया। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि हंसना केवल होठों का व्यापार नहीं, आत्मा की औषधि है। जो व्यक्ति हंसना जानता है वो दुखों में भी रास्ता निकाल लेता है, और जो हंसाना जानता है वो दूसरों के जीवन में दिया जला देता है। तनाव, बीमारी, अकेलेपन से भरी इस भागदौड़ भरे जीवन में एक सच्ची हंसी दिल हल्का कर देती है और रिश्तों में जमी धूल को साफ कर देती है। हंसने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता और हंसाने वाला व्यक्ति कभी भुलाया नहीं जाता। इसलिए हंसिए ताकि आपका मन स्वस्थ रहे, और हंसाइए ताकि आपका होना दूसरों के लिए उत्सव बन जाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बचपन में जब छोटे थे तो कक्षा 8वीं में था तो मेरे क्लास टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनके चेहरे पर हमेशा हंसी ही दिखाई देती थी, चाहे वो हमें मारते भी थे लेकिन उस मार के पीछे भी एक हंसी छुपी रहती थी, और हमारे प्राचार्य थे उनको कभी भी हमने हंसते हुए नहीं देखा था। तो ये बातें हमारे साथियों की है, और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब एक ऐसा गीत हम सुनने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी भी बार ये गीत सुनो चेहरे पर हंसी आए बिना नहीं रहती। सुनिए ये गाना।

0: गारे गारे
1: गारे बड़ा जी
0: गारे गारे
1: ये सूर बदल
0: गारे गारे
1: ये हमको भटका
0: गारे गारे
1: ये सूर की तरह जी ये सूर इन्ना आया है तो
2: चतुर नार हम छोड़ गए
3: चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी

पड़ोसन फिल्म का ये गाना अभी हमने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि हृदय प्रसन्न कर दिया आपने चतुरनार, ये गाना सुनवा के जो कि पड़ोसन फिल्म से हमने सुना। और एक साथी लिख रहे हैं कि मैं तो हंसता हूँ अपने हालातों पर, क्योंकि लोग कहते हैं कि हंसने वाले लोग ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है, एक पड़ोसी थे जो किसी को हंसते हंसाते या बच्चों को खेलते हुए देख करके बहुत भड़क जाते थे। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि मेरे जो पति हैं बहुत कम ठहाका लगाकर हंसते हैं, बहुत सीरियस वो रहते हैं। और एक ये भी लिखा है साथी ने कि पड़ोस में बहुत पहले एक परिवार आया था, उसमें उनकी जो श्रीमती जी बहुत हंसमुख थी और जब भी मिलती थी तो ऐसा लगता था कि वो अभी हंस देंगी या जो है एक स्माइल एक दे देंगी, इस तरह की बात इन्होंने लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हंसना हंसाना एक कला है, किसी किसी को ये इसमें महारत हासिल होती है। कई कलाकार हैं जो दूसरों को आसानी से हंसा देते हैं, महमूद जी भी उनमें से एक हैं जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं। हंसना सेहत के लिए ज़रूरी है, जिसमें शरीर में उत्पन्न तनाव को वो दूर करता है, आंतरिक खुशी मिलती है। और कुछ गानों का जिक्र उन्होंने किया है। चलिए अगला गाना बेटी बेटे इस फिल्म से।

एक साथी ने ये बात लिखी कि दिल में खुशी और सुकून हो तो चेहरे की मुस्कान और भी खूबसूरत हो जाती है, और बस यूं ही हंसते मुस्कराते रहिए, आपके मुस्कान किसी के दिल में उजाला कर सकती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ हुई भारी बरसात से बिजली आपूर्ति 5 दिन से बाधित है, किसी तरह मोबाइल चार्ज कराकर विविध भारती के कार्यक्रमों को हम सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपका ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है विविध भारती से, बस ये मोहब्बत हमारे दिल में घर कर जाती है, दिल तक पहुंचती है कि चाहे हालात कुछ भी हों, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम किसी तरह विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकें। धन्यवाद आपका इस प्रयास के लिए। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि मेरा ये जो अभी गाना हमने सुना ना पड़ोसन फिल्म का, एक चतुर नार बड़ी होशियार, इस गाने के बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा खुद का नाम चतुर है और इस गाने में गाने की वजह से मेरे दोस्त जो हैं वो हमेशा ये हम फरमाइश करते थे कि चतुर नार करके सिंगार ये गाना आप गुनगुनाकर सुनाइए, और मैं उन्हें गुनगुनाकर सुनाता हूँ, गाकर सुनाता हूँ, और मन ही मन बहुत खुश भी होता हूँ। चलिए, आपकी खुशी हमारे लिए बहुत अनमोल है, और अब हम आपको दो फूल इस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, आशा भोसले और महमूद की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का।

0: एक साथी की ये बात है कि हृदय के स्पंदन को हृदयंगम कर हृदय हेतु हंसिए और हंसाइए। हृदय की अदला बदली सिर्फ प्रेम और साहित्य में होती है, भौतिकी नहीं। विश्व हृदय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिल आपके पास ही रहेगा, कोई और नहीं ले सकता, अतः उसकी सुरक्षा संरक्षण आपके ही हाथों में है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अपने दिल का ख्याल रखना, अपने दिलों को जोड़ना, इसका ध्यान रखिए। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, कुंवारा बाप इस फिल्म का गाना।
1: उरिया

हंसते हंसाते रहिए और अपने हृदय के, अपने दिल की सेहत का ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। एक खूबसूरत सा शब्द है हृदय। छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें हमारी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी है। दिल खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल उदास होता है तो आंखें नम हो जाती हैं। किसी अपने की एक छोटी सी बात भी दिल को छू जाती है। लेकिन यह दिल केवल भावनाओं का केंद्र नहीं है। हमारे शरीर में मौजूद हृदय हर पल हर क्षण हमारे लिए काम करता है। हम जाग रहे हों या सो रहे हों, खुश हों या परेशान, दिल अपनी धड़कनों के साथ जिंदगी को आगे बढ़ाता रहता है। इसी अनमोल दिल की सेहत के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। तो आज बातें उसी दिल की, जो कभी किसी की खूबसूरती देखता है, कभी किसी के प्यार में धड़कता है और कभी किसी की याद में टूट जाता है। और जब बात दिल की हो तो चेहरे से ज्यादा दिल को देखना ही शायद सबसे जरूरी है। दिल को

0: चेहरा झूठा।
1: चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन दिल की अच्छाई लंबे समय तक याद रहती है। कुछ ऐसा ही हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। हम बाहर से अपने आप को स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त देखते हैं, लेकिन अंदर हमारा दिल किस हालत में है, इसका पता लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। आज की जीवन शैली में हर काम की भागदौड़ में अपने खाने पीने, नींद, व्यायाम और मानसिक सुकून को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। तनाव को सामान्य मान लेते हैं और शरीर के संकेतों को टालते रहते हैं। दिल की देखभाल के लिए बहुत बड़े बदलाव हमेशा ज़रूरी नहीं होते। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ी शारीरिक सक्रियता, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, तनाव को कम करने की कोशिश और अपनी नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात, दिल का रिश्ता सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी है। कभी कभी हम मन में इतनी सारी बातें दबा लेते हैं जैसे दिल के अंदर भी एक गिरह पड़ जाती है। किसी से बात कर लेना, अपने मन की बात कह देना, थोड़ा गुनगुना लेना, मुस्कुरा लेना, मन शायद ऐसी ही कितनी गिरहें खोल देता है।

खूबसूरत बात है। दिल की गिरह खोलने के लिए एक गीत भी काफ़ी हो सकता है। संगीत हमारे मन के बहुत करीब होता है, कभी खुशी में साथ देता है, कभी अकेलेपन में साथी बन जाता है, और कभी हमारे उन एहसासों को आवाज़ देता है जिन्हें हम शब्दों में नहीं कह पाते। और दिल की बात हो तो रिश्तों का जिक्र भी होना ही है, क्योंकि किसी का प्यार दिल को सुकून देता है तो किसी की बेरुखी वही दिल तोड़ भी देती है। दिल टूटने का दर्द शायद हर इंसान ने कभी ना कभी महसूस किया होगा, लेकिन ज़िंदगी की खूबसूरती यही है कि दिल टूटने के बाद भी धड़कता रहता है और हमें फिर से जीना सिखाता है। इसलिए अपने दिल को सिर्फ दुखों की यादों में मत भरिए। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीज़ें चुनते हैं, उसी तरह मन के लिए भी प्यार, दोस्ती, हंसी और सकारात्मकता चुनिए। और अगर कभी कोई दिल तोड़ भी दे तो उस टूटे हुए दिल को हमें संभालना भी सीखना होगा, क्योंकि ज़िंदगी किसी एक रिश्ते या दुख पर नहीं रुकती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है, देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में आज बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चीन से कहता रहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हितों में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के हित में नहीं है। एक रिपोर्ट।
1: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। उन्होंने कहा कि व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य और बारीकी से विचार विमर्श की जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अमरीकी पक्ष की ओर से पर्याप्त समझ या संवेदनशीलता नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमरीका में कल से शुरू होने वाली दो दिन की G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। बैठक से इतर श्री गोयल अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन बैठकों में किसानों, मछुआरों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम के लिए अवसर बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारत और सऊदी अरब ने रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश ऊर्जा प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से इतर सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। इस समझौते का उद्देश्य निवेश के लिए और अधिक मजबूत तथा भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। श्रीमती सीतारामन ने स्विट्जरलैंड के एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक गवर्नर पियत्रो लाजेरी से मुलाकात कर भारत में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर भी चर्चा की। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। भारतीय सेना ने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। अमरीकी सेना के प्रशांत क्षेत्र कमान के डिप्टी कमांडिंग जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल बी वोवेल ने कल भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात की। दोनों ने हिंद प्रशांत में बदलते सुरक्षा परिदृश्य पर चर्चा की। इस दौरान कई क्षेत्रों में आपसी रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के अवसरों पर भी विचार विमर्श किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया 2027 के बारे में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक यात्रियों की संख्या मौजूदा लगभग 24 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ करना है। श्री नायडू ने बताया कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर वर्तमान में 166 से अधिक हो गई है। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के बारे में श्री नायडू ने कहा कि इस योजना ने देश भर में हवाई यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अगले वर्ष 16 मार्च से नई दिल्ली के भारत मंडपम में रूट्स एशिया 2027 के 23वें संस्करण की मेजबानी करेगा। नौसेना का वर्ष 2026 का दूसरा कमांडर्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 3 दिन के सम्मेलन में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न क्षेत्रों के संचालक और क्षेत्रीय कमांडर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में सैन्य और रणनीतिक स्तर पर नौसेना की परिचालन तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बारापुल्ला फेज 3 कॉरिडोर का उद्घाटन किया। ये सुविधा मयूर विहार फेज 1 और सराय कालेखां के बीच सिग्नल फ्री लिंक प्रदान करेगी। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूर्वी तथा दक्षिणी दिल्ली के बीच आवागमन बेहतर होगा। श्री शाह ने मुखरबा चौक अंडरपास का भी उद्घाटन किया। गृहमंत्री श्री शाह ने मोदी मिल, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर तथा लोनी अंडरपास के निर्माण की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं की लागत 1,900 करोड़ रुपए से अधिक रहेगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने भारत की विविध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, प्रलेखन, डिजिटलीकरण, अनुसंधान और संवर्धन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि ये साझेदारी मंत्रालय के जनजातीय अनुसंधान तंत्र और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के नेटवर्क को इस केंद्र की अकादमिक, अभिलेखीय और अनुसंधान तथा क्यूरेटोरियल विशेषज्ञता के साथ जोड़ेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश वन विकास निगम को प्रथम प्रमाण से सम्मानित किया। प्रमाण राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विश्वसनीय और पारदर्शी ढांचा है, जो वनों, लकड़ी और अन्य वन उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रमाणित वनों और कृषि वानिकी उत्पादों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों की बदलती जरूरतों को पूरा करने और नई तकनीक के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। श्री नायडू ने आज विजयवाड़ा में क्षमता निर्माण आयोग द्वारा आयोजित मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत साधना श्रृंखला

0: 2026 की दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि कैसे वक्फ संशोधन अधिनियम से बदलाव आया है।
1: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 एक ऐसा ऐतिहासिक विधायी कदम है जिसके माध्यम से सरकार ने सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद को दोनों सदनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक का पारित होना एक ऐतिहासिक क्षण है। दाऊदी बोरा समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने उल्लेख किया कि ये कानून मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम समुदाय के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के साथ हुए अन्याय का संज्ञान लेने और उसके समीक्षा करने के बाद बनाया गया है।
2: 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि हमें न्याय दो, वक्फ वालों ने हमारे साथ ये किया। उसमें ज्यादातर बहने बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा रियलिटी क्या है खोजो, तो ये रातों रात नहीं है। लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की सर, तो मुझे मालूम था कि गौरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उन सब को और मुसीबत, अहमदिया को और मुसीबत है, इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया।
1: कोलकाता उच्च न्यायालय की वकील शिवली शाह ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं को उनके संपत्ति की अधिकार प्राप्त हुए हैं।
3: इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस है महिला लोगों के लिए। एम्पावरमेंट और रिप्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया गया है। नॉर्मली महिलाओं लोगों का वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये मास्ट कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए और वक्फ काउंसिल में भी कम से कम 2 महिला मेंबर होना चाहिए।
1: आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कुल्लन लहा की रिपोर्ट।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आज राज्य प्रभारियों और सह प्रभारियों की बैठक की अध्यक्षता की। हाल ही में हुए संगठनात्मक नियुक्तियों के बाद पार्टी के इन पदाधिकारियों की ये पहली बैठक थी। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीटों के लिए आज द्विवार्षिक चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी की। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 सीट शामिल हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीएल वर्मा, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव, बसपा के रामजी और 6 अन्य नेताओं का कार्यकाल 25 नवम्बर को समाप्त हो रहा है। उत्तराखंड से नरेश बंसल का कार्यकाल भी इसी दिन समाप्त हो रहा है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए भी अधिसूचना जारी की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मलिक के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मीडिया और पत्रकारिता लोगों के दृष्टिकोण को आकार देने और ज्ञान का प्रकाश फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुंबई में फिक्की फ्रेम्स के उद्घाटन सत्र में उन्होंने ये बात कही।
4: आज जब दुनिया बदलाव के दौर पर है, तकनीकी हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है, प्रभावित करने लगी है, ऐसे समय में हम रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन किस तरह से करें, इसके ऊपर जब आज चर्चा हुई है तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री भारत के पर्यटन को, भारत की कल्चर को, भारत की संस्कृति की विविधता को दिखाने के लिए काम करेगा तो निश्चित ही उसके बहुत दूरगामी प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव देश के लिए होंगे।
0: असम के सोनितपुर जिले में सोनाई रुपाए वन्य जीव अभयारण्य एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में सोनाई रुपाई जंगल और हाथियों के लौटने का उल्लेख किया था।
5: हिमालय की तलहटी में स्थित सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य 220 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 सितंबर 1998 को इसे आधिकारिक रूप से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। असम वन विभाग की 2024 की हाथी गणना के अनुसार इसकी सीमाओं के भीतर 140 हाथी दर्ज किए गए थे। यह अभयारण्य कभी सैकड़ों हाथियों का घर हुआ करता था, लेकिन बढ़ती मानवीय गतिविधियों और भूमि अतिक्रमण के कारण हाथियों ने इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। हालांकि अतिक्रमणकारियों को हटाने और वनीकरण के माध्यम से हरियाली बहाल करने के लिए किए गए विशेष प्रयासों ने जंगल के पारिस्थितिक संतुलन को पुनर्स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नतीजतन अब उन क्षेत्रों में भी हाथियों के झुंड देखे जा रहे हैं जहां वे कई वर्षों से दिखाई नहीं दिए थे। सोनितपुर से रजत भरद्वाज के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी न्यूज, गुवाहाटी।
0: और जापान एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
6: निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों 2026 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिला दिया है। एशियाई खेलों में इस स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली वे पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। उन्होंने 28 अंक के साथ नया एशियाई रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले आज महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीन ने रजत पदक हासिल किया। उधर मुक्केबाजी की बात की जाए तो नरेंद्र बरवाल ने 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरू ढांडा को एशियाई खेलों में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाने पर बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत चीन संबंधों में सीमा विवाद के समाधान से सुधार आया है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा, भारत एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में उभर रहा है। देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर। भारत और सऊदी अरब ने दोहा में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। राज्यसभा की 11 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी। और निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में इतिहास रचते हुए भारत को जापान एशियाई खेलों में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना आंचल फिल्म से है। आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजें, प्रदीप का लिखा हुआ गाना, श्री रामचंद्र का संगीत।

कार्यक्रम का अगला गाना है अनार बाला। इस फिल्म से सुमन कल्याणपुर और सुबीर सेन की आवाजें, आरसी पंड्या का लिखा हुआ गाना, बुलो सिरानी का संगीत।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए और सुनिए दिन में 2:30 बजे से विविध भारती।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा फिल्म का गाना, जिसे लता मंगेशकर ने गाया है, शैलेंद्र ने लिखा है और रविशंकर का संगीत है।

0: तीन अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न। विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अनु मलिक।
1: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
0: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
0: अनु मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। और अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, इकबाल कुरैशी का संगीतबद्ध किया ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम बिंदिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अब आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम छलिया।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में छलिया फिल्म का ये गाना आपने सुना, और अब सदाबहार नगरी में कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बम्बई का बाबू। इस फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3 बजने को है अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार व सामायिक चर्चा। जिले की चिट्ठी रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने कांगड़ा जिले के आपदा प्रभावित बोह घाटी का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय दल ने धर्मशाला में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने केंद्रीय दल को जिले में मॉनसून के दौरान हुए जानमाल के नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने केंद्रीय दल से प्राकृतिक आपदा के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के मापदंडों में संशोधन की सिफारिश करने का आग्रह किया ताकि राज्यों को और अधिक सहायता मिल सके। इससे पहले केंद्रीय दल ने धर्मशाला स्थित HPCA स्टेडियम का दौरा भी किया। प्रदेश के पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का आज सुबह कांगड़ा जिला स्थित उनके पैतृक गांव तियारा में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनके निधन से कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। सेना में सेवा देने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। मेजर मनकोटिया अपनी बेबाक राय और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते थे। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि समाज के कल्याण और लोगों की सेवा के लिए विजय सिंह मनकोटिया द्वारा किए गए कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार सहित अन्य नेताओं ने भी मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रदेश में ग्रामीण विकास और स्थानीय जरूरतों से जुड़े मुद्दों को ग्राम सभा तक पहुंचाने के लिए कल सभी 21,678 वार्डों में उप ग्राम सभाओं की बैठकें होंगी। इन बैठकों में लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों पर चर्चा करेंगे तथा आवश्यक प्रस्ताव और सिफारिशें तैयार की जाएंगी। उप ग्राम सभाओं की सिफारिशों को 2 अक्टूबर को होने वाली ग्राम सभा की बैठक में रखा जाएगा। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों की बैठकें सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में कल 30 सितंबर को भारतीय किसान संघ द्वारा नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सोलन जिले से भी 22 किसान महिलाएं शामिल होंगी। इस सम्मेलन में भाग लेने वाली महिलाओं ने बताया कि इसके माध्यम से उन्हें उन्नत कृषि सहित दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सकेगी।
1: महिला काम संघ का एक कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं को उनकी आजीविका के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से हम खेती कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम इस कार्यक्रम के लिए बहुत आहित हैं। इससे हम अपनी खुद की आजीविका कर सकते हैं। खेतों में किस प्रकार से खेती, मिश्रित खेती करनी है, वो भी हमें वो बताएंगे। दूध के द्वारा हम किस प्रकार अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम UNO के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे।
2: कल जो है हम UNO द्वारा 2026 में महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, तो इसकी तैयारी हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज जो है 22 महिला है दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही है, वहाँ जाके हम UNO द्वारा जो भी हमें शिक्षण दिया जाएगा उसको हम सीख लेंगे और अब हर गांव में उस प्रशिक्षण को हम सुचारू रूप से हर महिला को देंगे, जिससे कि उनकी मासिक जो है आमदनी बढ़े।
0: चंबा जिला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाट में आज से राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य हुसैन शाह ने NSS स्वयंसेवियों से निस्वार्थ सेवा भाव और कर्तव्य निष्ठा को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि NSS विद्यार्थियों को समाज सेवा के साथ साथ नेतृत्व, अनुशासन, सहयोग और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। हुसैन शाह ने स्वयंसेवियों को सेवा भावना के साथ समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी प्रेरित किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब आयकर रिटर्न 31 अक्टूबर के बजाय 21 नवंबर 2026 तक दाखिल किए जा सकेंगे। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं लाहौल स्पीति जिले की चिट्ठी। लेखक है सुरेंद्र कुमार और वाचक स्वर है प्रभा शर्मा का।
4: नेपाल में 26 अगस्त को चीन अधिकृत तिब्बत क्षेत्र की पहाड़ियों में ग्लेशियर फटने से आई बाढ़ के बाद लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने 4070 मीटर की ऊंचाई पर स्थित घेपन ग्लेशियर झील को लेकर निगरानी और आपदा तैयारियों को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। झील के जलस्तर और अन्य महत्वपूर्ण मानकों पर लगातार नजर रखने के लिए सितंबर माह में सी डेक तिरुवनंतपुरम के सहयोग से अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जाएगा। उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्ष किरण बढ़ाना ने बताया कि सिसु झील पर अर्ली वार्निंग सिस्टम का सफल परीक्षण किया जा चुका है। घेपन झील से जुड़े संभावित जोखिमों का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के 5 विशेषज्ञों की टीम ने 1 सितंबर से लगभग 14 दिनों तक झील क्षेत्र में अध्ययन किया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच आलू और सेब के बाद अब ब्लूबेरी को घाटी के किसानों की संभावित नकदी फसल के रूप में विकसित करने की दिशा में पहला प्रयास सफल रहा है। गोंधला के प्रगतिशील बागवान प्रताप चंद ने 500 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में ब्लूबेरी के 500 पौधे सफलतापूर्वक तैयार किए हैं, जिनमें जल्द फल आने की संभावना है। उपनिदेशक बागवानी मीनाक्षी शर्मा ने बताया कि ब्लूबेरी की खेती पारंपरिक फलदार पौधों से अलग है और इसके लिए अम्लीय मिट्टी अथवा उपयुक्त ग्रो बैग, नियंत्रित सिंचाई तथा सही किस्म का चयन आवश्यक है। हिमालय की कठिन ऊंचाइयों, बर्फीले रास्तों और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी भूगोल के बीच देश की बेटियों ने साहस और दृढ़ संकल्प की एक नई मिसाल कायम की है। ऑल इंडिया NCC गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड एक्सपेडिशन ने पिनभावा दर्रा पार कर स्पीति की पिनघाटी स्थित मधुगांव पहुंचते हुए अपने अभियान के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 24 अगस्त को किन्नौर के काफनू से शुरू हुआ ये कठिन अभियान 10 दिनों में करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मधु पहुंचा, जहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में कैडेट्स का गर्मजोशी से स्वागत किया। लाहौल स्पीति जिले में सितंबर माह के दौरान भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से विभिन्न राष्ट्रीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होने वाले इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य देश और प्रदेश के विकास के लिए जरूरी विश्वसनीय आंकड़े जुटाना है। सहायक निदेशक व प्रभारी उप क्षेत्रीय कार्यालय मंडी अमित कुमार ने बताया कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों को विभिन्न सर्वेक्षणों के लिए चयनित किया गया है। सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षित NSO अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल उपकरणों तथा अधिकृत वेब पोर्टल के माध्यम से जानकारी जुटाएंगे। लाहौल स्पीति में स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सुरक्षित, स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का फैसला लिया है। उपायुक्त किरण भड़ाना की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, प्रतिष्ठानों की स्वच्छता, पेयजल और नियमित निरीक्षण सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सैंपल लेने और उनकी जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। हिमालय के ठंडे और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में हिमालयन गोल्ड और वंडर प्लांट के नाम से प्रसिद्ध सीबक थॉर्न के चमकीले नारंगी फल अब पककर तैयार हो चुके हैं और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में इसकी तुड़ाई का मौसम शुरू हो गया है। नदियों, नालों और ऊंची पहाड़ी ढलानों के आसपास प्राकृतिक रूप से उगने वाला सीबक थॉर्न कठिन हिमालयी परिस्थितियों में भी मजबूती से जीवित रहता है। सीबक थॉर्न के प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हुए इसे एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत महत्वपूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान मिली है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय त्रिलोकनाथ में आयोजित 54वीं जिला स्तरीय अंडर 19 खेलकूद प्रतियोगिता का समापन उत्साह, उमंग और खेल भावना के साथ हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। समापन समारोह की अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य कंचन ठाकुर ने की। उन्होंने विजेता टीमों और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल में जीत के साथ हार भी महत्वपूर्ण होती है। अभी आप सुन रहे थे लाहौल स्पीति जिले की चिट्ठी।
5: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
6: बनी रहती है, इसलिए अपने दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अतः संतुलित भोजन, नियमित हल्की फुल्की कसरत, पर्याप्त नींद और तनाव को कम करना, ये छोटी छोटी आदतें दिल को स्वस्थ रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन दिल की सेहत के साथ मन की सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है। खुलकर हंसिए, अपनों के साथ समय बिताइए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए और मन में प्यार व सकारात्मकता बनाए रखिए, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहता है तो जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं होती बल्कि वो अधिक सुंदर और खुशहाल बनती है। कितनी प्यारी बातें और सटीक बातें इन्होंने लिखी।
7: बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथी ने छोटी सी बात लिखी है कि दोस्तों के साथ दिल खोल कर हंसिए, ऑपरेशन थिएटर में दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सीधी बात लिखी है।
6: अभी हमने थोड़ी देर पहले जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो यही हमने कहा था ना कि जब हम मिलती है तो दिल की बात करते हैं। तो बस ऐसे ही अपने दोस्तों मित्रों से
7: गागर में सागर भरने वाली बात है ना। और एक साथी और लिखते हैं कि कोई माने या ना माने, पहले कभी हृदय को बीमार होते हुए सुना था, कभी ब्लड प्रेशर की कोई बात सुनी थी, कभी शुगर की कोई बीमारी सुनी थी, कभी किडनी की कोई इतनी बीमारी सुनी थी। इसकी सच्चाई सिर्फ इतनी है, हजारों सवालों का एक जवाब, जनसंख्या बहुत ज्यादा है इसलिए मौसम का अनियंत्रित वातावरण हो रहा है। ईश्वर ने तो हमें, ये प्रकृति ने तो हमें 4 महीने का हर मौसम दिया था, मगर हमने अपनी स्वार्थ और कायरता से उस मौसम को बिल्कुल बदल दिया। ना गर्मी आएगी तो 7-8 महीने गर्मी पड़ेगी, ठंड जाए 4 महीने पड़नी थी, वहाँ 4-5 दिन में चली जाती। यानी कि इनका कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है कि समस्याएं होती जा रही हैं इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो भागा दौड़ी की हो कि कमाने धमाने की चिंता है या घर परिवार को पालने की चिंता है, तो और मौसम का भी उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अब जल्दी ज़्यादा सुनाई देने पड़ गई कि तनाव की वजह से हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की बीमारियाँ सुनाई देने लग गई हैं।
6: हाँ, इन्होंने ये लिखा कि पहले के ज़माने में इन बीमारियों के बारे में हमने सुना ही नहीं था, लेकिन अब ये बहुत आम हो चुकी है। हाँ, ये तो सही बात है कि मौसम का बहुत असर हुआ है, हमारे खान पान का असर हुआ है, हमारी दिनचर्या का भी बहुत असर हुआ है। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग तो बहुत देर तक सोते नहीं हैं और सुबह बहुत देर तक सोते रहते हैं, जल्दी उठते नहीं हैं, और खान पान का असर तो हुआ ही है। जंक फूड खाते हैं हम, मसालेदार और तेज़ मिर्च वाले, और इसके अलावा तेल बहुत होता है उनमें, बहुत सारा बटर चीज़ वगैरह डाल करके इस तरह की चीज़ें जब हम खाते हैं तो इसका दिल पर असर तो होता ही है।
7: बिल्कुल।
6: तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है ताकि हमारा दिल जो है वो स्वस्थ रहे। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल और लंबा जीवन पाने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव मुक्त जीवन शैली अपनाना सबसे ज़रूरी है। स्वस्थ दिल और दीर्घायु के लिए मुख्य उपाय जो हैं वो भी इन्होंने लिखे हैं कि नियमित व्यायाम करें, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, और उन व्यायाम में आप जो है तेज चलना, साइकिल चलाना या तैरना, ये आप कर सकते हैं। संतुलित आहार, अपने खाने में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज और नट्स जैसे कि अखरोट, बादाम, ये शामिल कर सकते हैं। तनाव प्रबंधन कर सकते हैं, योग, ध्यान और मेडिटेशन से आप जो है तनाव को दूर कर सकते हैं, और धूम्रपान और शराब से दूरी बना सकते हैं। इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है, रोज 7-9 घंटे की नींद लें, नियमित जांच कराएं, जैसे अगर रक्तचाप जैसी कोई बीमारी है या शुगर है या नहीं है, उसके कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं तो भी आप जो है जांच करवा सकते हैं, और इस तरह से जो है आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।
7: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हंसिए और दिल को तंदुरुस्त रखिए, क्योंकि आज 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस है। लोग भूल गए हैं कि दिल को वेंटिलेटर की नहीं बल्कि सिर्फ थोड़ी सी खुली हंसी की ज़रूरत है। हंसने से फेफड़े तो फूलते ही हैं, साथ ही दिल को भी लगता है कि आप अभी जिंदा दिल हैं। इसीलिए पार्क में जाकर कृत्रिम रूप से हा हा हा करने वाले लॉफ्टर क्लब की ज़रूरत पड़े, और उससे पहले ही घर में बीवी के चुटकुलों पर या खुद के हालातों पर और हंस लिया कीजिए, यानी कि अपने आसपास हंसी खुशी का माहौल रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं और आपका दिल और आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे।
6: बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम की सेहत के लिए भी कुछ बातें बहुत जरूरी हो जाती है मंजरी, और इसमें एक बात है कि हमको समय समय पर छोटा सा एक ब्रेक लेना होता है। तो कार्यक्रम में इस वक्त समय हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, देखिए हम फिर से हाजिर हैं और हम दिल की बातें कर रहे थे। तो एक साथी ने बहुत दिल से ये बात लिखी कि दिल एक ऐसा इंजन है जो बिना किसी ब्रेक के जिंदगी भर लगातार चलता रहता है। हमने अभी कार्यक्रम में ब्रेक लिया लेकिन दिल की बात जब आती है तो वहाँ ब्रेक का कोई काम ही नहीं होता है। जब तक ये धड़कता है तब तक सांसें चलती है और जीवन मुस्कुराता है। इसलिए कहा भी जाता है रखेंगे जब दिल का ख्याल तभी जीवन बनेगा खुशहाल। एक मजबूत और सेहतमंद दिल सिर्फ हमें बीमारियों से बचाता नहीं है बल्कि हमारी उम्र को भी बढ़ाता है। दिल स्वस्थ होगा तभी जीवन का हर पल लंबा, ऊर्जावान और खुशनुमा बना रहेगा।
1: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि आजकल के व्यस्त रहन सहन के तौर तरीकों के कारण, खान पान, नींद में कमी के कारण बहुत से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं जिनमें डायबिटीज और हृदय रोग मुख्य हैं। इसके साथ ही एक साथी और लिखते हैं कि विश्व हृदय दिवस की सभी को तहे दिल से शुभकामनाएं। सालों साल तक दिल स्वस्थ और लंबा जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से ताज़ा, संतुलित और पौधों पर आधारित आहार लेना चाहिए। दुनिया के सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के खान पान और के सुझावों के अनुसार उनकी थाली में हर चीज़ों को शामिल करना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने लिखी है। आप सादा भोजन करें और खूब सारा पानी पिए और हरी सब्जियां, फल वगैरह खाएं तो आप हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे।
0: कुल मिलाकर हम वर्षों से जो परंपरागत तौर तरीके जो हम अपना रहे हैं या खान पान जो अपना रहे हैं, बस उन्हीं को अगर हम अपनाते चलेंगे और समय से सोना, समय से उठना, थोड़ा व्यायाम करना, छोटी छोटी बातें, लेकिन इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो स्वस्थ रहा जा सकता है।
1: और हमारी मंजू जी बहुत ध्यान रखती हैं चीजों का।
0: देखिए रखना तो जरूरी है ही, क्योंकि हमें शरीर के साथ साथ अपनी आवाज का भी ख्याल रखना पड़ता है और सेहत दुरुस्त रहेगी तभी तो हम अपने काम को समय से आ पाएंगे और जा पाएंगे।
1: और आपको से ही तो हम लोग प्रेरणा लेते हैं देखा जाए तो।
0: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए हमें संतुलित आहार, नियमित रूप से व्यायाम और धूम्रपान जैसी आदतों से बचाव करना चाहिए। इसी तरह की बात हमारे एक साथी ने पहले भी लिखी है तो जो हमने आपको पढ़ के सुनाई है। एक साथी और लिख रहे हैं कि स्वस्थ दिल लंबा जीवन का आधार है, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार लें और व्यायाम करें। और इसी तरह की और भी बातें हमारे साथियों ने लिखी।
1: एक लिखते हैं कि मंजू जी की मुस्कान और ठहाकों का सफर ही जिंदगी को खुशनुमा बनाता है, क्योंकि बिना हंसी के इंसान का दिल एक उदास और बंजर जमीन की तरह हो जाता है। किसी के चेहरे पर खुशी लाना एक जादुई हुनर है जो हर किसी के पास नहीं होता। जो लोग दिल के अमीर होते हैं वे दौलत और पैसों से नहीं बल्कि किसी मासूमियत, उसकी तिरछी चितवन और दिलकश अदाओं से ही अपना सब कुछ हार बैठते हैं। जब कोई अपनी ही धुन में मगन होकर अजीबोगरीब हरकतें करता है तो महफिल में अपने आप हंसी के फव्वारे फूट पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते जब ऑटो रिक्शा या ट्रकों के पीछे लिखे वो मजेदार और तीखे डायलॉग्स नजर आते हैं तो इंसान चाह कर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाता है। बिल्कुल वो दृश्य उभर आया जब जाते हैं लंबे सफर पर।
0: तो एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि दिल दुरुस्त तो जिंदगी दुरुस्त, एक स्वस्थ हृदय लंबा और स्वस्थ जीवन बिताने में हमारा सहायक होता है। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। और एक और साथी लिख रहे हैं कि दिल को स्वस्थ और दुरुस्त रखने के लिए प्रतिदिन योग प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करें, संतुलित आहार लें, सकारात्मक सोच रखें। तो आप सभी का धन्यवाद और अब हम एक गीत सुनते हैं।

0: गीत हमने सुन लिया मंजरी, और अब हम बात करेंगे, एक हमारी सखी की बात करेंगे जिन्होंने क्या किया है और किस तरह से उन्होंने जो है दुनिया को राह दिखाई है, उसके बारे में बात करेंगे, अदिति बलबीर की बात करेंगे। हम कुछ अपनी तरफ से बात बोले, उससे पहले हमारे जो श्रोता हैं उन्होंने उनके बारे में कुछ बात लिखी है, तो पहले वही पढ़ के हम सुना देते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये कहावत एकदम सटीक बैठती है अदिति बलबीर पर, जो कि वी रिसोर्ट्स के सीईओ और फाउंडर है। उनकी गिनती आज भारत की सबसे सफल बिजनेस वुमेन में होती है।
1: बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। और एक ने लिखा है कि बचपन से ही अदिति को घूमने का शौक था। अदिति इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की एक पूर्व छात्र हैं। उन्हें बचपन से घूमने फिरने से प्यार था, जिसको उन्होंने अपने लिए करियर के में बदल लिया, जिसके बाद उन्होंने वी रिसोर्ट की शुरुआत की। अदिति 2014 में वी रिसोर्ट की सीईओ बनी। 5 साल से कम समय के भीतर ही अदिति ने भारत के 21 राज्यों में 120 से ज़्यादा रिसोर्ट्स के लिए कंपनी के विस्तार का नेतृत्व किया। ये रिसोर्ट्स ऑफ बीच यात्रा श्रेणी में अपनी तरह का पहला ब्रांडेड रिसोर्ट बन गया है। बहुत अच्छी सी जानकारी भेजी हमारे साथियों ने।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि हमने कहा कि अदिति बलबीर जो है वो भारत की एक प्रमुख महिला उद्यमी और वी रिसोर्ट्स की संस्थापक है, और उन्होंने भारत में ऑफ बीट और इको टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। अदिति बलबीर का जन्म नई दिल्ली में हुआ। उन्होंने मुंबई के वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से फाइनेंस में PGDM यानी कि MBA की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद और ड्यूक यूनिवर्सिटी के फुकुआ स्कूल ऑफ बिजनेस से उच्च प्रबंधन शिक्षा प्राप्त की है।
1: अदिति ने अपने करियर की शुरुआत फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर से की। उन्होंने बेरिंग प्राइवेट इक्विटी पार्टनर्स और बेडरॉक वेंचर्स जैसी प्रमुख प्राइवेट इक्विटी और वेंचर्स कैपिटल फर्मों में काम किया। इस दौरान उन्होंने रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्रों में बड़े निवेश का प्रबंधन किया, जिससे उन्हें इस उद्योग की बारीकियों, बाजार की कमियों और अवसरों की गहरी समझ मिली।
0: बिल्कुल, और वी रिसोर्ट्स की जो नींव है वो कैसे पड़ी, इस बारे में भी हम आपको बता दें। प्राइवेट इक्विटी के काम करते समय अदिति ने देखा कि भारत में कई खूबसूरत और ऑफबीट यानी कि कम लोकप्रिय या प्राकृतिक ऐसी जगहें हैं जहां छोटे बुटिक रिसॉर्ट्स मौजूद हैं। हालांकि ये रिसॉर्ट्स असंगठित थे, इनके पास न तो उचित ब्रांडिंग थी और न ही मार्केटिंग और पहुंच और न ही पेशेवर प्रबंधन। इसी अंतर को ख़त्म करने के लिए 2014 में उन्होंने वी रिसॉर्ट्स की नींव रखी। उन्होंने एक ऐसा एसेट लाइट मॉडल तैयार किया जिसके तहत स्वतंत्र रिसॉर्ट मालिकों के साथ साझेदारी करके उन रिसॉर्ट्स का माननीकरण और प्रबंधन वीर रिसॉर्ट्स के बैनर तले किया जाने लगा।
1: बिल्कुल, और माइक्रो और ऑफ बीट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकों को शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति के बीच अद्वितीय और प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है, और मानकीकरण दूर दराज के इलाकों में स्थित रिसॉर्ट्स में भी मेहमानों को उच्च गुणवत्ता, स्वच्छता, सुरक्षा और पेशेवर सेवाएं देना उनका एक मुख्य उद्देश्य है। और स्थानीय रोजगार और सशक्तिकरण के लिए उन्होंने रिसॉर्ट्स में 90% से अधिक कर्मचारी स्थानीय ग्रामीणों को नियुक्त कर उन्हें प्रशिक्षित करना, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले, यानी कि उन्होंने आसपास के लोगों को ही इसमें आगे बढ़ाया।
0: हाँ, ताकि लोकल लोग जो है वहाँ के वो एक तो होता यह है कि उनको काम मिलता है, रोज़गार मिलता है। दूसरा, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको उस एरिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है। दूसरा, जब उनका घर वहीं है तो वहाँ उन्हें काम करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती है। वो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए रोज़गार भी मिल जाता है, काम मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और सतत पर्यटन, पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों को पर्यटकों तक पहुँचाना, ये भी इस चीज़ का एक उद्देश्य रहा है। अब हम बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। तो पर्यटन और उद्यमिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अदिति बलबीर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें है फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वीमेन इन बिजनेस, ये अवार्ड उन्हें मिला है। दूसरा है द इकोनॉमिक टाइम्स, इनकी तरफ से वीमेन अहेड ट्रॉफी से इन्हें सम्मानित किया गया। और इसके अलावा CNBC TV18 यंग टर्क्स, इनकी तरफ से भारत की उभरती हुई दूरदर्शी उद्यमी के रूप में प्रदर्शित ये अवार्ड इन्हें दिया गया। डेल विमेंस एंटरप्रेन्योर नेटवर्क की तरफ से वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली चुनिंदा महिला उद्यमियों में उन्हें शामिल किया गया और वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप उत्कृष्ट महिला उद्यमी और हॉस्पिटैलिटी लीडरशिप अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।
1: इतना सारे उन्हें पुरस्कार मिले, ये सब उनकी मेहनत का ही और सोच का नतीजा है, जो जब उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि हमें इस तरह के सुविधाएं देनी चाहिए, इन पर काम करना चाहिए, तो उनके काम की तारीफ हुई और ये जो चीज़ें उन्हें मिली हैं सम्मान पुरस्कार वो उसका ही एक परिणाम है। तो ऐसी सोच सबकी अगर हो, अपने ही आसपास के चीज़ों को हम अच्छा करने के लिए सोचें, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम सभी।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। होता क्या है ना कि हम बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, कोई बड़ी कंपनी है, कोई बड़ा काम है जिसका नाम है, हमें लगता है कि जब हम वहाँ काम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी, या फिर वहीं जा कर के हम पैसा कमा सकते हैं, या अच्छा जीवन तो एक वहीं पर बिताया जा सकता है। लेकिन अगर हम आसपास नज़र डालें, या जो पढ़ाई हमने की है, या फिर ऐसा भी होता है कि जिस क्षेत्र में हमारी रुचि है, अगर उन क्षेत्रों की तरफ हम ध्यान दें और हमारी पढ़ाई का उपयोग उन चीज़ों को बढ़ावा देने में अगर हम करें, तो हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई शर्म की बात नहीं है, या ये कोई कमतरता आंकने की भी बात नहीं है कि अगर हम यहाँ ये छोटा सा काम करेंगे तो अरे हमको कौन पूछेगा, या हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, या पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, या घर कैसे चला पाएंगे। लेकिन अगर आप इन बातों की तरफ नज़र डालें, और कई बार क्या होता है जिससे कई महिलाओं को या पुरुषों को जिनको भी बहुत किसी क्षेत्र में रुचि होती है, जैसे किसी महिला की बात करें, उसे कशीदाकारी बहुत पसंद है, या उन्हें भोजन बनाना बहुत पसंद है,
1: किसी को अचार पापड़ इन सब का भी शौक होता है, तो भाई आप अपनी ही उस कला को आगे जाने दीजिए।
0: हाँ, तो ये बहुत सुनने में शायद हो सकता है या कहने में बहुत छोटी बात ये लगती हो, लेकिन अगर कोई महिला कोई व्यक्ति इस चीज़ को ठान ले कि नहीं मुझे इसी क्षेत्र में कुछ करना है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा उस क्षेत्र में कुछ काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम अदिति की बात कर रहे थे, ऐसा अगर इन्होंने नहीं सोचा होता तो क्या ये काम ये कर पाती, इन्हें पुरस्कार मिल पाती या आगे बढ़ पाती? तो ऐसा हम सब सोच सकते हैं और सब कर सकते हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि कार्यक्रम में एक ब्रेक ले लें।

0: तो मंजरी गीत हमने सुन लिया और अब कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत ज़रूरी होती है कि जब हम अच्छी सारी हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मन भी थोड़ा सा प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन जब बात हो भाई अन्न के दाने की, तो अन्न का नाम सुनते मन प्रसन्न होता है, लेकिन जब उसकी कोई कद्र नहीं करता है तब मन दुखी होता है ना।
0: बातें हल्की फुल्की है लेकिन ये जो विषय है ये बड़ा भारी है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि अन्न से हमारा वास्ता रोज पड़ता है, अन्न के बिना तो हम रह नहीं सकते। कोई दिन ऐसा नहीं जब हम अन्न के बिना रहते हों, कुछ तो हम खाते ही हैं, पीते ही हैं। तो उसकी जो अहमियत है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। अन्न केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। हमारे संस्कारों में भी अन्न को ईश्वर का रूप माना जाता है और हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर में खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट ये मनाया जाता है। इसका सबसे बड़ा जो मकसद होता है या उद्देश्य होता है वो ये याद दिलाना होता है कि अन्न का एक भी दाना व्यर्थ ना जाने दे।
1: बिल्कुल। और आज एक तरफ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी नहीं नसीब हो रही है, और वहीं दूसरी तरफ खेतों से लेकर हमारी थालियों तक ढेरों खाना बर्बाद हो जाता है। जब खाना बर्बाद होता है तो सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि उसे उगाने में लगी उस व्यक्ति की मेहनत यानी किसान की मेहनत, पानी, ईंधन और ज़मीन जैसे अनमोल संसाधन भी बर्बाद होते हैं। क्योंकि दिन रात अपने खेत को सींच कर, बीज डालकर बोना, फसल को देखना पल पल बढ़ते हुए, फिर उसमें अन्न लगता हुआ, दाने लगते हुए देखना, उनकी जो कहते हैं बालियां लगती हैं, गेहूं की बालियां लग रही हैं, तो देख के वो कितने हर्षित होते हैं। और जब या तो प्राकृतिक गड़बड़ी हो तो अलग बात है, लेकिन जब हमारे पास तक वो खाना आ रहा, अन्न आ रहा है और हम उसको कदर नहीं कर रहे हैं, तो फिर मन खराब होता है कि नहीं एक गेहूं के दाने से हम कितना अन्न उपजा सकते हैं।
0: किसान की मेहनत तो अपनी जगह है ही मंजरी, लेकिन उसके बाद हम भी तो उसे बाजार जाते हैं, खरीद कर लाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, घर में लाते हैं, उसके बाद उसे बनाने का जो एक प्रोसेस है बहुत लंबा एक प्रोसेस होता है। उस तरीके से हम भोजन को पकाते हैं और उसके बाद जब हम खाते भी नहीं है उसे यूं ही फेंक देते हैं, तो ये एक मतलब मुझे लगता है कि सही बात नहीं है। हमारे साथियों ने ये बात लिखी है कि अन्न केवल हमारी भूख नहीं मिटाता बल्कि ये किसान की महीनों की मेहनत, पानी, मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। जब हम अपनी थाली में भोजन छोड़ते हैं तो हम केवल एक निवाला नहीं फेंकते बल्कि उस तक पहुंचने में लगे अनगिनत संसाधनों और प्रयासों को व्यर्थ कर देते हैं।
1: बिल्कुल। और इसी तरह हमारे एक साथी और लिखते हैं कि व्रत लिखते कि हल्की फुल्की बात है ना जाए व्यर्थ, उनका एक भी दाना अंक एक ही दाना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमें ऐसा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे किसान इस अंक को, इस मतलब अन्न को उगाने में कितनी मदद करते हैं। इसलिए अपनी थाली में जितना लेना है, जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं, और उतना ही आप थालियों में डालें। अगर आप शादी या पार्टियों में जैसे जाते हैं देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप ले लेते हैं या गिलास भी उसमें लेके थाली भर के उसका जूठा देते हैं, मतलब लिया थाली में और जूठा छोड़ दिया, तो अनाज की जो होती बर्बादी ही हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि आप बिल्कुल उसी हिसाब से ले जितना आप खा सकते हैं।
0: एक हमारी सखी ने लिखा है कि हम जब अपने गुरुओं के मंदिर की में जाते हैं, वहाँ की बात है कि इतनी अच्छी लगती है वहाँ की उनकी बात की, वहाँ दो लोग सबकी थाली चेक करते हैं कि किसी ने खाना बचाया तो नहीं है, उसे वही पूरा खाना पड़ता है, तो अब सब लोग उतना ही लेते हैं जितना उन्हें खाना होता है। वैसे भी हम पहले थोड़ा कम लें और फिर चाहिए तो और ले लें। और देखो जो भोजन व्यर्थ होता है ना उसका एक कारण ये भी होता है, कोई भी जैसे समारोह हुआ, शादी समारोह या कोई भी ओकेजन होता है, तो वहाँ खाने में बहुत सारी वेराइटी बहुत होती, बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं और व्यक्ति चाहता है कि मैं सारे व्यंजनों को चख तो लूँ,
1: कैसे खा सकते हैं आप सोचिए,
0: जबकि उसके पेट में उतनी जगह होती नहीं है, लेकिन वो सब ले लेके चखना जरूर चाहता है। और उस चक्कर में जब कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी उसको कम पसंद आती तो वो लेता है और छोड़ देता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी राय है, कि हम थोड़े अगर व्यंजनों की संख्या अगर कम रखेंगे तो शायद भोजन की बर्बादी कम हो, ऐसा मुझे लगता है।
1: वो तो खैर ये अपना सोचना

0: उठा होकर या बचकर बर्बाद ना हो, शादी या पार्टियों में अक्सर देखा गया है कि बुफे सिस्टम में कुछ लोग थाली में इतना ज़्यादा भोजन ले लेते हैं कि दूसरी बार लेने जाना ना पड़े। इस ना लेने जाने की मानसिकता से भरी आलस ही खाने की बर्बादी का कारण अक्सर बनती है। तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखें कि जिसने भी आपको बुलाया है स्वागत सत्कार में, आपके लिए भोज का इंतज़ाम किया है, आयोजन किया है, तो उसके खाने की आप कद्र करें,
1: बिल्कुल
0: उसको व्यर्थ ना जाने दें।
1: एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अन्न का एक एक दाना कीमती है और इसे व्यर्थ होने से बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जब हम भोजन बर्बाद करते हैं तो सिर्फ खाना बर्बाद नहीं होता बल्कि उसे उगाने में लगी किसान की मेहनत और भी जाती है। और यहाँ कुछ छोटी और व्यावहारिक आदतें दी गई हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है कि थाली में उतना ही लें जितनी भूख हो और बचे हुए भोजन का सही उपयोग, यदि खाना बच जाता है तो उसे फ्रिज में सुरक्षित रखें और अगले समय किसी नई रेसिपी बनाने में उसका उपयोग करें। और एक ये भी बात लिखी है कि ज़रूरतमंदों की मदद करें, यदि किसी पारिवारिक समारोह या पार्टी में भोजन अधिक मात्रा में बच जाए तो उसे फेंकने के बजाय पास के किसी शेल्टर होम या ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। खरीदारी की योजना जो है उसके बारे में बाज़ार जाने से पहले घर में मौजूद सामान की सूची बना लें ताकि ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीद कर खराब ना हो। और लिखा है कि अन्न ही जीवन है, आइए मिलकर यह संकल्प लें कि हम न तो खुद भोजन बर्बाद करें और न ही दूसरों को करने दें।
0: और हम लोग पहले गीत सुन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।

हॉर्स उड़ने की यहाँ पर बात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई लोगों को देखते हैं बहुत सारा भोजन बनाते हैं, फेंक देते हैं, तो उनको जब फेंकते हुए हम देखते हैं ना, तब भी हमारे होश उड़ जाते हैं, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई इस भोजन को लाने में बना

0: खाने में इतना पैसा खर्च, इतनी मेहनत खर्च, इतना इसके अंदर संसाधन लगते हैं, और जब फेंका जाता है तो कैसे लोग इतना आराम से फेंक देते हैं,
1: बिल्कुल
0: हमारा
1: नहीं,
0: दिल नहीं करता है फेंकने
1: बिल्कुल
0: का,
1: फेंकना
0: तो
1: बिल्कुल भी
0: तब
1: नहीं
0: हमारे
1: चाहिए
0: भी होश उड़ जाते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल सही आपने कहा है। और देखिए, हम लोग समय समय पर बताते भी रहते हैं अपने व्यंजन वाले में कि अगर कोई चीज़ है आपके पास घर में बची है, जैसे चावल बचा है, तो आप उसका चावल को भी दूसरी तरह से बना सकते हैं, चाहे उसको फ्राई कर लीजिए, चाहे आप चावल को पीस करके उसमें थोड़ी सूजी बेसन मिला करके आप
0: डोसा
1: उसमें
0: जैसा,
1: डोसा जैसा बना सकते हैं। चावल की भजियाँ भी बहुत अच्छी बनती है, कच्चे चावल की,
0: कटलेट
1: तो
0: भी बनते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो अन्न आप दिमाग लगाएंगे ना, तो आपका अन्न जो है बेकार नहीं जाएगा। और अगर आपको जैसे, और किसी को देना है, मंजू जी एक बात मुझे यहाँ पर याद आई कि अगर आपको खाना किसी को देना है, तो देने से पहले एक बार खाने को आप चेक जरूर कीजिए
0: हाँ
1: कि वो
0: बिल्कुल,
1: उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो गई, बासी तो नहीं, बासी में गंध तो नहीं आ रही है, वो ख़राब तो नहीं होने लगा है। अगर ऐसा खाना अगर आपके पास है और आप चाह रहे हैं नहीं इसको दे दें, नहीं वो काम बिल्कुल मत करिए। आप उस अन्न को आप मिट्टी में आप दबा दीजिए, जिससे वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो फिर भी ठीक है एक बार, लेकिन खाना कभी किसी को गलत मत दीजिए,
0: बिल्कुल।
1: है ना।
0: ऐसा ना सोचे कि चलो हम जो नहीं खा सकते तो
1: हाँ
0: दूसरों को दे दें, जो
1: बिल्कुल नहीं
0: भोजन आप खा सकते हैं, जो
1: जी
0: खाने लायक है, उसी को आपको दूसरों को देना है। ऐसा नहीं है कि
1: जी
0: जो खराब हो चुका है वो हम दे दें और वो खा करके बीमार हो जाए, ऐसा हमें नहीं
1: नहीं
0: करना है।
1: करना है
0: चलिए अब हम अपने दूसरी बात की तरफ चलते हैं, राई का पहाड़। ये एक कहावत है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनना बड़ा ही अनूठा मुद्दा है। राई का पहाड़ बनना से तात्पर्य है कि छोटी छोटी बातों को एकदम लंबा बना देना। और एक और साथी यही लिख रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी कि बात का बतंगड़ बना देना, जैसे किसी साधारण सी बात या छोटी सी समस्या को बेवजह तूल देना और उसे बड़ा मुद्दा बना देना, ये एक बात है। और इसी से संबंधित एक और एक ऐसी कहावत है कि गरम तेल में राई की तरह उछलना, ये भी इन्होंने
1: बिल्कुल
0: साथी ने हमारे लिख
1: मतलब
0: करके
1: जैसे
0: भेजा है।
1: कोई बात चल रही है और किसी ने थोड़ी सी बात शुरू करी और वो आपके मन के या लोगों के मन के खिलाफ है, लेकिन आप उसमें उसको थोड़ा सा और हवा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो भाई तेल में जैसे राई चटकती ना वैसी चटकेगी। और कई बार ऐसा होता भी है कि साथ में सारी सहेलियाँ या सारे दोस्त खाना खा रहे हैं और एक कुर्सी की वजह से आपस में हो जाए कि नहीं ये कुर्सी पर हम बैठेंगे, उस पर हम बैठेंगे, तो ये भी राई के पहाड़ वाली जैसी हालत हो जाती है।
0: वैसे देखो
1: तो
0: मंजरी,
1: जी
0: अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो राई का पहाड़ बनाना उन्हें बहुत पसंद
1: उन्हें
0: होता
1: और
0: है।
1: मजा आता है चटकारे लेके,
0: हाँ
1: उसमें किस्से अपने डालेंगे उसकी बात को, कहते हैं ना मुंह से बात निकली
0: हाँ
1: किसी ने कहीं कहीं तक कही, लेकिन दूसरा उसको मिर्च मसाला लगा के आगे तक बढ़ा देता है। और जैसे राई के उछलने वाली बात होती है, एक बार इसने कहा, उससे कहा, उससे कहा, हर समय बदलते हुए दूसरे रूप में वो सामने आ जाती है
0: हाँ जब एक ही बात अगर
1: जी
0: मतलब 5, 6, 10 लोगों तक पहुंचती है तो उसका स्वरूप थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बदलता जाता है, और जब वापस पहले व्यक्ति तक वो बात आती है तो उसमें बहुत कुछ बदलाव आ चुका
1: आ
0: रहता है।
1: चुका है
0: यानी जो बात उसने कही होती है और जो बात लोगों तक पहुंची है, इन दोनों बातों में बहुत अंतर हो जाता
1: तो
0: है।
1: बड़ी समस्या होती है ना मंजू जी, कि अब वो जो हमने जो सच बोला है उसको हम कैसे साबित करें, वो बड़ी एक समस्या होती है। कि फिर या तो लगता है कि जिसने बात फैलाई है ना उसी को सामने बुलाओ और आमना सामना कर लो
0: लेकिन ये
1: तो ही
0: संभव
1: ठीक
0: नहीं
1: है,
0: होता
1: नहीं
0: है।
1: हो पाता।
0: किसने
1: लेकिन
0: किससे कहा, क्या कहा, कैसे कहा, ये सब समझना। और दूसरी बात यह है कि ये सब करने में तो हमारा बहुत सारा समय भी चला जाएगा
1: बिल्कुल
0: और हमारी बहुत सारी ऊर्जा भी खर्च हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: हमारे पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, आप घर का काम करते हैं, आप बाहर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं,
1: जी
0: तो उसके लिए समय की भी ज़रूरत होती है और ऊर्जा की। अगर हम यही सब करते रहेंगे तो फिर तो हम अपना काम ही
1: फिर तो
0: नहीं कर
1: इससे अच्छा है
0: पाएंगे।
1: कि उन्हीं को छोड़ दो, तुम्हें
0: तो
1: फैलाने दो जिसको फैलाना
0: बिल्कुल
1: है
0: सबसे बड़ी
1: जी।
0: बात यह है कि आप इन जो जिन बातों पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत ना है उन बातों पर ध्यान ना दें। और जो लोग राई का पहाड़ बनाते हैं उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि इन व्यर्थ बातों में अपनी ऊर्जा को खर्च ना करें, बल्कि जो आपके पास समय है, जो ऊर्जा है,
1: बिल्कुल
0: उसको किसी सकारात्मक कार्य में आप लगाएं। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, और कुछ नहीं तो कम से कम अपनी सेहत बनाने के लिए भी हम ये समय दे सकते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: है
1: सही
0: ना।
1: बात
0: थोड़ा
1: आपने कही
0: व्यायाम कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा ईश्वर भक्ति में अपना समय लगाइए,
1: बिल्कुल
0: और किसी और काम में जिससे आपको थोड़ा कुछ अर्जित हो सके, अगर
1: बिल्कुल
0: उसका उपयोग उसमें करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: बिल्कुल सही बात। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि छोटी सी बात को इतना बड़ा ना बना दे कि रिश्तों में दूरी आ जाए, बात चाहे राई जितनी हो, समझदारी यही है कि उसे पहाड़ ना बनने दे। रिश्तों की बात जहाँ

देखिए मंजू जी, कि अगर आपके रिश्तों में ऐसे मनमुटाव हो गए, आपको पता भी नहीं चला है कि किसने क्या किससे कह दिया, तो जब मिलें तो वो बात आप क्लियर जरूर कर लें, जिससे कि ऐसी दूरियां ना बने। और एक लिखते हैं कि राई का पहाड़ कितना ही बड़ा हो, पर खामोशी रूपी एक गोटी ही काफ़ी है। बहुत सही बात कही है कि वो कितना भी राई का पहाड़ बना लें, उसकी बातों का जवाब ही मत दें, खामोश हो जाएं। तो मौन की तलवार जिसे कहते हैं ना, वो बहुत तेज़ होती है। तो बड़ी अच्छी सी बात इन्होंने लिख करके भेजी है। तो कहना चाहिए कि राई, एक और लिखते हैं कि राई का पहाड़ बनाना यानी छोटी सी बात को इलास्टिक की तरह खींच करके बड़ा करना है, जिससे दिल और दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। और ये क्या कहते हैं कि जल्दी से ही, जिसे कहते हैं कि आप नॉर्मल होने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा आप खींचें मत, इलास्टिक की तरह मत खींचे बातों को, वहीं पर थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करें तो ज्यादा ठीक है। तो हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: उम्र है,
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना।
2: देखिए हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की पहाड़ जैसी गलत बात को और किसी को बतानी हो तो उसे राई जैसा छोटा करके बताओ, क्या बात है। और अगर किसी की बात बहुत अच्छी है तो वो राई जितनी है तो उसे पहाड़ जैसा बनाकर बताओ ताकि हर कोई उससे कुछ सीख सके। बहुत सुंदर सी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, तो ये बहुत मतलब सारगर्भित चीज़ इन्होंने लिखकर भेजी है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुहावरों की दुनिया भी गजब है। मेरे पास एक किताब थी जिसमें वो कहानियाँ थी, जिस कारण वो मुहावरा बना। वो किताब कोई मांग कर ले गया और वापस नहीं दी। राइस से पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना होता है।
2: क्या बात है, तो किताब देनी चाहिए किसी की भी, ले जाओ तो देनी चाहिए।
3: हाँ,
2: और हाँ,
3: पुस्तक जो कई बार है ना, होता क्या है ना, पुस्तकें किसी को बड़ी प्रिय होती है इसीलिए वो खरीदते हैं और वो संग्रह करके रखते हैं और आपको इतने उदार मन से वो पढ़ने के लिए देते हैं, और जब आप उनकी पुस्तक उन्हें नहीं लौटाते हैं। और कई बार तो क्या, जैसे किसी की आदत होती कि पुस्तक किसी ने मांगी दे दी और उसे याद भी नहीं रहता कि मैंने कौन सी पुस्तक किसको दी, और इसी बात का लोग फायदा उठाते हैं और वापस नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने इतनी उदारता दिखाते हुए आपको कोई पुस्तक दी, उन्हें पढ़कर वापस लौटा दीजिए।
2: आप भी तो उदारता दिखाइए, उदारता
3: जब वो मांगने आए तो राई का पहाड़ मत बनाइए।
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपके मन में अफसोस तो होगा, ग्लानी तो देखिए होगी कि आपके पास किताब है, आपको पता है कि आपके पास किताब है, आपने वापस नहीं करी, तो आप अपनी ग्लानी को क्यों बढ़ा रहे हैं। आप
3: बिल्कुल
2: सहृदय उन्हें उदारता के साथ वापस कीजिए। और देखिए बहुत सारे हमें कमेंट्स और भी मिले हैं, अलग अलग विषयों के मिल गए, तो हम उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। कि ये लिखते हैं कि अन्य के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी नानी हमेशा हम लोगों को बोलती थी बार बार कि संत का एक क्षण भी और अन्य का एक भी कर्ण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कभी तो हम लोगों को वो सब सिखाया गया, लेकिन इसलिए हम लोगों ने भी अपने बच्चों को सिखाया है कि जितना खाना हो उतना ही लें, अन्य का एक दाना भी थाली में ना छोड़ें, और ईश्वर की कृपा है कि बच्चे भी उतना ही लेते हैं जितना खाते हैं। कभी मेरे घर में कोई खाना बर्बाद नहीं होता है। कितना सुंदर आपका घर का स्वरूप होगा, हम कल्पना कर सकते हैं कि आप एक भी दाना अन्न का वहाँ पर बर्बाद नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छी सी बात है।
3: एक हमारे साथी लिख रहे है कि अन्न में ही ब्रह्मा ही नहीं अपितु इसमें अन्नपूर्णा देवी का वास भी माना गया है, और इस दृष्टिकोण से उसकी बर्बादी, वो भी आज के महंगाई वाले युग में, तो ये तो जानकर के अज्ञानता का ही परिचायक है। फिर वैसे ही अन्य प्राण के दृष्टिकोण से अन्न की बर्बादी से बचते रहना ही श्रेयस्कर है।
2: बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि अन्न का हर दाना सिर्फ खाना नहीं, किसी के मेहनत, पसीने और उम्मीद का फल है। थाली में उतना ही ले जितना खा सकें, क्योंकि अन्न का सम्मान मेहनत का सम्मान है। बहुत सुंदर सी बात है। मुझे तो लगता है ये वाला जो संदेश है ना, ये लिख करके अपने घरों में लगा लेना चाहिए।
3: एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान या अपने आते हैं और वो पूरा खाना फिनिश करते हैं, ये फिर उतना ही लेते हैं जितना वो खा सके, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। और जो भी झूठा खाना छोड़ते हैं, हम उन्हें ज़रूर कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, उतना ही ले जितना आपको खाना है।
2: और एक हमारे साथी और देखते हैं कि भोजन करते समय थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये भोजन जो हम लोगों को आसानी से मिला है और खा रहे हैं, उसको पैदा करने में किसानों ने कितना पसीना बहाया है, कितनी कठिनाइयों से होकर हमारी थाली में आया, तो अन्न का एक भी दाना नहीं फेंकना।
3: चलिए अब हम अपनी बातों को थोड़ा विराम दे देते हैं, नहीं तो लोग हमें ये कहेंगे कि अरे आप तो छोटी बातों को राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो अब घड़ी की तरफ हमने नज़र डाली और समय हमें आज्ञा नहीं दे रहा है, तो अब हम श्रोताओं से आज्ञा लेते हैं, कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी
2: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
3: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
4: सहेली।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। साई के 4 बजे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से। इनसे बातचीत की है अनुराधा उपाध्याय ने।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बरसों के संघर्ष और नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी मेहनत और सच्चाई से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। फिल्मिस्तान के सनी से लेकर द फैमिली मैन के जेके तलपड़े तक, इन्होंने हर किरदार में वो आम और सहज व्यक्तित्व दिखाया जिससे हम सब खुद को जोड़ पाए। और आज जैसे जैसे हम बातचीत में आगे बढ़ते जाएंगे, मुझे यकीन है कि हम ये समझ पाएंगे कि ये कहानी जो है सिर्फ कामयाबी की नहीं है, ये धैर्य और डटे रहने की मिसाल भी है। तो बिना देरी किए आज इस स्टूडियो में, विविध भारती के स्टूडियो में, हम स्वागत करते हैं हमारे मेहमान शारिब हाशमी जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर आके बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि विविध भारती के साथ में काफ़ी नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है।
1: जी जी जी, जब हम आ रहे थे और लाइब्रेरी के दौरान जब आप देख रहे थे, साथ में फोटोग्राफ्स देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा जुड़ाव तो है। हाँ। किस तरह का जुड़ाव है रेडियो से या विविध भारती से, वो हमारे साथ साझा कीजिए प्लीज़।
2: हाँ, कि मतलब क्योंकि बचपन हमारा तो रेडियो पर ही पूरा गुजरा है, और ख़ासकर उस वक्त तो मतलब मैं आई एम एन 80s किड, तो उस वक्त तो ज़्यादा रेडियो लोग ज़्यादा सुना करते थे।
1: जी जी।
2: और शुरुआत ही विविध भारती के कार्यक्रम से होती थी सुबह की, जिसमें नए गाने आते थे, और रात को जो है वो थोड़े पुराने गाने होते थे, वो बेला के फूल। और
1: बिल्कुल।
2: तो मैं सारे सुना करता था। मैंने कभी पुराने गाने जो हैं वो बैठ के कभी मैंने याद नहीं किए, वो रेडियो पे गाने सुन सुन के अपने आप याद हुए हैं, जो अब तक याद हैं सारे गाने, किशोरदा के, रफ़ी साहब के, मुकेश जी के, जो भी गाने मैंने याद किए हैं, तो वो सब थैंक्स टू विविध भारती है।
1: जी जी, और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लगता है दिलचस्प बातें होगी और गीत भी हम आपसे सुनेंगे क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा हैं।
2: हाँ, बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन हाँ, शौकिया तौर पे।
1: जी हाँ जी हाँ, शुरुआत रेडियो की बातें से हुई, तो बचपन की यादें कुछ कैसा रहा परिवेश घर का? आपके पिता एक पत्रकार थे, जाने माने पत्रकार, तो क्या उनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री में आपका एंट्री हुआ या किस तरीके से, या आपने खुद ही अपना ये रास्ता चुना?
2: चुना तो मैंने खुद ही रास्ता, लेकिन ये उनका जो प्रोफेशन था वो मतलब उसने मुझ पर बहुत असर छोड़ा था, तो उसी वजह से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे भी इस फील्ड में आना है। उन्होंने मतलब मुझे, मैंने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी थी कि मुझे कहीं पर लगवा दीजिए या कर दीजिए, तो वो मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कहीं पर मुझे एज एन असिस्टेंट के तौर पर जॉब मिला, AD। तो हाँ, तो वैसे करियर की शुरुआत हुई थी, लेकिन मैंने उनसे कभी ये नहीं बोला था कि मुझे कहीं पर मतलब ये एज एन असिस्टेंट या कहीं कुछ काम दे।
1: पर फिल्मी हस्तियों को आपने देखा है अपने घर?
2: हाँ,
1: बचपन से
2: वो देखा था, तो उस वजह से मतलब मेरा मतलब अगर मैं इस लाइन में हूँ तो वो मेरे डैड की बदौलत ही हूँ, उनकी वजह से हूँ।
1: जी जी जी, उस बारे में कुछ बताएं, बचपन की कुछ यादें, उस टाइम आप सेट पे जाते थे या किसी से मुलाकात हुई या उस वक्त किसी ने कहा कि हाँ आप इसी लाइन में जाएंगे, कुछ उस टाइम ऐसे चिन्ह

0: नजर
1: उस
0: आए।
1: टाइम एक्चुअली किसी ने मुझसे कहा नहीं। मैंने वैसे बचपन में एक एक सीरियल आता था आफ्टरनून ट्रांसमिशन में दूरदर्शन पे, कैसे बना मुहावरा कैसे बनी कहानी। तो
0: अच्छा।
1: उसके एक एपिसोड में मैंने एक छोटा सा कैरेक्टर प्ले किया था। हमने SL स्टूडियो में शूट किया था उसको, ट्रॉम्बे में, बहुत दूर। जब बचपन में तो बहुत ज़्यादा दूर लगा था, अब और ज़्यादा दूर हो गया ट्रैफिक की वजह
0: जी
1: से। तो हम वहाँ पर गए थे और मेरा मतलब मैं बांसुरी बजाते हुए घर में घुस रहा हूँ और वो मेरे डैड जो है बने हुए थे उसमें डांटते हैं और मैं डरता हूँ, मुझे मुझे मुझे डरने का वो रिएक्शन देना था। तो वो जब शूट हो रहा था तो उन्होंने जब मुझे डांटा मैं डरा, तो उनको लगा कि मैं सच में डर गया हूँ और वो अपने डायलॉग भूल गए। उनको लगा, मुझे लगा ये बच्चा सच में डर गया है। तो
0: जी
1: मुझे डरना ही था, इसके लिए मैं डरा। तो तब लोगों ने बोला, अरे ये अच्छा एक्टर है। लेकिन वो स्कूल के टाइम पे किया हो गया और ऐसा कोई वो नहीं था तब कि, लेकिन वो टाइम मेरा बड़ा ये था कि बड़े होके तो मुझे एक्टर ही बनना है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं। तो उस वजह से तब मैंने सोचा था कि एक्टिंग मेरे लिए नहीं है। और क्योंकि मैंने पूरा बचपन ये सोचकर गुजारा कि बड़ा होऊंगा तो हीरो बनूंगा, अब हीरो वाली तो पर्सनैलिटी है नहीं और मुझे बाकी कुछ
0: नहीं,
1: करना
0: आप जो हैं, जिस भी पात्र में ढलते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते
1: थैंक
0: हैं
1: यू, थैंक
0: और
1: यू सो
0: बहुत
1: मच।
0: पसंद किए जाते हैं। और जानना चाहेंगे आपके स्कूल और कॉलेज का वक्त, क्या आपने स्ट्रीम्स ली थी, क्या पढ़ाई की?
1: स्कूल तो नॉर्मल यहीं पर SSC बोर्ड में था और उसके बाद में मैंने आर्ट्स में, मतलब मैंने ग्रेजुएशन किया, BA किया है। और 2 साल पहले मैंने कॉलेज के बाद इस्माइल यूसुफ में जूनियर कॉलेज किया और बाद में 3 साल भवंस कॉलेज अंधेरी में था।
0: जी
1: तो वहाँ पर मतलब मेरी पूरी कायापलट हुई एकदम। वहाँ
0: हाँ
1: काफ़ी बहुत सारे दोस्तों से मिला, बहुत लोगों से मिला। इस्माइल यूसुफ में भी काफ़ी शुरू हो गया था
0: जी। अच्छा, थिएटर और ड्रामा
1: थिएटर
0: ये।
1: ड्रामा। तो पता नहीं मेरे नसीब में कुछ, मुझे नाटक मुझे हुआ ही मिला ही नहीं ना। स्कूल में मैं कुछ कर पाया, इस्माइल यूसुफ में जब मैं गया वहाँ पर नाटक हुआ नहीं। एक एक प्ले की रिहर्सल शुरू हुई और वो फिर वो प्ले बंद हो गया। कॉलेज मैंने चेंज किया इसी वजह से कि मुझे नाटक करने थे। मैं जिस साल भवंस कॉलेज में मैंने एंट्री ली वहाँ पर एक नए प्रिंसिपल उस साल मेरे साथ में, उन्होंने भी एंट्री मारी थी
0: अच्छा।
1: और उन्होंने नाटक वाटक सब बैन करवा दिए थे पता नहीं क्यों। तो मेरा मतलब पूरा कॉलेज का जो टाइम था जब मैंने सोचा था कि यार मैं नाटक वाटक करूंगा, वो हुआ ही नहीं। फिर थिएटर कभी मैं कर ही नहीं पाया, थिएटर के साथ में मेरा जुड़ाव हो ही नहीं पाया।
0: जी।
1: फिल्में करने के बाद में मैंने नाटक किए।
0: जैसे कि अभी आप कर रहे हैं, उस बारे में
1: हाँ
0: भी हम बात
1: जी जी
0: करेंगे। फिलहाल हम अपने श्रोताओं को आपकी पसंद का कोई गीत सुनवाना चाहते हैं।
1: मेरी पसंद का कोई गीत, यार बहुत सारे गीत हैं मेरी पसंद के। आपकी याद आती रही रात भर अगर
0: अच्छा,
1: गमन से,
0: थोड़ा सा गुनगुना देंगे।
1: अरे वो तो बहुत मुश्किल गाना।

0: क्या बात है, सुनवाते हैं गीत
1: अभी से। मैं ऐसे गाने बोलूंगा जो मैं अच्छे से गा सकूं।
0: नहीं नहीं, हर गीत पे हम नहीं गवाएंगे आपको, बच्चों को ऐसा चाहेंगे तो।
1: हाँ, कि बच्चों के बोलते हैं कि महाराष्ट्र कौन से स्टेट में रहते हो, तो मैं महाराष्ट्र, उसकी स्पेलिंग बताओ। नहीं, मैं गोवा में रहता हूँ।
0: नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहिए,
1: मैं सिंपल वाले गाने बताऊंगा।

0: अच्छा 1999 में हम तुम पे मरते हैं फिल्म में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आपने काम किया, तो वहां से जुड़ाव कैसे हुआ? और आपने नौकरी भी कुछ की है, तो उससे पहले की बात है या उसके 99 के बाद की बात है?
1: नहीं, नौकरी बाद में हुई, पहले मैंने मेरा पहला काम जो
0: पहला
1: है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी नौकरी थी।
0: हाँ हाँ।
1: तो मेरी पहली नौकरी वो थी।
0: तो वो कैसे जुड़े, कैसे?
1: वो मेरे कॉलेज में मेरे एक दोस्त रहे हैं, अभी भी हैं, मतलब काफी क्लोज फ्रेंड हैं, राजुल मिश्रा। तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट करते थे, वो मेरे से कॉलेज में 2 साल सीनियर थे और हम साथ में काफी गाने वाने गाया करते थे, और वो कॉलेज में मतलब ही वॉज अ स्टार सिंगर। तो उन्होंने बाद में राची प्रोडक्शंस ज्वाइन किया, सूरज जी को वो असिस्ट कर रहे थे, और हमारी फिर मुलाकात फिर भी होती रहती थी। और उनके ज़रिए मुझे उनके ही एक एक्स कलीग जो थे नव कुमार राजू जी, जो सूरज जी को पहले असिस्ट किया करते थे, तो वो एक फिल्म शुरू कर रहे थे, और उन्होंने मुझे, राजुल ने मुझे उनसे मिलवाया, और मेरा एक इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में मैं सेलेक्ट हो गया, और इस तरीके से पहली फिल्म मिली हम तुम पे मरते हैं, जिसमें गोविंदा जी, उर्मिला जी, डिंपल कपाड़िया मैम, बहुत बड़ी कास्ट थी, परेश रावल साहब थे, जॉनी लीवर जी थे, गुलशन ग्रोवर जी। तो बहुत मज़ा आया था, मेरा पहला काम था वो, और काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा था वो, लाइफ का पहला एक्सपीरियंस ही बहुत कमाल था।
0: उसके बाद आपने दूसरी नौकरियां भी की है?
1: हाँ, उसके बाद मैंने एक और फिल्म में असिस्ट करना शुरू किया, लेकिन 20 दिन में मैंने वो फिल्म छोड़ दी थी, और उसके बाद फिर 1-1.5 साल तक फिर काफ़ी काम की तलाश चली, और फिर फाइनली कुछ फ्रीलांस काम मिलने लगा एज अ राइटर, वो भी राजुल की बदौलत, मतलब राजुल मिश्रा का मेरे करियर में बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उन्होंने मुझे असल में राइटिंग की तरफ झुकाव जो है वो उस तरफ बढ़ाया, रुझान। तो वो उन्हें पहले एक कोई डिस्कवरी के लिए कोई एक शो मिला था जिसको वो हिंदी में उनको ट्रांसलेट करना था, तो मैं उस वक्त मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था राजश्री प्रोडक्शंस में। वह हमेशा जब ऑफिस आवर्स ख़त्म होते थे तो मैं शाम को वहाँ पहुँचता था, हम गप्पे वप्पे मारते थे और काम वाम की बातें भी करते थे
0: जी।
1: तो उनको वो ट्रांसलेट करने के लिए मिला था, तो राजुल ने मुझे कहा कि यार एक बार तू भी ट्राई कर, तेरी भी भाषा तो ठीक ठाक ही है। तो मैंने जब एक पैराग्राफ लिखा तो वो उन्हें बहुत पसंद आया, तो और बोला यार तू तो मतलब सिर्फ ट्रांसलेट नहीं, तू तो मतलब अच्छे से उसे, मतलब तेरी लैंग्वेज पे काफ़ी अच्छी कमांड है। तो मुझे तो ये पता नहीं था ऐसा कि मतलब मैं कुछ लिख फिख भी सकता हूँ। फिर उन्हें एक कॉमेडी टाइप थोड़ा सा, मतलब MTV के लिए एक शो था जो रागेश्वरी होस्ट किया करती थी, उसमें उस वक्त VJ थी वो, उस वक्त MTV में, तो वो शो लिखना था, उनके एंकर लिंक्स, VJ लिंक्स जो होते हैं कि वो जो बोलते हैं फिर उसके बाद गाना आता है, तो वो लिखने के लिए दिया, और वो मैंने लिखा, वो भी साथ में उनके, वो भी पसंद आया, उन्हें भी पसंद आया, रागेश्वरी को भी अच्छा लगा। तो फिर और शोज लिखने लगे, फिर एक शो से दूसरा शो, फिर ETC, मैं, राजुल और हमारे एक और दोस्त है कॉलेज का, रेंजी वर्गिस, हम तीनों ने फिर मतलब लिखना शुरू किया काफ़ी, और धीरे धीरे कब मैं मतलब एकदम से राइटर बन गया मुझे खुद पता नहीं चला, 1-2 साल गुजर गए, राइटर का तमगा लग गया
0: जी।
1: फिर नौकरी की मैंने MTV में 4 साल इन हाउस राइटर के तौर पे, और फिर 1 साल Channel V में था। तो ऐसे फिर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया, तो यही लाइफ हो गई थी, मुझे लगा कि अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब बाद में मैं क्रिएटिव हेड बन गया एक दूसरे चैनल में, बॉलीवुड चैनल था वो, इमेजिन शोबिज
0: जी।
1: तो फिर मतलब ऐसे लाइफ शुरू हो गई, बट ये नौकरी के जो मेरे साल थे उसमें सबसे ज़्यादा जो मैंने इंजॉय किया वो MTV के जो 4 साल थे, वो मेरे लिए बेहद खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा मैंने वहाँ पर सीखा, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, प्यारे दोस्त बनाए, जो अब तक जिनके मैं टच में हूँ जिनके
0: जी,
1: साथ
0: जी,
1: तो वो मेरे मतलब बहुत ही खूबसूरत 4 साल रहे हैं MTV में।
0: बिल्कुल। यहाँ पर आपके गीत पसंद के, कौन सा गीत आप सुनवाना चाहेंगे, और हो सके अगर वो गीत अगर आप गाना चाहें तो गा सकते हैं।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सावरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया, आके सीधी।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब।
2: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले सावरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया हाय हाय
0: ले गई मेरा दिल तेरी तिरछी नजरिया ओ गुजरिया
2: हम बात कर रहे हैं शारिब जी से और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में और बैनर आपके फहरिस्त में हैं आपके खाते में शामिल हैं हम बात करते हैं अगर स्लम डॉग मिलेनियर की काफ़ी चर्चित पॉपुलर फिल्म रही है उसके साथ कैसे जुड़ना हुआ
3: उस वक्त एक्चुअली मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है तब मैं चैनल वी में काम कर रहा था चार साल MTV में गुजारने के बाद मैंने चैनल वी ज्वाइन किया था और उस वक्त मेरे एक दोस्त मेरे MTV के ही एक मतलब एक्स कलीग जो है स्वप्निल कोरे तो वो उसमें असिस्ट कर रहे थे कास्टिंग में और उन्होंने मुझे एक रोल के लिए बुलाया रोल क्या वो तो मतलब एक सीन था जो मतलब अगर कोई हिंदी फिल्म होती तो वो किसी असिस्टेंट डायरेक्टर से या कोई जूनियर आर्टिस्ट से करवा देते बट मेरा उसके लिए बाकायदा ऑडिशन लिया गया और डैनी बॉयल साहब मेरे ऑडिशन में मौजूद थे वो मुझे क्यूज दे रहे थे दूसरे कैरेक्टर का तो मैं मतलब एकदम हक्का बक्का था कि यार इतना इन्वॉल्वमेंट किसी डायरेक्टर का मतलब मैं आकर चला भी जाऊंगा कुछ वो नहीं था उस ऐसे रोल के लिए डायरेक्टर कभी रहते भी नहीं है वो तो सेकेंडरी तक भी नहीं पहुंचते बट इतना उन्होंने मुझे उस वक्त अप्रिशिएट किया था मेरे काम को और इतनी तारीफ की थी और मतलब डैनी बॉयल साहब हैं वो
2: बिल्कुल
3: वो बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर भी मतलब उनमें कोई मतलब एयर नहीं था ना कोई ईगो था ना कोई ऐसे अहम था कुछ इतना प्यारा इंसान बहुत मतलब मेरे लिए स्लमडॉग मिलियनेयर में मेरा शूट एक ही दिन हुआ था
2: जी
3: लेकिन उन्होंने दो दिन का रखा था बफर फर्स्ट डे जो है मैं शूट नहीं कर पाया था और नेक्स्ट डे शूट हुआ था तो फर्स्ट डे जब पूरा दिन मैं बैठने के बाद में उन्होंने बोला पैकअप हो गया तो पैकअप के वक्त डैनी साहब मुझे मिले और पहले उन्होंने माफ़ी मांगी कि हम शूट नहीं कर पाए
2: अच्छा।
3: उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये सब करने ना मुझसे मिलने की ज़रूरत थी बट उसके बावजूद वो आए और मैंने ऑडिशन के टाइम एक लाइन ऐसी इम्प्रोवाइज की थी कुछ तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट में डाली थी वो लाइन उन्होंने स्क्रिप्ट में ऐड कर दी थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिड यू गो थ्रू द स्क्रिप्ट वी एडेड योर लाइन यू आर इवन पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट नाउ मतलब मैं कभी जिंदगी भी नहीं भूल सकता कि इतने बड़े आदमी ने मतलब इतने प्यार से और इतनी रिस्पेक्ट दी मुझे जो मैं मतलब हमेशा याद रखूंगा मैं 50 बार ये किस्सा मैं 1000 लोगों को सुनाता हूँ
2: और जब तक है जहाँ उससे भी आप रिलेट किए उससे कैसे जुड़ना हुआ
3: उसमें मैं असल में जब मैंने डिसाइड किया 2008 एंड मतलब 2009 के आसपास में मैंने नौकरी छोड़ छाड़ के एक्टिंग करने का डिसीजन लिया था और फिर 3 साल तक बहुत सारे ऑडिशन हुए सैकड़ों और सिर्फ रिजेक्शन मिले एक ऐड किया था एक शॉर्ट फिल्म की थी उसके अलावा और कुछ नहीं मिला था
2: जी।
3: तो फिर से मुझे क्योंकि कर्जे चढ़ गए थे बहुत ज़्यादा तो मुझे दोबारा नौकरी करनी पड़ी एक चैनल था UTV बिंदास वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज AVP प्रोग्रामिंग और वहाँ कुछ 3 महीने ही हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जी का फ़ोन आया
2: अच्छा।
3: जो YRF में कास्टिंग डायरेक्टर हैं बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो तो उन्होंने मेरी जो शॉर्ट फिल्म मैंने की थी वो YouTube पर देखी और वो देखकर फिर उन्होंने मुझे जब तक है जान के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया तो शुरुआत में 3 राउंड जो हुआ उसमें सिर्फ मैंने रब ने बना दी जोड़ी में जो विनय पाठक साहब का जो कैरेक्टर था उनके सीन्स के अच्छा। साथ ऑडिशन दिया फिर वो हुआ उसके बाद मुझे जब वो पड़ाव पार हो गया उसके बाद मुझे जो जैन के जो मैं प्ले करने वाला था उसके सीन्स दिए और फिर उसके 3 राउंड हुए और मेरा सबसे पहला ऑडिशन भूमि पेडनेकर ने लिया था
2: अच्छा।
3: उस वक्त वो शानू की असिस्टेंट थी
2: हा, हा, हा।
3: तो बहुत मतलब मेरे लिए तो ये चीज़ें जो मेरे साथ में हो रही थी और उस वक्त मैं नौकरी कर रहा था और थैंकफुली जो मेरी इमीडिएट बॉस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी तो मैं आराम से मतलब
2: कल्टी
3: मौका मिलते ही मतलब मैं मतलब ऑफिस से चला जाता था और ऑडिशन देके आ जाता था तो फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे इन्होंने फ़ोन किया शानू ने कि यार नहीं हो पा रहा है और किसी और एक्टर को कास्ट कर लिया है तो मुझे लगा ठीक है, अब इतने सारे रिजेक्शन हुए हैं, मैं वैसे भी मतलब मैंने सोचा था कि ये भी रिजेक्ट ही होने वाला हूँ तो मैंने फिर एक और थोड़ा सा उदास हुआ और फिर काम पे लग गया अपने, क्योंकि नौकरी थी एटलीस्ट। बट एक हफ्ते बाद फिर से मुझे फ़ोन आया, और इस बार यशराज के ऑफिस से आया था, और अक्षत कपिल जो उस वक्त यश जी के चीफ थे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि आप एक बार और ऑडिशन दे सकते हैं क्या। तो मैंने बोला ठीक है, एक बार और ले लो तो मैं ऑफिस गया उनके YRF में, और वहाँ पर एक बार फिर से ऑडिशन दिया, और मैं फिर वापस अपने ऑफिस आ गया। तो ऑफिस पहुँचा ही था मैं कि आधे घंटे में फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए, 4 दिन बाद शूट है।
2: अच्छा, दो
3: दिन
2: बाद के लिए जिसमें पहले नहीं हुआ था।
3: हाँ, सेम रोल का ही मैंने इतनी बार ऑडिशन लिया, और वो फिर फाइनली मतलब हो गया, क्योंकि शायद वो उसके पहले जिसको कास्ट किया था वो भी थोड़ा हैंडसम और गुड लुकिंग टाइप था, तो दोनों हैंडसम और गुड लुकिंग दोनों, शाहरुख खान साहब भी हैंडसम तो ये भी हैंडसम, तो उन्हें शायद कुछ कॉन्ट्रास्ट चाहिए था,
2: वो कुछ
3: और मैं उस वक्त एकदम ऐसा था 90 किलो का
2: तो हमेशा ये जो मूवीज का जो प्रोसेस है ये ऑडिशंस, क्या इतना लंबा होता है या अलग अलग प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, बार बार राउंड्स देने पड़ते हैं?
3: हाँ, जितनी बड़ी फिल्म होती है उतने ज्यादा राउंड्स होते हैं फिल्म में ऑडिशंस के। अभी तो मैं वो ऑडिशन प्रोसेस तो अब नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर कभी कोई ऐसी फिल्म होती है जिसके लिए ऑडिशन की बहुत ज़रूरत हो तो वो भी मैं करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो मतलब जो वो फर्स्ट 3 साल जो मैंने ऑडिशंस दिए थे उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। ऑडिशन मेरा रियाज था एक्चुअली, क्योंकि मेरी कोई फिल्म में या एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, ना मैंने थिएटर किया था, ना कोई एक्सपीरियंस था एक्टिंग करने का। सिर्फ मैं MTV में मैंने मतलब काफ़ी जो हम स्केच कॉमेडीज़ करते थे वो उसमें मैं कुछ कुछ कभी एक्टिंग कर लेता था, बकरा MTV बकरा करता था, अदरवाइज मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो वो उन ऑडिशंस में मैंने बहुत कुछ सीखा उसके दौरान, और उसके जरिए मेरा रियाज हुआ एक्टिंग का।
2: बिल्कुल, लेकिन ये ऑडिशंस में जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़े बड़े बैनर्स के साथ आप जुड़े, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट से रिजेक्शन भी मिला कहीं ना कहीं, बहुत सारे, तो कैसा महसूस हुआ या वो हिम्मत कहाँ से आती है, मोटिवेटेड कहाँ से रहते हैं आपकी, नहीं अभी चलते जाना है आगे, कोई बात नहीं रिजेक्ट हुआ कोई बात नहीं आगे और कोशिश करेंगे, कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं छोड़ देते हैं अभी मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ होगा?
3: नहीं, मैं वो एक तो अब मैंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ के ये सब इसीलिए क्या था क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन से प्यार है बहुत और अगर वो मतलब वो लव फॉर द जॉब जो है ना वो मतलब छोड़ने नहीं देता और मैं थोड़ा बचपन से ही काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ और मेरे आसपास भी काफ़ी एनकरेजिंग फ्रेंड्स और फैमिली, खासकर मेरी बेगम, तो वो बहुत हमेशा सपोर्टिव रही और उनकी ही बदौलत एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर पाया। वरना एक दो बार ऐसा आता था मौका कि मतलब मन करता था कि यार बेकार में मैं सबको परेशान कर रहा हूँ इसके चक्कर में, बट उन्होंने बोला कि ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की मतलब वो नहीं है हम सब इसमें तुम्हारे साथ में हैं, तो वही और खुद पे भरोसा था कि यार टैलेंट तो अपने में है, कूट कूट के भरा है तो बस जनता तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो हो जाएगा
2: वो जो कूट कूट के भरा है टैलेंट वो नजर आया फिल्मिस्तान
3: जी
2: फिल्म में। तो वहां पर ऐसा लगा कि बस आप तो एंटरटेनमेंट के लिए बने, उसमें डायलॉग भी है ये कि मेरा जन्म
3: मैंने लिखे हैं फिल्म,
2: वो आप ही ने लिखे हैं कि मेरा जन्म ही एंटरटेनमेंट के लिए हुआ है। तो ये कैसे इसके साथ जुड़ा हुआ, कैसे लिखे
3: फिल्मिस्तान? मैं असल में जब मैं तब ये UTV मंदास में ही नौकरी मेरी चल रही थी, उसी दौरान जब तक है जान के ऑडिशंस में दे रहा था, तो वो जब जो मेरे वहाँ पे 3-4 महीने जो मैंने वहाँ पर गुजारे थे उस वक्त नितिन ने उस पर काम करना शुरू किया था स्क्रिप्ट पर फिल्मिस्तान की, तो मेरे ऑफिस ख़त्म होने के बाद मैं नितिन के घर जाता था और जो भी उन्होंने लिखा होता था वो मुझे सुनाते थे, और मैं आई वुड वर्क एज अ बाउंस बोर्ड, मैं कहता था हाँ ये अच्छा है, बहुत सही है, ज़्यादातर वो सब अच्छा ही होता था। नितिन बहुत ब्रिलियंट राइटर है, बहुत कमाल जब भी वो लिखता है। फिर हमने साथ में थोड़ा थोड़ा और वो करना शुरू किया, और नितिन को भी जब मैं जब तक ये जान में सेलेक्ट हुआ उसी दौरान नितिन को एक प्रोड्यूसर मिल गए, और जब हम लिख रहे थे तब नितिन बोलता था कि ये जो रोल है ये मतलब तेरे लिए एकदम करेक्ट है और मैं सोचता था कि कहाँ वो मुझे कास्ट करेगा अपनी पहली फिल्म में मेन लीड में वो भी, बट जब उन्हें प्रोड्यूसर मिला उन्होंने मुझे ऑडिशन करवाया सनी अरोरा के किरदार के लिए और मैं उसमें भी सिलेक्ट हो गया। तो वो एक जब मैंने मतलब सब छोड़ छाड़ के 3 साल नौकरी पे मैं जब ज्वाइन किया और 3 महीने में मुझे जब तक है जान मिल गई और उसी दौरान फिल्मिस्तान भी, तो वो मैं मतलब बड़ा अचंभित था कि मतलब जिस तितली के पीछे इतने साल दौड़ा और उसको पकड़ने की कोशिश की, वो मेरे हाथ ही नहीं आई। जब थक हार के कहीं बैठ गया तो अपने आप मेरे कंधे पे आके मतलब जो है वो बैठ गई।
2: बिल्कुल, कहते हैं ना जिसे आप चेज करते हैं वो मिलता नहीं है, जब आप छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो मिल जाता है।
3: वो मिल जाता है, तो वही हुआ मेरे साथ में। और इस तरीके से फिल्मिस्तान भी हुई, और फिल्मिस्तान ने फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी एकदम।
2: बिल्कुल, यहाँ पर आपकी पसंद का गीत
3: जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो मुझे बहुत पसंद है। मतलब मेरे ख्याल से मैंने कहीं पढ़ा भी था जावेद अख्तर साहब के इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया था कि फिल्मों में मतलब आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना उनका कौन सा है, तो उन्होंने बोला था जिंदगी के सफ़र में, और मुझे भी ये गाना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है।
2: बिल्कुल, ये सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: हम बात कर रहे हैं आज शारिब हाशमी जी से। तो फिल्मिस्तान की जब बात चली है तो उसका सुर कैसे पकड़ा और कितना करीब है सनी शारिब से?
1: सनी और शारिब वैसे तो काफी, मतलब बहुत, मैंने जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सनी अरोरा मतलब मेरे सबसे ज्यादा नजदीक है, और उसी लिए मुझे उसे परफॉर्म करते वक्त मुझे लगा रही ये तो बहुत आसान होगा, यही सब मिमिक्री करना है, डांस करना है, नाचना गाना है और मस्ती
0: उसके
1: करनी
0: डायलॉग भी
1: है।
0: आपने लिखे हैं।
1: उसके डायलॉग मैंने लिखे हैं, हाँ, तो मुझे लगा ये तो बहुत ही आसान होगा। बट जब हमने शूट करना शुरू किया तब सिंपल चीज़ें भी, क्योंकि पहली बार एक तो मैं मेन लीड कर रहा था, वो एक प्रेशर भी था, और मैं कर रहा हूँ तो वो लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे उसका एक प्रेशर था, और नितिन का जो मुझ पे भरोसा था, मैं उससे मतलब उस भरोसे पे पूरा उतरूंगा नहीं उतरूंगा, मैं बहुत उस तरीके से उस वक्त पता नहीं थोड़ा एक प्रेशर था, और वो शायद फिर परफॉर्मेंस में नज़र आने लगा, और नितिन मुझे बार बार कह रहा था कि थोड़ा शांत हो जा, थोड़ा ठंडा हो जा, थोड़ा। तो मुझे एक दो दिन लगे थोड़ा अपना सुर समझने में, अपने किरदार में, मतलब पूरी तरह से थोड़ा ढलने में, और सही तरीके से मतलब जो रिक्वायरमेंट थी किरदार की वो
0: उन्हें
1: परफॉर्म
0: पेश
1: करने
0: करने
1: में,
0: में।
1: जो है मुझे थोड़ा 2 दिन लगा सेम पेज पे आने में नितिन के साथ।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब मैं आया तो फिर, और जब नितिन कुछ अच्छा बोलता था तो मेरा पूरा ऐसे, मैं बच्चों की तरह
0: जो कि
1: नाचता
0: हमने उसमें भी देखा, परफॉर्मेंस भी देखा, बिल्कुल दिल खोल के, जिसे बोलते हैं ना कि बस यही मेरी, यही सब कुछ है, उस तरह से आपने सब कुछ उसमें डाल दिया था,
1: जी।
0: पूरा
1: थैंक
0: एंटरटेनमेंट। और वो
1: यू।
0: डायलॉग भी है उसमें कि
1: हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा हुआ
0: पैदा
1: हूँ, और जब मैं लोगों
0: हुआ।
1: को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: जी हाँ। फिल्मिस्तान के बाद आपने राम सिंह चार्ली करके भी फिल्म की है, और उसमें
1: जी
0: भी नितिन कक्कड़ जी हैं और कुमुद मिश्रा, उन्हीं के
1: हाँ
0: साथ काम किया है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर से एक टीम के साथ फिर से काम करना इजी भी होता है, और
1: बहुत।
0: कैसा ये
1: हाँ,
0: अनुभव है?
1: नितिन के साथ तो मेरा अलग कंफर्ट लेवल ही अलग है, हमारी, हम बहुत गहरे दोस्त भी हैं, और साथ में मैंने राइटिंग का काम तो सिवाय नितिन के और किसी के साथ किया ही नहीं है, फिल्म राइटिंग तो मैंने उनके लिए, और मित्रों एक फिल्म है उसके लिए भी डायलॉग्स
0: हाँ
1: लिखे हैं,
0: जी।
1: नोटबुक के लिए भी डायलॉग्स लिखे हैं, और राम सिंह चार्ली तो हमने तकरीबन साथ में लिखी है, बट मेजर काम हमेशा राइटिंग में नितिन का ही होता है, वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। हमने सबसे पहली बार मुझे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नितिन ने मुझे बताया था जब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में गए थे फिल्मिस्तान को लेकर, वहाँ पर फिल्मिस्तान का वर्ल्ड प्रीमियर था, और तब नितिन ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोला था कि एक चार्ली चैपलिन के इम्पर्सोनेटर की अगर कोई कहानी हो और उसको अगर हम लोग कुछ करें तो कैसा रहेगा, और मैं तो सुन के ही बहुत खुश हो गया था, यार ये तो कमाल होगा। और फिर हमने धीरे धीरे, नितिन ने थोड़ा उसको डेवलप करना शुरू किया, फिर हम साथ में बैठ के उस पर काम करने लगे, और करते करते करते राम सिंह चार्ली की स्क्रिप्ट तैयार हो गई, और हम बहुत खुश थे स्क्रिप्ट के साथ, और पिच करना शुरू किया तो कोई तैयार नहीं हो रहा था प्रोड्यूस करने के लिए, या कोई कह रहा था कि कोई नाम लेकर आओ, कोई बड़ा एक्टर लेकर आओ। फिर हमने डिसाइड किया कि यार जब हमको इस चीज़ पे इतना भरोसा है तो हम खुद ही क्यों ना प्रोड्यूस करें, और हमने फिर, मैंने, नितिन ने और हमारे एक और पार्टनर है उमेश पवार, हम तीनों ने मिलके अपने पैसे लगाकर हमने फिल्म प्रोड्यूस की, और कुमुद जी को हमने टाइटल रोल में कास्ट किया, दिव्या दत्ता, फर्रुख सियार, और बहुत अच्छी कास्ट जमा की, आकर्ष खुराना, और बहुत कमाल एक्सपीरियंस रहा वो फिल्म बनाने का। एक ही फिल्म प्रोड्यूस की है मैंने, और आगे शायद पता नहीं कब करूँगा, या करूँगा भी, यानी वो भी नहीं पता, लेकिन अगर सिर्फ ज़िंदगी में सिर्फ एक ही फिल्म मैंने

0: प्रोड्यूस की, तो वो भी मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि यस, मैंने राम सिंह चार्ली प्रोड्यूस की है।
1: मैं प्रोड्यूसर हूँ।
0: मैं प्रोड्यूसर हूँ तो राम सिंह चार्ली का हूँ।
1: जी
0: एक खूबसूरत फिल्म है और यस
1: बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं आपकी नोटबुक राम सिंह चार्ली की 47 डिग्री की, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिंपल और सहज मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ी फिल्में हैं ज़्यादातर, तो ये कहीं ना कहीं कहाँ से आता है? ये शायद आपने अनुभव किया हुआ है, या ज़्यादातर आपकी शॉर्ट फिल्म्स या कहानियाँ या लेखनी जो है कहीं ना कहीं इसी तर्ज पर है?
0: मे बी शायद मैंने वही लाइफ जी है, मिडिल क्लास से ही बिलोंग करता हूँ मैं,
1: जी,
0: वही रचा
1: और हम
0: बसा है
1: उससे
0: अंदर।
1: काफ़ी रिलेट कर पाते
0: हाँ,
1: हैं।
0: टोटली रिलेट कर पाते हैं। और मैं, क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो या कितना भी कुछ भी हो, आपको काम तो वैसे ही मिलेगा जैसे आप दिखते हैं। तो मैं, मेरे ख्याल से वही मिडिल क्लास वाला, मतलब चेहरा भी वही है, आम आदमी वाला, तो वैसे किरदार भी मुझे मिलते हैं। इसीलिए फिल्मिस्तान का सनी अरोरा या तरला का नलिन दलाल या जो भी मैंने ज़्यादातर किरदार निभाए हैं उस हिसाब से, जो शॉर्ट फिल्म्स में भी मैंने, अगर महरूनी में जो
1: हाँ,
0: किया है,
1: महरूनी की बात करता है। हाँ
0: हाँ,
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो वो सब वैसे ही हैं। इट्स ओनली 47 डिग्रीज़ में भी वैसा ही एक ट्रैफिक हवलदार का एक किरदार है।
1: जी।
0: तो और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे तो हम जितने अलग किस्म के किरदार निभाएं उतना अच्छा होता है, और थैंकफुली मुझे मिलते भी हैं डिफरेंट किस्म के किरदार निभाने को, बट ज़्यादातर जो है वो एक, वो हाँ, मिडिल क्लास वाला क्या
1: और
0: कहेंगे
1: दर्शकों
0: उसको,
1: से भी वो कहीं ना कहीं
0: इमेज
1: जुड़ाव
0: तो
1: आ
0: है।
1: जाता है।
0: हाँ,
1: यहाँ पर आपकी पसंद का कोई गीत?
0: ये मिडिल क्लास से मुझे याद आया, मतलब
1: हाँ।
0: काफ़ी, एक तो जो अमोल पालेकर साहब की जो फिल्में होती थी ना उस वक्त की, वो मुझे बहुत, खासकर छोटी सी बात मेरी बहुत ही पसंदीदा फिल्म है, और घरौंदा, घरौंदा में जो एक गाना है वो मुझे बहुत पसंद है, वो प्लीज़, तुम्हें हो ना हो मुझको तो
1: बिल्कुल,
0: इतना यकीन है, वो
1: वो
0: मुझे
1: सुनवा देते हैं, वो गीत
0: प्लीज़।
1: हम जरूर सुनवाते हैं अपने सुनने वालों को।

0: ऑडिशन देना शुरू किया था और तब अच्छी खासी एक नौकरी कर रहा था मैं, एक लाइफस्टाइल थी, अब उसको बच्चा भी हो चुका था, तो उसके हिसाब से जो है उसको मेंटेन करने के चक्कर में और साथ में दाल रोटी के लिए और स्ट्रगल भी कंटिन्यू रखना है, तो वक्त गुजरता जा रहा था, पैसे कम होते जा रहे थे, कम क्या ख़त्म हो गए एक पॉइंट के बाद, और जो सेविंग्स थी सारी उड़ गई, जेवर भी मैंने मतलब उनसे मांगने शुरू कर दिए और उन्होंने कभी उफ तक नहीं की, घर जो खरीदा था नौकरी के दौरान वो भी बेच दिया, बट उन्होंने एक बार भी ऐसे नहीं कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो मतलब मेरे पैशन को और मेरे ड्रीम को और मेरे टैलेंट पर उनको काफ़ी भरोसा था, उनको ये था कि यार कुछ ना कुछ तो इसका होने वाला है इस बंदे का, और जितना मुझे खुद पे भरोसा था शायद उससे कहीं ज़्यादा उनको मेरे काम पर यकीन था, लेकिन उस वक्त जब गुजर रही थी तब मुझे पता है कि कैसे उन्होंने उसको हैंडल किया, कैसे घर मैनेज किया, कैसे मुझको हैंडल किया और कैसे हमने वो मुश्किल दौर गुजारा है साथ में, वो हम दोनों को ही पता है
1: बिल्कुल बिल्कुल, वो सबसे बड़ी
0: और
1: ताकत रही
0: जी हाँ,
1: आपकी।
0: वो मेरी मतलब उस वक्त की सबसे बड़ी हिम्मत, सबसे बड़ी ताकत रही हैं और उनके बगैर वो पॉसिबल ही नहीं होता, और जब मतलब चीज़ें होनी शुरू हुई अच्छी और थैंकफुली मतलब ऊपर वाले ने साथ दिया, तो फिर वो उन्होंने बोला भी कि मैंने सही घोड़े पे पैसा लगाया
1: अभी उस सीरीज की बात करते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, द फैमिली मैन।
0: जी
1: इससे जुड़ना कैसे हुआ, और ये जेके का किरदार आपको लगा था उस वक्त कि कुछ तो कमाल कर जाएगा, मुझे लोग जेके के नाम से पुकारने लगेंगे, ज्यादा जानने लगेंगे?
0: जेके जब मतलब हुआ तब मैं जिस पॉइंट पे आया ये किरदार मेरी ज़िंदगी में, उस वक्त मुझे उसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, बहुत करियर मेरा एक एकदम लो पर था, बहुत डाउन था मैं फाइनेंशियली, कि फिल्मिस्तान हो चुकी थी जब तक है जान हो चुकी थी, उसके बावजूद मैं फिर से ऑडिशंस दे रहा था, फिर रिजेक्शंस हो रहे थे, फिर काम नहीं मिल रहा था, एक दो फिल्में हो जाती थी और फिर मतलब लंबा एक गैप होता था, पैसे फिर ख़त्म होने लगे थे, तो वो बहुत अजीब सा मतलब दौर था, और ये और ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा सक्सेस का टेस्ट चखा था फिल्मिस्तान के ज़रिए, जब तक है जान के ज़रिए, और अब फिर से फिर ऑडिशन देना पड़ रहा था, फिर भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, फिर पैसों के बारे में सोचना पड़ रहा था कि अब कहाँ से करें क्या करें, तो वो बहुत मुश्किल टाइम था। उस वक्त मुझे एक कॉल आया मुकेश छाबरा भाई के ऑफिस से, और ये जेके जो है उस वक्त जेके नाम तो नहीं था उसका, घोष था उस कैरेक्टर का नाम, बंगाली कैरेक्टर था, तो मैंने ऑडिशन दिया वो, और जब ऑडिशन दिया तो उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल तुम न्यूट्रल उसमें ही करो, कोई बंगाली एक्सेंट की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर दो, बाद में हम देखते हैं, और जब ऑडिशन हुआ तो मुझे लगा कि यार आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है आपको थोड़ा पता चल जाता है कि अगर कुछ अच्छा हुआ है तो, और अच्छा अगर ऑडिशन होता है तो आप फिर फ़ोन का इंतज़ार भी करने लगते हैं कि यार अब
1: बिल्कुल।
0: घंटी बजेगी, अब घंटी बजेगी, और हफ्ता 10 दिन लग गया, और उसके बाद लेकिन फ़ोन आया और मेरी पहले डी के साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपका ऑडिशन तो अच्छा था लेकिन ये बंगाली में मतलब मुझे नहीं लगता है कि आप बंगाली में एज ए बंगाली फिट होंगे, नेचुरली आपको कौन सा कोई एक्सेंट या डायलेक्ट जो है आप में मतलब नेचुरली आप किस में वो कर सकते हैं, आप अपने आप को
1: कंफर्टेबल है।
0: कंफर्टेबल हैं, तो मैंने बोला मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मराठी बोल लेता हूँ, तो उन्होंने बोला कि यार हाँ महाराष्ट्रन कर सकते हैं उसको, फिर नाम की तलाश शुरू हुई कि इसका नाम क्या होगा, घोष हट गया अब तो फिर बहुत सारे नामों के ऑप्शंस मैंने भी निकाले, तांबे और ये वो बहुत सारे मात्रे,
1: जी।
0: फाइनली फिर वो जेके जो है जेके तड़पदे नाम जो है लॉक किया गया, और फिर जब आया जब हम शूट कर रहे थे तभी भी एक इनफैक्ट ऑडिशन के वक्त ही मुझे एक इंट्यूशन हुआ था, मतलब मैं उसमें एंटर हो गया, काम मिल गया मुझे, तो लाइफ में कुछ तो एक
1: बड़ा
0: बदलाव
1: होगा
0: आने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है,
1: जी।
0: और वो इंट्यूशन मेरा बिल्कुल करेक्ट था, जैसे ही फैमिली मैन आया सीज़न 1 और वो OTT पर मतलब एक एक अलग ही किस्म की मतलब एक्साइटमेंट आई लाइफ में मेरे,
1: बिल्कुल।
0: और लोगों ने बहुत देखा उसे और फैंस बढ़ने लगे, फॉलोअर्स बढ़ने लगे सब जगह, सीज़न 2 आया और रिस्पॉन्स जो है वो डबल हो गया, तो तो वो मेरे लिए मतलब फैमिली मैन, फैमिली मैन के बाद असुर आया, असुर को भी लोगों ने पसंद किया,
1: बिल्कुल
0: स्कैम आया।

0: जबकि उसमें मेरा एक सीन था उसको भी लोगों ने बहुत प्यार दिया
1: जी
0: और फिर काम और मिलता गया, लेकिन शुरुआत उसकी फैमिली मैन से हुई और मतलब वो मेरी ज़िंदगी में बहुत एक अहम जगह रखता है
1: बिल्कुल।
0: फैमिली मैन, और जेके ने मुझे बहुत प्यार दिया है।
1: तो इसकी जो स्क्रिप्ट है, अगर फैमिली मैन की अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज आप खुद करते हैं वहां पर, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग ऐसे सुनने को आते हैं कि ऐसा लगता है इंस्टेंट आ गया, ये तो कुछ तो अलग आ गया है। तो क्या वो सब लिखा रहता है या?
0: नहीं, तो लिखी भी होती है स्क्रिप्ट पूरी बाकायदा, और सुमन कुमार जो हैं वो हमारे जो राइटर हैं, और फर्स्ट सीजन में सुमित अरोरा ने डायलॉग्स लिखे थे और सेकंड में सुपन और सुमन भी थे, तो वो पूरा सब कुछ लिखा होता है, और लेकिन
1: कहीं
0: राज
1: कहीं
0: एंड
1: वो
0: डीके जो है
1: पंच,
0: ना, हाँ, वो
1: हाँ
0: कभी कट नहीं करते हैं। जब सीन ख़त्म हो गया जो पेपर पे था उसके बाद भी वो कभी कट नहीं करते, और मनोज सर मतलब इम्प्रोवाइजेशन के किंग हैं एकदम
1: हाँ
0: तो
1: बिल्कुल।
0: वो कुछ बोलते हैं तो फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर वो कुछ बोलते हैं तो मैं कुछ बोलता हूँ, और वो जब तक कोई हंसता नहीं है तब तक वो कट नहीं होता।
1: मुझे लगता है उनके साथ वो केमिस्ट्री कुछ अलग ही है।
0: हाँ, और उनके साथ बहुत मज़ा आता है, उनके साथ आपको मतलब आपके एकदम टोज़ पे रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे एक के बाद एक मतलब कमाल के डायलॉग्स कहाँ से लेकर आते हैं। कमाल, बहुत ही मज़ा आता है उनके साथ काम करने में, और इम्प्रोवाइजेशंस होती हैं और उसमें से कुछ जमती हैं कुछ नहीं जमती हैं, वो तो हमारा काम है, मतलब ऐसा
1: बिल्कुल।
0: कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ छूट मिलती है वो करने की। राजन
1: बिल्कुल।
0: डी के बहुत हमें मतलब आज़ादी देते हैं, जहाँ पे हम कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं तो बोलते हैं जरा कंट्रोल। फैमिली मैन का जब शूट आता है तो मैं मतलब बहुत एक्साइटेड रहता हूँ लाइफ में, मैं मतलब एकदम आई लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स कि अरे यार आज फिर से कुछ बढ़िया सा शूट होने वाला है, आज मनोज सर के साथ शूट है, राजन डी के हैं और मैं जेके बनूंगा और मज़ेदार कुछ कमाल करेंगे, और हर दिन मैं उसी माइंडसेट में रहता हूँ जब भी फैमिली मैन का शूट आता है। तो अब मैं सीज़न 4 का शूट जल्दी से शुरू हो उसका इंतज़ार कर
1: हमें भी
0: रहा
1: इंतजार है, बहुत
0: हूँ।
1: बेसब्री से इंतजार है हमें।
0: थैंक यू।
1: अच्छा, इन सीरीज में जहाँ पे एक्शन सीरीज होती है, तो पहले कुछ वर्कशॉप होती है या फिर जैसे स्टंट्स किए जाते हैं वहां पर कैसे हेल्प होती है?
0: नहीं,
1: स्टंट्स आप
0: वर्कशॉप
1: करते हैं, कुछ एक स्टंट्स आप करते हैं या फिर
0: नहीं, जो डिफिकल्ट होते हैं तो वो हम खुद ही हाथ उठा लेते
1: उठा
0: हैं,
1: लेते
0: और वो कोई
1: हैं?
0: बोलता भी नहीं है कि
1: जी
0: आप करो, अगर
1: हाँ
0: डिफिकल्ट
1: हाँ
0: होते हैं तो वो उसके लिए जो स्टंटमैन है वो आपका पूरा वो सीन करते हैं, और जहाँ पे जो हम खुद कर सकते हैं भागना दौड़ना थोड़ा सा पंच और वो सब होता है, तो वो वहाँ पर आप 3-4 बार प्रैक्टिस करते हैं और रिहर्सल होती है, और उसके बाद में फिर आप भी ग्रूव में आ जाते हैं, वो
1: यूज्ड टू हो जाते
0: यूज
1: हैं।
0: टू हो जाते हैं। कहीं पर थोड़ा गिरना पड़ना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसे हैवान में था, मतलब मुझे वो टेबल पे जो है वो मतलब फेंकते हैं और उसी से लुढ़क कर मुझे नीचे गिरना था, और वहीं तो वो पूरा शॉट था, तो मैं टेबल पे गया फिर वहाँ से ज़मीन पे गिरा, लेकिन वो ये भी बहुत बेसिक है
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल।
0: वो हम कर लेते हैं, बट अदरवाइज़ जो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं वो तो स्टंटमैन ही कर सकते हैं, हमारे बस की बात भी नहीं है, मेरे तो नहीं है।
1: और हैवान में आपका किरदार, अगर आप कुछ बताना चाहें किस तरह से, कुछ अलग है अभी तक के किरदारों से?
0: बिल्कुल, हैवान में मेरा काफ़ी मैं मतलब एक नेगेटिव शेड है मेरे कैरेक्टर में, लेकिन उसमें मैं ह्यूमर भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी कर रहा हूँ। 2 सीन्स हैं मेरे जो काफ़ी, जिसमें एक असरानी साहब के साथ है, एक राजपाल जी के साथ में, तो असरानी साहब के साथ तो जब शूट हो रहा था मतलब मेरे लिए, मतलब दोनों ही मेरे बहुत पसंदीदा
1: बिल्कुल।
0: एक्टर्स हैं और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। असरानी जी का आखिरी सीन था वो मेरे ख्याल से, उसके बाद उसके 10 दिन बाद उनका देहांत हुआ,
1: जी।
0: तो मैं मतलब अब खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, और आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं हैवान का हिस्सा बन पाया, प्रियदर्शन जी के साथ काम किया,
1: जी।
0: सैफ अली खान साहब के साथ, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा वो।
1: कोई गीत जो आप हमारे सुनने वालों को सुनवाना चाहते हैं?
0: किशोर दा का एक और काफ़ी रेयर सॉन्ग है जो लोग कम सुनते हैं, जो कि है सैड सॉन्ग, लेकिन उसमें भी उन्होंने थोड़ा यॉडलिंग का चीज़ उन्होंने की है, जो आगले लग जा फिल्म से है, ना कोई दिल में समाया, वो मुझे बहुत पसंद है, अगर वो आप प्ले करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल।

0: दिलचस्प बातों का सिलसिला चला है शारिब जी के साथ. और जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का आपने नाम लिया ही है, अब जुड़े हुए हैं, असुर की बात हुई, स्कैम की बात हुई, हैवान अभी आई है, द फैमिली मैन, बहुत सारी फिल्मों की फहरिस्त लंबी है. लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे रिजेक्शन भी है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट
1: हाँ
0: पार्ट है. तो जब कभी ऐसा कुछ हुआ, उससे कैसे आपने अपने ऑडिशन के तरीके को, या फिर नए प्रोजेक्ट में जब आप जाते हैं तो उस तरीके को कुछ बदलाव आया? और ये मैं इसलिए भी जानना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे नए एस्पायरिंग एक्टर्स आना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है जब बार बार रिजेक्शन झेलते हैं या एक वक्त लंबा गुजर जाता है कि अब हम यहाँ टिके रहें या बस हमारे लिए ये फिल्मी सफ़र नहीं है. तो किस तरह से उसको हैंडल करना चाहिए, आप अपने अनुभव से हमें बता सकते हैं?
1: उसको तो मतलब हैंडल करने के लिए आपको अपनी चमड़ी जो है थोड़ी मोटी करनी चाहिए क्योंकि बहुत इतनी बार ना सुनना ना आप पर वो असर कर सकता है बहुत गलत तरीके से। लेकिन एक ये जो ऑडिशन होता है ना, अब उसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं सेलेक्ट करने के। अगर आपको वहाँ पर एक तो ऑडिशन पे बुलाया है यानी कि वो समझते हैं कि आप काबिल हैं, लेकिन उसमें आप उसमें फिट भी हो रहे हैं और दूसरे कास्ट में भी वो आप सबके साथ में मैच कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कास्ट करने से पहले, तो आपकी काबिलियत का टेस्ट नहीं हो रहा है, आप उस रोल में कितना फिट बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं उसका टेस्ट लिया जा रहा है। तो अगर रिजेक्शन होता है तो उसको दिल पर नहीं लेना चाहिए और अच्छा करने का सोच कर आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करते ही रहनी चाहिए, अपने हुनर को, अपने स्किल्स को, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नया नया काम लोगों का देखना चाहिए, नाटक करना चाहिए, देखने चाहिए। तो वो उससे मेरे ख्याल से जो है वो जब ये ऑडिशन वाला दौर है ना वो आपका बेहतर होगा और टिके रहना एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, कोई टिक पाता है, कोई कभी किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे मेरी खुद की, मुझे 3 साल बाद फिर से नौकरी करनी पड़ी थी। तो अगर ऐसा भी हुआ तो ठीक है, कर लेनी चाहिए, कोई ज़िंदगी जो है वो सिर्फ एक काम नहीं होता है आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो आपके साथ में या आपके साथ लोग हैं वो जिम्मेदारियां भी आप ही की हैं और उनको निभाना भी आपका कर्तव्य है। अगर वो है तो करिए, काम करना ज़रूरी है, आगे बढ़ते रहना ज़रूरी है। उसके लिए कभी जो है दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मैं इसमें रिजेक्ट हो गया या मैं उसमें वो गया, काम करते रहना चाहिए, टिके रहना चाहिए। मतलब किसी तरीके से आप टिके रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप गेम में जमे हुए हैं तभी आप आगे बढ़ेंगे, अगर
0: तभी
1: गेम में हैं
0: मौके.
1: ही नहीं तो आपको आगे कोई मौका मिलेगा ही नहीं
0: आजकल बायोपिक का ज़माना है, कोई ऐसा किरदार जो आप करना चाह रहे हैं या लुकिंग फॉरवर्ड टू कोई ख़ास एक दो किरदार ऐसे कि ये तो मुझे करने का मन है?
1: मैं तो मतलब वैसे मेरा डील डॉल वैसा है नहीं, ना चेहरा है ना कद है, लेकिन मेरा किशोरदा की बायोपिक तो मेरी बड़ी मतलब क्या कहते हैं उसको,
0: कमाल हो जाएगा.
1: बहुत हाँ, लेकिन वो खाली वो सपना है, वो तो मुझे पता है लेकिन हाँ अगर किशोरदा की बायोपिक बने तो मैं उसमें किसी भी तौर पे किसी न किसी किरदार में उसमें रहना
0: जुड़ना
1: चाहूँगा,
0: चाहेंगे.
1: जुड़ना चाहूँगा। जैसे अभी आर डी बर्मन जी की लाइफ पर एक फिल्म बन रही है, मैं ज़रूर, काश उसमें मुझे कुछ मिले, लेकिन
0: क्या बात है, हम चाहेंगे कि जरूर आपका ये सपना पूरा हो. और बाकी जब शारिब शूटिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते हैं, आपका सुकून जिसे बोलते हैं, मन का सुकून?
1: मैं घर पर रहता हूँ दोस्तों के साथ में वक्त गुजारता हूँ कि घर पे रहता हूँ, फैमिलीज जो हैं मतलब अपने दोस्त या तो घर पर बुलाता हूँ या दोस्तों के घर पर जाता हूँ और फिल्में देखता हूँ, सीरीज़ देखता हूँ, गाने सुनता हूँ बहुत, और अगर ज़्यादा वक्त है तो फिर परिवार के साथ कहीं घूमने चला जाता हूँ। मुझे ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है, म्यूज़िक बहुत पसंद है,
0: म्यूजिक तो हम जानते ही हैं आपको.
1: फिल्में बहुत पसंद
0: जी
1: है, तो मतलब टाइम तो बहुत कम है
0: बिल्कुल
1: एक्चुअली
0: बिल्कुल. तो सर, आपने अपने फिल्मी सफ़र के साथ साथ ज़िंदगी के बहुत से अनुभव साझा किए हमारे साथ
1: जी
0: और बहुत मज़ा आया बातचीत करके.
1: थैंक यू
0: हम चाहेंगे आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए शुभकामनाएं ढेर सारी,
1: थैंक यू थैंक
0: और आप
1: यू
0: बार बार आएँ और हमें बार बार आपसे बातें करने का मौका मिले विविध भारती के ज़रिए.
1: थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया, मेरे लिए मतलब आई एम रियली ऑनर्ड दैट आई एम सिटिंग हियर, और पूरा एक बहुत बड़ा नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है विविध भारती के साथ में जी। मतलब आँख जिससे खुलती थी और सोने से पहले जिसको सुना करते थे, आज मैं
0: जी
1: वहाँ बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, और शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा फिर से आएंगे।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेता और लेखक शारिब हाशमी से अनुराधा उपाध्याय की बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता।
3: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन के संबंध पिछले वर्ष की तुलना में इस समय बेहतर हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सीमा गतिरोध का समाधान होने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हो रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट दोनों देशों के हित में नहीं है और लंबे समय तक सीमा गतिरोध किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं है। एक रिपोर्ट।
5: भारत अमेरिका संबंध और व्यापार समझौते पर वार्ता के बारे में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देश ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां व्यापार समझौते को लेकर समझ बनी है। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदेश मंत्री ने कहा कि रूस, यूक्रेन और ईरान खाड़ी संघर्षों ने विकासशील और अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाला है। उन्होंने ऊर्जा की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बाजार में आपूर्ति को लेकर काफी कठिनाई है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अगर राजनीति की जाती है तो इससे बाजार की जटिलताएं और कीमतें बढ़ती हैं, जबकि इस समय कीमतों का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव।
4: भारत और सऊदी अरब ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा की है। दोहा में एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक की वार्षिक बैठक से अलग सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान के साथ बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सऊदी अरब को भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने भारत सऊदी अरब द्विपक्षीय निवेश समझौते पर वार्ता सफलतापूर्वक पूरी होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले के साथ बैठक में बाढ़ के बाद पुनर्बहाली कार्यों तथा द्विपक्षीय परियोजनाओं पर चर्चा की। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC की दूसरी बैठक नई दिल्ली स्थित संसदीय सौंध में चल रही है। गृह मंत्रालय और विधि तथा न्याय मंत्रालय के अधिकारी प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सदस्यों को जानकारी देंगे। समिति शीतकालीन सत्र 2026 के प्रथम सप्ताह में संसद को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है, जबकि राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल समिति के अध्यक्ष हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू रणनीतिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा, तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाएगी। जिनेवा प्रेस क्लब में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कश्मीरी नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ते मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र के दौरान यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी द्वारा आयोजित किया गया था। सम्मेलन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोकतांत्रिक स्वशासन, प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व, आवागमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कानून के शासन को सुनिश्चित करने की मांग की गई। जापान एशियाई खेलों में निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रच दिया है। महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर ने रजत पदक जीते। भारत 5 स्वर्ण, 21 रजत, 22 कांस्य सहित 48 पदकों के साथ 11वें स्थान पर है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज

0: सावधान, उच्च रक्तचाप एक खामोश खतरा। क्या आपको बार बार सिर दर्द, सीने में दर्द या चक्कर आते हैं? ये हाई बीपी के संकेत हो सकते हैं। अगर रोका न गया तो हो सकता है दिल का दौरा, लकवा या किडनी फेल।
1: घबराएं नहीं, सरकार के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बीपी की जांच और दवाइयां मुफ्त मिलती हैं।
0: आज ही अपना बीपी चेक कराए, नमक कम खाए, रोज टहले, तनाव से दूर रहे और हाई बीपी को कहे अलविदा।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: स्वस्थ हिमाचल, मजबूत हिमाचल।
3: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
3: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
4: Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
3: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa.
3: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
4: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
3: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
4: Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
3: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
4: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
5: Nexa.
6: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मों से लिए गए भजन।

युवा साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। आपको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त नर्मदा शर्मा। तो जैसा कि हर दिन कुछ नया कुछ नई जानकारी लेकर हम आते हैं, तो आज मंगलवार है और आज हम जाएंगे कहीं घूमने सैर सपाटा में। लेकिन उससे पहले हम सुनवाते हैं आपको एक गीत।

0: into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now it's yours at an effective price of just rupees 6.75 lakh.
0: Yes, rupees 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa. जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
3: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: दीदी, आजकल HPV वैक्सीन की काफी बात हो रही है, ये है क्या?
5: माया, ये वैक्सीन बेटियों को भविष्य में सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में मदद करती है। 14 से 15 वर्ष तक की लड़कियों को सरकार ये टीका बिल्कुल मुफ्त लगा रही है।
4: अच्छा, और अभी तक कितने लोगों ने इसका लाभ लिया है?
5: इसी वर्ष 28 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और तब से अब तक हजारों लाभार्थी इसका लाभ उठा चुके हैं।
6: अपनी बेटी के HPV टीकाकरण के लिए आशा, ANM या CHO से संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
7: तो युवा साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। और मंगलवार है आज, और आज के दिन हम बात करते हैं, यानी बात नहीं करते, हम घूमने जाते हैं, सैर सपाटा करने जाते हैं। तो आज हम कहाँ लेके जा रहे हैं आपको? आज मैं आपको लेके जा रही हूँ दक्षिण भारत के एक बेहद खूबसूरत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर मैसूर के बारे में बताऊंगी। मैसूर कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है और सिटी ऑफ पैलेसेस यानी महलों का शहर भी इसे कहा जाता है। ये शहर अपनी समृद्ध संस्कृति, शानदार वास्तुकला, स्वच्छ वातावरण और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता है। मैसूर का इतिहास काफ़ी पुराना है और रोचक भी है। ये शहर लंबे समय तक वाडियार राजवंश की राजधानी रहा। वाडियार शासकों ने मैसूर की कला, संगीत, शिक्षा और वास्तुकला को बहुत बढ़ावा दिया। इसी कारण आज भी शहर के महलों, मंदिरों और इमारतों में राजसी वैभव और कन्नड़ संस्कृति की सुंदर झलक दिखाई देती है। मैसूर का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण मैसूर पैलेस है। ये भव्य महल अपनी सुंदर बनावट, विशाल दरबार हॉल, रंगीन कांच, नक्काशीदार दरवाजों और शानदार सजावट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो मैसूर शहर के बारे में और भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं गीत। लेकिन श्रोताओ, आपके मनोरंजन से पहले हम आपको देंगे एक सूचना। प्रदेश की अदालतों में लंबित मामलों के जल्द और आपसी सहमति से निपटारे के लिए अदालत मध्यस्थता यानी मीडिएशन फॉर नेशन एक विशेष मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय की मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वाधान में आयोजित ये अभियान हिमाचल में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के संरक्षक न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह सिंधावालिया के संरक्षण में चल रहा है। प्रशिक्षित मध्यस्थ दोनों पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से सहमति आधारित समाधान निकालने में मदद करेंगे। इसे समय और खर्च के साथ वचित, त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रंजीत सिंह ने कहा कि अभियान का मकसद अदालतों में मामलों का बोझ कम करने के साथ लोगों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में ये काम करना है। सूचना समाप्त हुई।

और ये भव्य महल अपनी सुंदर बनावट, विशाल दरबार हॉल, रंगीन कांच नक्काशीदार दरवाजों और शानदार सजावट के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। महल का निर्माण इंडो सारसैनिक शैली में हुआ है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, राजपूत और यूरोपीय वास्तुकला का सुंदर मेल दिखाई देता है। दशहरा के समय पूरा महल हजारों बल्बों से जगमगा उठता है और देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। शाम के समय महल की रोशनी देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ आते हैं। मैसूर का दशहरा उत्सव पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसको देखने के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग शहर में पहुंचते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संगीत, नृत्य, लोक कलाएं और रंग बिरंगी झलकियां आयोजित की जाती हैं। विजयदशमी के दिन निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा इसका मुख्य आकर्षण होती है। सजे हुए हाथी, पारंपरिक वाद्य यंत्र, कलाकार और राजसी झांकियां इस आयोजन को बेहद खास बना देती हैं। युवाओं के लिए ये उत्सव अपनी संस्कृति और परंपराओं को करीब से समझने का शानदार अवसर है। तो और भी बात करेंगे मैसूर शहर के बारे में, एक ब्रेक के बाद सुनते हैं गीत।

तो युवा साथी, स्वागत है आपका एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं सैर सपाटा में आज मैसूर शहर के बारे में। मैसूर को कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ कन्नड़ भाषा, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक नृत्य की गहरी परंपरा है। शहर में कई सांस्कृतिक संस्थान और संगीत विद्यालय हैं जहाँ विद्यार्थी कला और संगीत की शिक्षा लेते हैं। मैसूर चित्रकला की भी काफ़ी प्रसिद्ध है। इन चित्रों में सोने की पत्तियों और प्राकृतिक रंग

का सुंदर प्रयोग किया जाता है। मैसूर में चामुंडी हिल्स एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है। ये शहर से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चामुंडेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। चामुंडी हिल्स से पूरे मैसूर शहर का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। पहाड़ी पर स्थित विशाल नंदी की प्रतिमा भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय यहाँ का वातावरण बहुत ही मनमोहक लगता है। मैसूर चिड़ियाघर, जिसे श्री चामराजेंद्र जूलॉजिकल गार्डन भी कहा जाता है, देश के प्रसिद्ध चिड़ियाघरों में शामिल है। यहाँ कई प्रकार के वन्य जीव और पक्षी देखे जा सकते हैं। ये स्थान युवाओं और बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ साथ पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की जानकारी प्राप्त करने का भी अच्छा माध्यम है। आज के समय में जब जंगल और वन्य जीव खतरे में हैं, ऐसे स्थान हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझाते हैं। सेंट फिलोमेना चर्च मैसूर की एक और प्रसिद्ध इमारत है। इसकी वास्तुकला यूरोपीय शैली से प्रभावित है और इसके ऊंचे शिखर दूर से ही दिखाई देते हैं। ये चर्च अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा मैसूर के आसपास कई पुराने मंदिर और ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जो इस क्षेत्र की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं।

0: step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa. दक्षिण भारत के खूबसूरत और सांस्कृतिक शहर मैसूर पर आज हम आपको दे रहे हैं जानकारी। वृंदावन गार्डन्स मैसूर से कुछ दूरी पर स्थित हैं और अपनी सुंदर बगीचों, फवारों और रंगीन रोशनी के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ शाम के समय म्यूजिकल फाउंटेन शो पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए ये लोकप्रिय स्थान है। कावेरी नदी पर बने कृष्णराज सागर बांध के पास स्थित ये उद्यान प्रकृति और मानव रचनात्मकता को का सुंदर उदाहरण है। मैसूर का खान पान भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई मैसूर पाक देश भर में पसंद की जाती है। इसके अलावा मैसूर में मसाला डोसा, इडली, बड़ा, बिजीबेले, भात और दक्षिण भारतीय फिल्टर कॉफ़ी का स्वाद भी लोग बड़े चाव से लेते हैं। मैसूर पाक को घी, बेसन और चीनी से बनाया जाता है। मैसूर की मैसूर सिल्क साड़ियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इन साड़ियों की पहचान उनकी चमक, सुंदर डिज़ाइन और उच्च गुणवत्ता वाले रेशम से होती है। यह चंदन की लकड़ी से बने उत्पाद, अगरबत्तियाँ, साबुन और सजावटी वस्तुएँ भी मिलती हैं। मैसूर को चंदन नगरी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में चंदन से जुड़े कई पारंपरिक उद्योग विकसित हुए हैं। युवाओं के लिए मैसूर केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि सीखने और प्रेरणा लेने का भी स्थान है। यहाँ आकर वे इतिहास, वास्तुकला, कला, पर्यावरण और स्थानीय संस्कृति को करीब से समझ सकते हैं। मैसूर की साफ सुथरी सड़कें, शांत वातावरण और हरियाली हमें ये संदेश देती है कि विकास के साथ साथ स्वच्छता और प्रकृति की रक्षा भी जरूरी है। मैसूर घूमने का सबसे अच्छा समय रहता है सामान्यतः अक्टूबर से फरवरी के बीच, जब मौसम सुहावना रहता है। दशहरा के समय शहर में विशेष रौनक होती है, लेकिन उस दौरान पर्यटकों की काफ़ी संख्या बढ़ जाती है। मैसूर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से देश के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा है। मैसूर की यात्रा करते समय हमें स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। ऐतिहासिक इमारतों पर कुछ लिखना, कूड़ा फैलाना और वन्य जीवों को परेशान करना सही नहीं है। तो यदि हम जिम्मेदार पर्यटक बने, स्थानीय लोगों और कारीगरों से सामान खरीदें और प्राकृतिक स्थलों को स्वच्छ रखें, तो हमारी यात्रा और भी सार्थक बन जाती है। और अब चलते चलते यही कहना चाहूँगी कि मैसूर इतिहास, संस्कृति, कला, स्वाद और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। ये शहर हमें अपनी विरासत पर गर्व करना, प्रकृति से प्रेम करना और परंपराओं को आधुनिक जीवन के साथ आगे बढ़ाना सिखाता है। यदि आपको कभी दक्षिण भारत घूमने का अवसर मिले तो मैसूर अवश्य जाएं। वहाँ की राजसी वैभव, शांत वातावरण और सांस्कृतिक रंग आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो युवा साथियों, अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं तो मैसूर को अपनी सूची में ज़रूर शामिल करें। शायद ये यात्रा आपको केवल एक नए शहर से परिचित ना करवाए, बल्कि भारत की विविधता और सुंदरता को समझने का एक नया नज़रिया भी दे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का युवा मंच कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हर शाम 6:05 पर आप सुनते हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुरमई सांझ। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे किसान व बागबान भाई बहनों के लिए कार्यक्रम मौजां ग्राहिंदियां। सबरिस कार्यक्रम का समय रहता है रात्रि 8:00 और आज एक ही कलाकार शीर्षक के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे गायक शान द्वारा गाए कुछ गीत। लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीता दी प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 पर और पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे एशियाई खेल 2026 की डेली हाइलाइट्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। शाम के 6:00 को हैं, आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान लोकतंत्र और संविधान की रक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की आवाज लोकतंत्र का सबसे भरोसेमंद आधार है और हर मतदाता को अपने वोट पर भरोसा हो, उसे अपनी पसंद चुनने का पूरा अधिकार मिले, ये हमारी साझा जिम्मेदारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर देश भर में उठ रहे सवालों को गंभीरता से लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते 13 वर्षों से केंद्र में सत्ता से बाहर होने के कारण कांग्रेस में हताशा व निराशा है। ऐसे में अब देश में अराजकता और अफरा तफरी का माहौल बनाकर सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता संविधान के किताब हाथ में लेकर पूरे देश में घूमते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर देश विदेश में बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। बागवानी व राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज मंडी जिले के द्रंग विधानसभा विकासखंड में बड़ागांव क्लस्टर का निरीक्षण किया और एचपी शिवा परियोजना के तहत चल रहे बागवानी विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। बड़ागांव क्लस्टर में 62 किसानों बागवानों की करीब 12 हेक्टेयर भूमि पर 12,753 उन्नत किस्म के अमरूद के पौधे रोपे गए हैं। इस दौरान जगत सिंह नेगी ने भूमि विकास, बाड़बंदी और ड्रिप सिंचाई प्रणाली की प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि द्रंग विकासखंड में एचपी शिवा परियोजना के तहत कुल 8 क्लस्टरों का चयन किया गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हिमाचल तकनीकी क्षेत्र में निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है और राज्य में बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और आईटीआई संस्थानों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है ताकि प्रशिक्षुओं को नवाचार के अवसर मिल सके। धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के लिए 35,34,00,000 रूपए जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवा नेतृत्व आधारित विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन किया जा रहा है। सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत आकांक्षी जिला चंबा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके लिए कार्य प्रगति पर है। चंबा में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। राजीव भारद्वाज ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
1: केंद्र सरकार की ओर से जो धन उपलब्ध करवाया गया है उसकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, उसके विषय में आज बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 शुरू हो गया है, उसमें जितनी योजनाओं की मैंने स्वीकृति दी थी सांसद के नाते कि विभाग में करीब करीब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई।
0: सिरमौर जिला में पशुओं में फैले लंपी वायरस रोग की रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग द्वारा लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर राजीव वालिया ने बताया कि जिले में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए अब तक करीब 55,500 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में लंपी वायरस के 2,544 मामले सामने आ चुके हैं और विभाग के प्रयासों से करीब 2,049 पशुओं का उपचार किया गया है। राजीव वालिया ने बताया कि टीकाकरण से छूटे पशुओं का भी जल्द ही वैक्सीनेशन किया जाएगा।
2: लंपी जो जुलाई महीने में हमारे पास सबसे पहला केस 17 जुलाई के आसपास आया था, उसके बाद काफी बढ़ोतरी हुई, लगभग 100 केस आना शुरू हुए थे पहले हफ्ते अगस्त में। पर हमारे यहाँ जब वैक्सीन प्रोक्योर हो गई थी हमारे पास 60,000, उसके बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, वैक्सीनेशन शुरू हुई, तो धीरे धीरे धीरे धीरे ये लंपी के ऊपर हमने काबू पा लिया है।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार। FM 90

103.4 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला। शाम के 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं सदाबहार गीतों का ये कार्यक्रम सुरमई सांझ।

0: drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
0: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
0: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just ₹8.99 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
4: महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
6: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
5: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
6: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
5: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
6: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
5: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
6: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
5: लड़ी हक की लड़ाई,
6: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: श्रोताओ, पुरानी फिल्मों से गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम है सुरमई सांझ और कार्यक्रम का पहला गीत हमने आपको सुनवाया था मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में पारसमणि फिल्म से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
3: सब प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
4: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
3: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
4: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
3: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
4: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम, आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
4: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
1: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just rupees 9.67 lakhs.
0: Yes, rupees 9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
1: Own this style icon at an EMI of just rupees 899 per month.
0: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360 degree view camera, heads up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
2: Nexa.
5: सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरमई सांझ में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के युगल स्वरों में।

0: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
1: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
0: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
1: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
0: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
1: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
0: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
1: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
2: लड़ी हक की लड़ाई,
1: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

तो श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम और जागरण दिया।

0: सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार और आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत। तो किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। तो जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ ये कार्यक्रम होता है और इसमें हम आपके लिए लाते हैं नई नई जानकारियां, और जानकारियों के साथ साथ साथ हम करते हैं आपका मनोरंजन लोकगीतों के साथ। तो क्यों ना आज की इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाए इस लोकगीत के साथ।
1: तेरा लौंग पाई के मेरा नक दुखदा, मिंजो नथ कढ़ाई दे जिंद जान सोनिया।

0: मुझे सांप ने काट लिया।
1: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
2: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं, तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
3: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
4: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
5: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV.

0: 1.75 lakh, valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
4: मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम आप सुन रहे हो आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के बारे में। मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण का अर्थ है कि पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों और कौशलों को शामिल करना, ताकि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक ज्ञान प्रदान करना, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, अंग्रेजी जैसे जो विषय हैं उनका अध्ययन करवाना, रोजगार और उच्च शिक्षा के अवसरों को मजबूत करना, डिजिटल शिक्षा और तकनीकी कौशल विकसित करना, धार्मिक विषयों के साथ विज्ञान, गणित और भाषा शिक्षा यानी आधुनिक पाठ्यक्रम जो है उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, कंप्यूटर शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, पुस्तकालय और डिजिटल संसाधन, कौशल विकास, ये सारा उनके अंदर होना चाहिए। विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता इससे बढ़ती है, उच्च शिक्षा और रोजगार के अधिक अवसर मिलते हैं, समाज की मुख्यधारा से जुड़ाव मजबूत होता है, धार्मिक और आधुनिक शिक्षा का संतुलन विकास होता है। तो एक ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं लोकगीत।

0: into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa. बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
0: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
0: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
0: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
1: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
3: Nexa. तो किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मौजा ग्रा इंडिया कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं मदरसा शिक्षा पर, उसके आधुनिकीकरण पर। शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक है ताकि वर्तमान में और भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक विद्यार्थी सामना कर सकें। मदरसे भारत की एक प्राचीन शैक्षिक परंपरा का हिस्सा हैं। इन संस्थानों ने सदियों से धार्मिक शिक्षा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जागरूकता के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मदरसों में विद्यार्थियों को धार्मिक ग्रंथों, नैतिक शिक्षाओं और मानवीय मूल्यों का ज्ञान दिया जाता है। ये शिक्षा विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आज का युग विज्ञान, तकनीकी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का युग है। केवल पारंपरिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों को आधुनिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और तकनीकी शिक्षा से भी परिचित करवाना आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की अवधारणा सामने आई है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण का अर्थ धार्मिक शिक्षा को समाप्त करना नहीं है, बल्कि धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक विषयों का समन्वय करना है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मदरसों के विद्यार्थी भी अन्य विद्यार्थियों की तरह आधुनिक ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकते हैं तथा उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों का लाभ ले सकें। आधुनिकीकरण के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं, जैसे पहले पाठ्यक्रम में आधुनिक विषयों को शामिल किया जाता है। विज्ञान, गणित, कंप्यूटर शिक्षा और भाषाओं के अध्ययन से विद्यार्थियों का ज्ञान व्यापक होता है। दूसरा, डिजिटल तकनीकों का उपयोग बढ़ाया जाता है। स्मार्ट कक्षाएं, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री और कंप्यूटर प्रयोगशालाएँ विद्यार्थियों को नई तकनीकों से जोड़ती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू की शिक्षक प्रशिक्षण है। जब शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण पद्धतियों और तकनीकों का प्रशिक्षण मिलता है, तब वे विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी ढंग से शिक्षा दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और अन्य शैक्षिक संस्थानों का विकास भी आवश्यक है। मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इससे विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे उच्च शिक्षा के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं। आधुनिक विषयों का ज्ञान उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सहायता करता है। साथ ही वे समाज के मुख्य धारा से और अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ पाते हैं। तो अब एक ब्रेक लेते हैं, एक और लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: तो किसान बागवान भाइयों, इस लोकगीत के साथ ही आज का मौजा ग्राइंडीय कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियां और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की मौजूदगी देश की नौसैनिक क्षमता को दर्शाती है। श्री सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र और उससे आगे भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत के महासागर दृष्टिकोण को और मजबूती प्रदान कर रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों की उपज का उचित और लाभदायक मूल्य दिलाने के लिए कार्य कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
2: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसमें दोनों व्यवस्था, एक एमएसपी और एक विदाउट एमएसपी, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को, ये तय किया। तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज प्रगति 50 के अंतर्गत पहली पहल शुरू की। इसका उद्देश्य आर्थिक, सांस्कृतिक विरासत, तीर्थयात्रा, पर्यटन और प्रशासनिक महत्व वाले 50 शहरों के लिए आदर्श शहरी ढांचा तैयार करना है। श्री मनोहर लाल ने कहा कि 24 राज्यों की ये 50 शहर देश के बाकी हिस्सों के लिए स्वच्छ और आदर्श शहरों के तौर पर उभरेंगे। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 11 सीट के लिए द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की एक सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव की भी अधिसूचना जारी की। नामांकन आज से शुरू हो गए हैं और मतदान 16 अक्टूबर को होगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति की दूसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। समिति को विधेयक के प्रावधानों की जांच कर संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता वाली समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर से भेंट की। उच्चायुक्त ने राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री कबीर को बधाई दी। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत और बांग्लादेश के बीच निरंतर सहयोग पर चर्चा की। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने आज मॉस्को में रूस के उप विदेश मंत्री मिखाइल गलुजिन से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की और यूक्रेन के हालात पर भी विस्तार से चर्चा की। पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के बीच मुलाकात हुई थी। भारत और केन्या के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नौसेना का अग्रिम पंक्ति का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तरकश आज पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पहुंचा। आईएनएस तरकश की यह यात्रा 2 अक्टूबर तक चलेगी। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत वैश्विक विमानन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की दिशा में अग्रसर है। श्री नायडू नई दिल्ली में आज रूट्स एशिया कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। जापान एशियाई खेलों में भारत ने महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा और इसी स्पर्धा के मिक्स वर्ग में भी भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हासिल कर इतिहास रचा। भारत 6 स्वर्ण 21 रजत 25 कांस्य सहित 52 पदक के साथ 10वें स्थान पर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरम मुज्तबा। Defense Minister Rajnath Singh said that the Indian Navy is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear, that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner, and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal today launched a new set of initiatives under the Pragati 50 to develop a model city framework for 50 cities of economic, cultural, heritage, pilgrimage, tourism and administrative significance. Speaking at the launch ceremony, the Union Minister emphasized that the initiative aims to drive visible improvements in urban cleanliness, solid waste management,

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान व बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। आज के किसान वाणी कार्यक्रम में मैं हूं हेमलता शर्मा
7: और मैं दिनेश ठाकुर।
6: किसान श्रोताओं, किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रत्येक मंगलवार, वीरवार और शनिवार को साया 7:10 से लेकर 7:45 तक प्रसारित किया जाता है और इसे उसी समय आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से भी रिले किया जाएगा। तो काम की बातों में बात करेंगे खुम के सूत्र कृमियों का प्रबंधन, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ
7: और एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनाएंगे जिसका विषय रहेगा दुधारू पशुओं के रोग व उपचार के बारे में।
6: जी
7: तो सबसे पहले शर्मा जी बात कर लेते हैं काम की बातों में खुम्भ के सूत्र कृमियों के प्रबंधन के बारे में।
6: जी, अन्य फसलों की भांति खुम्भ को कई प्रकार के कीड़े मकोड़े और सूत्र कृमि क्षति पहुंचाते हैं। सियारिड मक्खी, फॉरिड मक्खी, स्प्रिंग टेल्स माइट और सूत्र कृमि खुम्भ की बिजाई से लेकर तोड़ान तक किसी भी अवस्था में क्षति पहुँचाते हैं। कम अवधि की फसल होने के कारण वह अवशेष समस्या कीटनाशकों का खुलेआम प्रयोग वर्जित करती है। खुम्भ उत्पादन में कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए पहला कदम कीड़े मकोड़े के प्रवेश को रोकना होता है।
7: जी बिल्कुल शर्मा जी, और सियारिड मक्खी के बारे में अगर हम बात करें तो ये खुम्भ की सर्वाधिक क्षतिकारक मक्खियां मानी जाती है। ये प्राय पत्ती की खाद, जंगली कोक्कों और सड़ती हुई पादप सामग्रियों में रहती है और खुम्भ की खुशबू से आकृष्ट होकर उत्पादन कक्षों तक पहुंच जाती है। इसके लार्वे सफेद पदरहित और लंबे मैगेट वाले होते हैं जिनमें काला चमकता हुआ मुंडक होता है।
6: जी, और किसान भाई यदि इनका आक्रमण प्रारंभिक अवस्था में हो तो ये स्पान विस्तार में बाधा डालते हैं जिसके कारण उत्पादन बहुत कम हो जाता है। लार्वा खुम्भ की सुइयां तथा बटनों दोनों को क्षतिग्रस्त करते हैं और उन्हें भूरे रंग का एवं चिमटा बना देते हैं। लार्वा डंडों के उत्कों को खाकर उनमें सुरंगों का निर्माण कर देते हैं और कभी कभी आपने देखा भी होगा ये पूरे बटन को भी खा लेते हैं। प्रौढ़ावस्था प्राप्त करके ये मक्खियां खुम्भ के कई प्रकार के रोगों व बर्थियों के संभाकों का कार्य करती है। जब मशरूम कंपोस्ट को चरम उष्मानित करने के बाद ठंडा किया जाता है तब प्रोड सियारिड मक्खियां खाद की मीठी महक से आकृष्ट हो जाती है और खाद में प्रत्येक मादा मक्खी लगभग 100 से 140 अंडे देती है और इन अंडों से लार्वा पैदा होते हैं जो कि स्वापन विस्तार की अवधि में फैलाने वाले कवक जाल को नष्ट कर देते हैं और इन लार्वे से उत्पादन कक्षों में उपलब्ध तापमान के अनुसार 2 से 3 सप्ताह के भीतर प्रौढ़ मक्खियों की नई पीढ़ी पैदा हो जाती है।
7: जी किसान भाइयों, और बात करें फॉरिड मक्खी के बारे में तो फॉरिड एक छोटी 2 से 3 मिलीमीटर कुबड़ युक्त पीठ वाली मक्खी है। इसका रंग भूरा काला होता है और ये सियारिड मक्खी से अधिक मजबूत होती है। इनके लार्वों का रंग सफेद होता है और ये पद रहित होती है और जिनके मुंडक का सिर नुकीला रहता है। ये मक्खियां तेज और झटके वाली गति से इधर उधर भागती है और मादा प्रौढ़ मक्खियां बढ़ते हुए खुम्भों के गीलों पर या आवरण की सतह पर अंडे देती है। लार्वा खुम्भों के डंडों पर सुरंग बनाते हैं। ऐसा पाया गया है कि प्रति 30 ग्राम खाद में 100 लार्वों की संख्या खाद में क्वक जाल को गहन क्षति पहुंचाने के लिए प्राप्त होती है।
6: जी किसान भाई, यदि बात करें सैसिड मक्खी की तो सैसिड की प्रौढ़ मक्खियां इतनी सूक्ष्म होती है कि शायद ही दिखती हो। इन्हें इनके छोटे लार्वों की सहायता से पहचाना जा सकता है जो कि नारंगी रंग के हो जाते हैं। इनका मुंडक स्पष्ट नहीं होता और उनके मुंडक के स्थान पर दो टुक बिंदु मौजूद होते हैं जो इसे एक्स का आकार देते हैं। सेसिड की प्रजनन क्षमता बहुत तीव्र होती है जिसके कारण ये उत्पादन को भारी हानि पहुंचाते हैं। लार्वा कवक जाल, डंडों के भारी भाग तथा डंडों की गिली की संधि स्थल का भक्षण करते हैं। खुम्बों में लार्वों की उपस्थिति तथा बाद में जीवाणु संक्रमण के कारण मशरूम भूरे एवं बद रंग हो जाते हैं और उनमें छोटे छोटे स्रावी दाग पैदा हो जाते हैं।
7: शर्मा जी, बात करें खुम्ब की मक्खियों के नियंत्रण और कुशल प्रबंधन के बारे में, तो सबसे पहले किसान भाइयों आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है।
6: जी,
7: साफ सफाई खुम्ब उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। खुम्ब उत्पादन में साफ सफाई खाद बनाने से पहले ही शुरू हो जानी चाहिए। खाद बनाने के प्रांगण में खाद बनाने के 24 घंटे पहले 2% फार्मलिन का छिड़काव करना जरूरी रहता है। खाद प्रांगण की साफ सफाई कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण करता है। पाशुतिकरण कीड़े मकोड़ों की सभी अवस्थाओं का नियंत्रण करता है।
6: जी, बात कर लेते हैं कंपोस्ट और कैसिंग मिट्टी का उपचार के बारे में। 100 किलोग्राम तूड़ी से बनी कंपोस्ट पर 20 मिलीलीटर लिंडेन पानी में मिलाकर आखिरी पलटाई के वक्त छिड़काव करें। यदि मक्खियां कैसिंग करने से पहले ही आने लगे तो 100 किलोग्राम कैसिंग मिट्टी से 15 मिलीलीटर लिंडेन को 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, कंपोस्ट और कैसिंग मिट्टी में डाइफ्लेबेन जुरोन 5% से 1% की दर से डालने पर सूंडियों और मक्खियों का संतोषजनक नियंत्रण किया जा सकता है।
7: किसान भाइयों, खुम्ब की मक्खियां बढ़ते हुए क्वक जाल के महक की ओर आकर्षित होती है। खुम्ब उत्पादन के समय ये मक्खियां उत्पादन कक्षों में प्रवेश करती है और बीजित कंपोस्ट और खुम्ब क्यारियों में प्रजनन करती है। छोटे आकार के कारण ये मक्खियां साधारण जालों से आसानी से आ जा सकती है, इसलिए इन मक्खियों के प्रवेश को रोकना और भी जरूरी हो जाता है। दरवाजों और रोशनदानों को 14 से 16 मेश सेंटीमीटर आकार के नायलॉन और तार के जाले लगाने से इन मक्खियों के प्रवेश को रोका जा सकता है।
6: जी, यदि हम जहर आकर्षण की बात करें तो यदि उत्पादन के समय मक्खियां हो तो इनको अन्य विधियों द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। बैगोन को पानी के साथ 1:10 के अनुपात में मिलाकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर उत्पादन कक्षों में रखने पर मक्खियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है।
7: किसान भाइयों, चिपचिपी पट्टियों के द्वारा भी इनका नियंत्रण किया जा सकता है। पीले रंग का 0 वॉट का बल्ब दीवार में लगाने और उसके नीचे पॉलीथीन की शीट में चिपचिपा पदार्थ लगाकर मक्खियों का नियंत्रण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा मक्खियों का उत्पादन कक्षों में प्रकट होने का समय व संख्या के बारे में पता लगाया जा सकता है।
6: जी, यदि हम बात करें उपचार के तरीके की तो स्पानिंग के 7 दिन के बाद क्यारियों को 1% मेलाथियन घोल का छिड़काव करें। फसल में इनका प्रकोप हो तो डाइक्लोरोवास या आप ले सकते हैं न्यूवॉन की 1% घोल का छिड़काव थैलों, पेटियों, दीवारों और फर्शों पर अवश्य करें। उत्पादन के समय मक्खियों के प्रकोप को रोकने के लिए दीवारों और फर्श पर 5% साइपरमेथ्रिन का छिड़काव करें और छिड़काव करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कीटनाशक का बार बार छिड़काव ना हो। पूरा उत्पादन लेने के बाद खाद को कक्ष से दूर गड्ढे में फेंककर 10 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत से उसे दबा दें।
7: जी किसान भाइयों, और बात करें स्प्रिंग टेल्स के बारे में, तो स्प्रिंग टेल्स लगभग 2.85 मिलीमीटर लंबा एक सूक्ष्म कीड़ा है जिनके शरीर के दोनों किनारों पर हल्की बैंगनी रंग की पट्टियां होती है। इनके शरीर का रंग मटमैला होता है। इन कीड़ों के पंख नहीं होते, वो ये छेड़ने पर उछलते हैं। नुकसान की अगर हम बात करें तो ये खुम्ब के क्वक जाल को खाते हैं जिससे खुम्ब कलिकाओं की बढ़ोतरी रुक जाती है और खुम्ब के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं। ये कीड़े बटन खुम्ब से ज्यादा क्षति डिंगरी मशरूम को पहुंचाते हैं
6: जी।
7: और तने के आधार पर इकट्ठे होकर क्वक जाल को खाना शुरू कर देते हैं। फलस्वरूप डिंगरी खुम्ब की एक बढ़त रुक जाती है और मुरझाई हुई लगती है। तो किसान भाइयों, ये तो रही कुछ एक जानकारी खुम्ब के सूत्रकृमियों के प्रबंधन के बारे में। अब अपने किसान और बागवान

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना समूह स्वरों में ये लोकगीत। अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को सुनाएंगे जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय है दुधारू पशुओं के रोग व उपचार। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर अनुज बाली और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं कुलदीप।
1: किसान और बागवान भाई बहनों नमस्कार। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं दुधारू पशुओं की बीमारियां एवं उनकी रोकथाम। किसान और बागवान भाई बहनों, आप कृषि कार्य तो करते ही हैं, चाहे हम बागवानी का कार्य कर रहे हैं चाहे कृषि का कार्य कर रहे हैं। कृषि कार्य के साथ साथ जो पशुपालन है ये भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी पशुओं में कोई बीमारी तो नहीं लग रही है। इस विषय में आज हमें अधिक जानकारी देंगे डॉक्टर अनुज बाली। तो सबसे पहले तो डॉक्टर अनुज बाली का हम अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। डॉक्टर बाली, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं में मुख्यतः कौन से जो रोग है वो लग जाते हैं।
2: देखिए, दुधारू पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। कुछ रोग सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ, रिकेट्स आदि पशुओं में कर देते हैं। इन बीमारियों को संक्रामक या इन्फेक्शियस बीमारी कहा जाता है। कुछ बीमारियां दुधारू पशुओं में इन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होती हैं। इन बीमारियों को असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्शन रोग कहा जाता है। कुछ बीमारियां जो संक्रामक रोग है एक पशु से दूसरे पशु में लग जाती हैं, इन्हें छूतदार रोग कहा जाता है, जैसे कि मुंह खुर की बीमारी, गलघोटू रोग, लंगड़ा बुखार आदि। इसके अलावा दुधारू पशुओं में कुछ परजीवी जनित रोग भी हो जाते हैं। कुछ परजीवी पशुओं के शरीर में बाहर से इन्फेक्शन करते हैं, जिन्हें बाह्य परजीवी कहा जाता है, तो कुछ परजीवी पशु के शरीर के अंदर भी होते हैं, इन्हें एंडोपैरासाइट या अंतः परजीवी कहा जाता है। इसके अलावा पशुओं में कुछ बीमारियां कुपोषण जनित भी होती हैं तथा कुछ मेटाबॉलिक डिजीज भी होती हैं, जो पशु के शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म में विकार के कारण हो जाती हैं।
1: जी,
2: कुछ बीमारियां पशु से मनुष्य में भी आ जाती हैं, इन्हें जूनोटिक बीमारी कहा जाता है।
1: तो डॉक्टर बाली, जैसे आपने कुछ एक बीमारियों की बात की कि हमारे जो पशु है उनमें कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है, तो मुख्य इनका बीमारियों को होने का या रोगों के होने का कारण क्या होता है?
2: देखिए, पशुओं में ये रोग बैक्टीरिया, वायरस तथा प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्म जीव हैं, इन द्वारा होते हैं। इसके कुछ प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं। यदि आपका पशु कमजोर हो या उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो, उसकी इम्यून सिस्टम जो कमजोर हो
1: जी,
2: तो उसमें ये बीमारी जीवाणु हैं ये उसमें प्रवेश कर जाते हैं कई मार्गों द्वारा और उसमें बीमारी कर देते हैं। जैसे कि पशु को दूषित आहार देना, पशु को अस्वस्थ पशुशाला में रखना। यदि पशुशाला आपकी स्वच्छ नहीं होगी, पशु में अनेक बीमारियां लग सकती हैं
1: जी।
2: अधिक पशुओं का एक साथ रहना या पशुओं का दूषित प्रबंधन करना, पशुओं का संतुलित आहार ना देना, इन कारणों से रोग फैलाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं पशु के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और रोगों को फैलाते हैं
1: जी। डॉक्टर बाली, दुधारू पशुओं की अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन भी हिमाचल प्रदेश में काफी अधिक किया जाता है
2: जी।
1: अगर दुधारू पशुओं की हम बात करें तो दुधारू पशुओं में कौन से जो ऐसे रोग है जो संक्रामक होते हैं?
2: जहाँ तक संक्रामक रोगों की बात है, इसमें से कई रोग ऐसे होते हैं जो छूतदार होते हैं, जो एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाते हैं
1: जी।
2: ये पशुपालकों को बहुत ही नुकसान करते हैं, पशुओं का दूध उत्पादन कम हो जाता है और पशुपालकों को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है
1: जी।
2: अगर हम इन रोगों की बात करें तो मुख्य तीन तरह से ये रोग हो जाते हैं। एक जो रोग होते हैं जीवाणु जनित रोग
1: जी,
2: जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं
1: जी।
2: इसमें हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू रोग आता है। कई पशुओं में लंगड़ा बुखार या ब्लैक वाटर भी इसे कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। और एक गर्भपात की बीमारी पशुओं में हो जाती है, जिसे ब्रुसेलोसिस रोग कहा जाता है
1: जी।
2: इसके अलावा कुछ सूक्ष्म विषाणु जनित रोग होते हैं जो छूतदार रोगों की श्रेणी में आते हैं। इसमें मुंह खुर की बीमारी आती है, रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग की बीमारी आती है, और एक रेबीज जो पशुओं में पागलपन की बीमारी हो जाती है, ये विषाणु द्वारा होती है। इसके अलावा जो तीसरी श्रेणी है वो प्रोटोजोआ द्वारा पशु में रोग हो जाते हैं, जिसमें कि चिचड़ियों द्वारा इस रोग के जो कीटाणुओं से उनका संक्रामक हो जाता है। इसमें टिक फीवर की एक बीमारी होती है, जिसमें पशु के पेशाब से खून आने लग जाता है, ये बीमारी होती है
1: जी। आजकल देखने में आया, काफी समय से देखने में आया कि हिमाचल प्रदेश में जो पशु है जो उनमें मुंह और खुर की बीमारी लग जाती है
2: जी।
1: इसका क्या कारण है, किस वजह से लगती है?
2: देखिए, जो मुंह खुर की बीमारी है ये एक FMD नाम के एक वायरस से होती है। ये पशु जितने भी क्लोवन फुटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर आदि में हो जाती है। ये FMD नाम के वायरस से बीमारी होती है। इसके कई प्रकार और उप प्रकार होते हैं। यदि हम हमारे देश की बात करें तो OAC और Asia 1 नाम का एक स्ट्रेन होता है, इस विषाणु द्वारा ये बीमारी होती है। यदि हम अपने प्रदेश की बात करें तो जो ओ स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन द्वारा ये बीमारी मुख्यतः हमारे प्रदेश में होती है। यदि इस बीमारी के लक्षणों की हम बात करें तो इस बीमारी में सबसे पहले तो तेज बुखार हो जाता है, 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब। पशु खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है। कुछ समय बाद पशु के मुंह से लार टपकने लगती है, और जब पशु मुंह हिलाता है तो चप चप की आवाज़ आने लगती है। बुखार आने के बाद पशु के मुंह में जबान के ऊपर, खुरों के बीच में थनों के ऊपर छाले हो जाते हैं, जो छाले फटने के बाद घाव का रूप ले लेते हैं। घाव होने से पशु को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु लंगड़ा के चलता है। गर्भित मादा होती हैं उनमें कई बार गर्भपात हो जाता है। जो नवजात बछड़े और बछड़ियां हैं उनमें कई बार बगैर लक्षण हुए ही मृत्यु हो जाती है। इस रोग से पशुओं में मृत्यु दर है वो कम है, 10% के करीब, परंतु पशुपालक को बहुत आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जो पशु बच जाते हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं, उनके शरीर पे अकड़न आ जाती है और उनमें कई बार हांफना रोग भी हो जाता है।
1: जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर पशुपालक भाई अपने पशुओं में इस प्रकार का रोग देखते हैं तो उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी है, कि इस समय पे कैसे उपचार करना है और कौन सी बातों का विशेष ध्यान उन्हें रखना है अगर ये रोग उनके पशुओं में लग जाता है।
2: जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मुंह खुर रोग है ये बहुत ही एक छूतदार रोग है, एक पशु से दूसरे पशु में एकदम से फैल जाता है। तो सबसे पहले तो अगर ये रोग हो जाए, रोग ग्रस्त जो पशु है आपका, उसे तुरंत अलग कर देना चाहिए, उसकी खाने पीने की व्यवस्था अलग से कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति रोग ग्रस्त पशु को देख रहा है उसे भी स्वस्थ पशुओं से अलग ही रहना चाहिए। इस बीमारी की सूचना तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक को देनी चाहिए ताकि वो उचित समय पर उचित कदम उठा सके। यदि रोगग्रस्त पशु की मृत्यु हो जाए तो उसके शव को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, परंतु 3 से 4 फुट का गहरा गड्ढा करके पशु को उसमें दबा देना चाहिए। पशु के दोनों तरफ 20 से 25 सेंटीमीटर करीब चूना डाल देना चाहिए और इस गड्ढे को दबाकर इसके ऊपर कांटेदार या नुकीली कोई झाड़ियां तार लगा देनी चाहिए ताकि कोई जंगली जानवर या कोई अन्य पशु यहाँ पे आना सके। इसके अलावा जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जो बचाव है वो इलाज से बेहतर होता है। तो ये जो कहावत है ये दुधारू पशुओं के संदर्भ में बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि एक बार जब बीमारी हो जाए तो पशुपालक को ना केवल दूध का नुकसान उठाना पड़ता है परंतु उसको बीमारी में भी काफी खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए पशुपालकों को रोग निरोधन जरूर करना चाहिए। इस बीमारी से बचाव के लिए पॉलीवेलेंट टीके आते हैं जो वर्ष में 2 बार 6 महीने के अंतराल में लगाए जाते हैं, 1 फरवरी माह में और 1 दिसंबर के माह में। यदि ये रोग हो जाए तो ये एक वायरल बीमारी है, इस बीमारी का कोई निश्चित उपचार नहीं है। लक्षणों की गंभीरता को देख के इसका इलाज किया जाता है। पशु चिकित्सक की सलाह पे एंटीबायोटिक दवा दी जा सकती है। जो मुंह और खुर में छाले हो जाते हैं उनको लाल दवा से धो के उसमें बोरोग्लिसरीन की दवा लगाई जा सकती है।
1: डॉक्टर बाले, आप जब रोगों के बारे में बता रहे थे कि एक पागलपन का रोग भी जो हमारे पालतू पशुओं में हो जाता है,
2: जी,
1: तो ये रोग कैसे होता है और इसका उपचार और रोकथाम हमारे जो पशुपालक भाई है कैसे कर सकते हैं?
2: देखिए, जो पशुओं में पागलपन का रोग है इसे रेबीज भी कहा जाता है, ये एक बहुत गंभीर रोग है। ये रोग पशुओं से मनुष्यों में भी आ सकता है और एक बार लक्षण आ जाने के बाद इस रोग का कोई उपचार नहीं है। ये रोग पागल कुत्ते या इन्हीं प्रजाति के अन्य जो जानवर होते हैं, बिल्ली या नेवला आदि के काटने से पशुओं में हो जाता है। ये रोग एक विषाणु जनित रोग है। पागल कुत्ते की लार में इस रोग का विषाणु होता है। जब ये पागल कुत्ता जब किसी स्वस्थ पशु को काट ले तो ये विषाणु उसके नर्व द्वारा उसके मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं और वहाँ बीमारी के लक्षण पैदा कर देते हैं। ये बीमारी के 2 प्रकार के लक्षण होते हैं, एक डंप फॉर्म कहा जाता है और एक फ्यूरियस फॉर्म कहा जाता है। जो डंप फॉर्म की बीमारी, उसमें कोई लक्षण नजर नहीं आते हैं पशु में, पशु सुस्त हो जाता है और कुछ दिनों बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। जो फ्यूरियस फॉर्म ऑफ डिजीज है इसमें पशु उत्तेजित हो जाता है, पशु की आंखें लाल हो जाती है, पशु जोर जोर से रंभाने लगता है, कई बार पशु अपना जो सिर है वो दीवार में पटकने लगता है, पशु के मुंह से लार टपकने लगती है, पशु का पिछला भाग है उसमें अधरंग हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद पशु की मृत्यु हो जाती है। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और लक्षण आ जाने के बाद बिल्कुल भी कोई इलाज नहीं है इस बीमारी का। इसलिए जैसे ही कोई पागल कुत्ता किसी पशु को काट ले तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक के पास जाके इस बीमारी का इलाज करना चाहिए और रोग निरोधक टीके लगाने चाहिए। यदि कोई पागल कुत्ता पशु को काट ले तो इसके टीके पशु को 0, 3, 7, 14, 28 और 90 दिन के बाद लगाए जाते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर बाली, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनको बताना चाहेंगे और भी जैसे रोग है, जैसे हम गलघोटू रोग की बात करें और लंगड़ा बुखार रोग की बात करें, तो इन रोगों के बारे में आप कुछ जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों को देना चाहें।
2: जी, देखिए, जो गलघोंटू रोग है इसको हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया रोग भी कहा जाता है। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है जो एक पास्टोरेला मल्टोसिडा नाम के एक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये एक छूतदार रोग है जो गाय के अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। इस रोग में पशुओं को तेज बुखार हो जाता है, गले में सूजन आ जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, पशु जीभ निकालकर सांस लेता है तथा सांस लेते समय तेज आवाज हो जाती है। देखिए, इस रोग से बचाव के लिए भी पशुपालकों को इसके बचाव के टीकाकरण लगाने चाहिए। तो पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालक के घर द्वार पर निःशुल्क लगाए जाते हैं और ये टीके बरसात से पहले मई जून के महीने में लगा देने चाहिए। जो आप दूसरे रोग की बात कर रहे हैं ब्लैक वाटर या लंगड़ा बुखार, ये भी एक बहुत ही खतरनाक रोग है पशुओं में जिसमें मृत्यु दर बहुत अधिक हो जाती है पशुओं में। इस रोग में पशु लंगड़ा हो जाता है, पशु के अगली और पिछली टांगों की मांसपेशियों के ऊपर सोजिश आ जाती है और उसको दबाने से चर चर की आवाज़ आने लगती है। इस रोग से भी बचाव के टीके पशुपालन विभाग द्वारा लगाए जाते हैं, ये टीके बरसात से पहले लगाए जाते हैं।
1: डॉक्टर बाली, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पशुपालन विभाग है, जैसे आप बात कर रहे हो कि समय समय पर जो पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के रोग के रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, तो ये टीके कौन से टीके लगाए जाते हैं और कब कब लगाए जाते हैं?
2: जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं बताना चाहूंगा कि पशुपालन विभाग जो है वो किसानों के हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसी कड़ी में पशुपालकों के घर द्वार पे निःशुल्क रोग निरोधक टीकाकरण किया जाता है। इसमें चार तरह के टीके लगाए जाते हैं। जो पहला टीकाकरण किया जाता है वो मुंह खुर की बीमारी का किया जाता है। ये टीके 6 महीने के अंतराल में पशुओं को लगाए जाते हैं। पहला टीका फरवरी माह में लगाया जाता है तो दूसरा टीका दिसंबर के माह में किया जाता है। जो दूसरा टीका है वो है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बुखार का, ये टीका बरसात से पहले मई जून के महीने में लगाया जाता है। तीसरा टीका ब्लैक वाटर बीमारी का लगाया जाता है, ये टीका भी बरसात से पहले मई जून के महीने में लगाया जाता है। और जो चौथा टीका लगाया जाता है वो है रेबीज या पशु में पागलपन से बचाव का, ये टीका देखिए जो कुत्तों में लगाया जाता है। पहला टीका 3 माह की आयु में लगाया जाता है, इसके बाद 28 दिन के बाद इसका एक बूस्टर दिया जाता है। इसके बाद प्रत्येक वर्ष ये रोग निरोधक टीके लगाए जाते हैं। यदि हम दुधारू पशुओं में बात करें, यदि कोई पागल कुत्ता पशु को काट ले तो ये उपचार के जो टीके लगाए जाते हैं पशु के काटने के 0, 3, 7, 14, 28 और 90 दिन के बाद लगाए जाते हैं।
1: जी डॉक्टर अनुज बाली, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को और साथ ही साथ जो हमारे पशुपालक भाई बहन उनको बहुत अच्छी जानकारी दी। तो डॉक्टर बाली, ये सब जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था दुधारू पशुओं के रोग व उपचार। बातचीत में भाग ले रही थी डॉक्टर अनुज बाली और उनसे बातचीत कर रहे थे कुलदीप। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी पूर्ण बातचीत से अवश्य लाभ उठाएंगे, क्योंकि जानकारी का होना हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखता है। किसान भाइयों, आप सुन लेते हैं मैना देवी की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मेरी वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया भाग, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी को बताया बेबुनियाद। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार ने राज्य के तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी की 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि बैठक में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और लोकतंत्र व संविधान की रक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की आवाज लोकतंत्र का सबसे भरोसेमंद आधार है और हर मतदाता को अपने वोट पर भरोसा हो, उसे अपनी पसंद चुनने का पूरा अधिकार मिले, ये हमारी साझा जिम्मेदारी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर देश भर में उठ रहे सवालों को गंभीरता से लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। बैठक में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और नगर

0: व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी की कड़ी निंदा की है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि बीते 13 वर्षों से केंद्र में सत्ता से बाहर होने के कारण कांग्रेस में हताशा व निराशा है। ऐसे में अब देश में अराजकता और अफरा तफरी का माहौल बनाकर सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ कांग्रेस नेता संविधान की किताब हाथ में लेकर पूरे देश में घूमते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर देश विदेश में बेबुनियाद आरोप लगाते हैं।
1: जो अराजकता का माहौल खड़ा करने की वो कोशिश करेंगे, उसका कड़ा जवाब केंद्र की सरकार देगी। और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, तो ऐसी चीजों को लेकर के कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के मुताबिक चलेगा, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से चलेगा और संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की वजह से। हम लोगों के बीच में बात कहेंगे, ये लोकतांत्रिक तरीके से कहेंगे। ये फ्रस्ट्रेशन जिस प्रकार की कांग्रेस के नेताओं की बनी पड़ी है, इसको एक्सपोज करना ये हमारा दायित्व बनता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण किसान कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी योजना है जिसके माध्यम से करोड़ों किसानों को लाभ मिल रहा है।
2: ये योजना वाकई अद्भुत है। एक क्लिक से करोड़ों किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। दुनिया के विकसित देशों में भी ऐसा संभव नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े नेताओं को भी ये बहुत अजूबा लगता है। और ये मेरे वही किसान भाई बहन हैं जिनमें से अधिकांश के पास 2014 से पहले न मोबाइल फोन था और न ही बैंक में उनका कोई खाता था।
3: हमारा प्रयास है कि कोई किसान पीछे न छूट, हर एक किसान को आगे बढ़ाएं।
0: प्रदेश के पूर्व मंत्री व 5 बार के विधायक रहे मेजर विजय सिंह मनकुटिया का आज सुबह कांगड़ा जिला स्थित उनके पैतृक गांव तियारा में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। उनके निधन से कांगड़ा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। मेजर विजय सिंह मनकुटिया का अंतिम संस्कार कल उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। सेना में सेवाएं देने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई। मेजर मनकुटिया अपनी बेबाक राय और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने के लिए जाने जाते थे। इस बीच राज्यपाल कविंद्र गुप्ता, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार सहित अन्य नेताओं ने भी मेजर विजय सिंह मनकोटिया के निधन पर गहरा शोक जताया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
4: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
5: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9वें महीने में।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
6: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
7: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
7: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
6: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
7: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
6: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
7: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
6: लड़ी हक की लड़ाई,
7: हिमाचल ने जीत पाई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत आकांक्षी जिला चंबा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जिसके लिए कार्य प्रगति पर है। चंबा में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। राजीव भारद्वाज ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध पहुंचाने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारी को विकास कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
8: केंद्र सरकार की ओर से जो धन उपलब्ध करवाया गया है उसकी ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, उसके विषय में आज बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 शुरू हो गया है, उसमें जितनी योजनाओं की मैंने स्वीकृति दी थी सांसद के नाते कि विभाग में करीब करीब सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई।
0: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हिमाचल तकनीकी क्षेत्र में निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है और राज्य में बुनियादी अधोसंरचना को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और आईटीआई संस्थानों को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है ताकि प्रशिक्षुओं को नवाचार के अवसर मिल सकें। धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के लिए 35,34,00,000 रुपये जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवा नेतृत्व आधारित विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रही है और गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन किया जा रहा है। प्रदेश में इस वर्ष मॉनसून के दौरान भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन करने पहुंची अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने कांगड़ा जिले के आपदा प्रभावित बोह घाटी का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय दल ने धर्मशाला में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस अवसर पर उपायुक्त हेमराज बैरवा ने केंद्रीय दल को जिले में मॉनसून के दौरान हुए जानमाल के नुकसान से अवगत करवाया। उन्होंने केंद्रीय दल से प्राकृतिक आपदा के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता के मापदंडों में संशोधन की सिफारिश करने का आग्रह किया ताकि राज्यों को और अधिक सहायता मिल सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में लिया भाग, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने चुनाव आयोग विवाद को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी को बताया बेबुनियाद। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया का निधन, राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने जताया शोक। सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और प्रदेश सरकार ने राज्य के तकनीकी संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए जारी की 35 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
9: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
10: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
9: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
10: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
9: जानकारी लें, अधिकार जाने।
10: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
9: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
11: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। रोजगार समाचारों में आइए सुनते हैं एक अधिसूचना। नवोदय विद्यालय समिति, जो शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है, द्वारा सत्र 2027-28 के लिए जहां नवोदय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की रिक्त सीटों के लिए पार्श्व प्रवेश परीक्षा यानी लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट आयोजित करने जा रहा है। ये परीक्षा देश के प्रत्येक जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 10 अप्रैल 2027 को आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 30 सितंबर 2026 है। परीक्षा से संबंधित विवरण पत्रिका यानी प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उम्मीदवार इन लिंक्स पर आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 9वीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvsi6-9 इस पर आवेदन किया जा सकता है। कक्षा 11वीं के लिए https://cbseitms.nic.in/2026/nvski-11 पर आवेदन किया जा सकता है। एक बार फिर से बता दें, आवेदन करने की अंतिम तिथि कल यानी 30 सितंबर 2026 है। रोजगार समाचारों में अभी आपने सुनी ये अधिसूचना। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
12: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बज चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम सबरस का। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में गाई इस गजल के साथ।

0: बादशाह जी की गजल है।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
3: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
2: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
3: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
2: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज।
3: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
4: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: ड्राइव होम योर फेवरेट नेक्सा कार विद एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स।
6: एक्सपीरियंस ग्रैंड विटारा, वेयर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मीट्स प्रीमियम कंफर्ट एंड सेफ्टी, नाउ एट एन इफेक्टिव प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट ₹9.67 लाख।
5: यस, ₹9.67 लाख। ऑफर वैलिड टिल 30th सितंबर ओनली
6: ऑन दिस स्टाइल आइकॉन एट एन EMI ऑफ जस्ट ₹8,999 पर मंथ।
5: एक्सपीरियंस लग्जरी विद द पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, 360 डिग्री व्यू कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले एंड 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड।
6: हरी, लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई।
2: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
1: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश हित को सर्वोपरि रखते हुए हिमाचल लगातार अपने हक और अधिकारों की आवाज बुलंद कर रहा है।
2: इसी दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास का परिणाम है किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना में हिमाचल के हितों की ऐतिहासिक रक्षा।
1: समझौते के अनुसार हिमाचल प्रदेश को परियोजना पर बिना किसी खर्च के हर वर्ष 1,000 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी,
2: जिससे प्रदेश को हर साल लगभग 1200 से 1500 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। यानी हिमाचल का हक भी सुरक्षित, प्रदेश का आर्थिक हित भी मजबूत।
1: मुख्यमंत्री ने हर मंच पर बुलंद की है हिमाचल के हक और अधिकारों की आवाज़।
2: प्रदेश के संसाधनों पर प्रदेशवासियों का हक सुनिश्चित करने की दिशा में एक और मजबूत कदम। आत्मनिर्भर हिमाचल के संकल्प के साथ वर्ष 2032 तक समृद्ध हिमाचल के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है प्रदेश।
3: लड़ी हक की लड़ाई, हिमाचल ने जीत पाई।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। नुसरत फतेह अली खान की आवाज में आप लीजिए सुनिए ये कलाम।

0: गुरदास मान की आवाज़ में गाए इस पंजाबी लोकगीत के साथ ही आज का विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस यहीं पर संपन्न होता है।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।
2: Drive home your favorite Nexa car with exclusive benefits.
3: Experience Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just ₹9.67 lakhs.
2: Yes, ₹9.67 lakhs. Offer valid till 30th September only.
3: Own this style icon at an EMI of just ₹899 per month.
2: Experience luxury with the panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
3: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom today. TNC apply.
4: Nexa.
0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: बधाई दी है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% के नुकसान से 243 अंक गिरकर 72,529 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की गिरावट से 64 अंक गिरकर 22,716 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 95.99 प्रति डॉलर के पूर्व स्तर पर बरकरार रहा।
0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बदलती प्रौद्योगिकी और अनिश्चितता के बीच रक्षा तैयारियों में भू सामरिक सोच और आकस्मिक योजना पर बल दिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सरकार किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। देश भर में 50 स्वच्छ आदर्श शहरों को विकसित करने के लिए प्रगति 50 के अंतर्गत नई पहलों की शुरुआत की गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज किया। आंतरिक कर्नाटका, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और एशियाई खेल 2026 में भारत ने महिला 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाज नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Defense Minister Rajnath Singh calls for geostrategic thinking and contingency planning for defense preparedness amid changing technology and uncertainty. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan says government is working on multi-dimensional strategy to ensure fair prices for farmers' produce. New set of initiatives launched under Pragati 50 to develop 50 clean role model cities across the country. India rejects unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Heavy rainfall conditions likely over interior Karnataka, Keralam and northeastern states tomorrow. And in Asian Games 2026, India clinches gold in women's 4x400 meter relay. Neeru Dhanda wins gold in women's trap individual event. Overall medal tally rises to 53, including 6 gold, 21 silver and 26 bronze. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has emphasised that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amidst challenges arising from evolving technology, unpredictability and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. More from our correspondent.
3: The minister underlined that the ongoing operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interest. He added that India stands firm as the first responder, preferred security partner and as a symbol of trust and reliability in the Indian Ocean region, strengthening the country's vision of Mahasagar. The defense minister noted that the presence of Indian warships in South China Sea, Mediterranean, Atlantic Ocean demonstrates the country's blue water force capability. He also commended the Indian Navy for maintaining a high level of combat readiness, noting that it is acting as a strategic anchor in realizing India's resolve of becoming a developed nation by 2047. With Priya Mondal, Neetika Gupta, Akashwani News, Delhi.
2: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multi-dimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference Rabi Campaign 2026 in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price.
4: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However,

महाराष्ट्र में हुआ। शान का विवाह राधिका मुखर्जी से हुआ, जिनके दो बेटे माही और सोहम हैं। उनके दोनों बेटों ने संगीत उद्योग में कदम रखा है। शान ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापनों के लिए जिंगल्स गाकर की थी, और उसके साथ साथ रेमिक्स और कवर वर्जन भी गाना शुरू किया। शान ने अपना पहला एल्बम इट्स टाइम टू डांस 1987 में रिलीज किया था। बाद में 1990 में उन्होंने पहली बार बेलीसगु के साथ मिलकर एक ट्रैक रिकॉर्ड किया था, और बेलीसगु के पहले एल्बम वहम बैम में शामिल हुआ। अगले वर्ष उन्होंने नखरों दे नखरे नामक एक और ट्रैक रिकॉर्ड किया, जो सग्गू के दूसरे एल्बम स्टार क्रेजी में आया था। तो आइए सुनते हैं शान की आवाज़ में गाया एक और गीत।

0: Gone style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.75 lakh.
1: Yes, Rs. 6.75 lakh. Valid till 30th September.
0: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: तो श्रोतो, एक ही कलाकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं गायक शान की आवाज़ में गाए कुछ चुनिंदा गीत। शान के गीत फना से जो गीत चांद सिफारिश और जब से तेरे नैना सांवरिया में उसे फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला और जी सिने पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक उन्होंने जीता। साथ ही उन्हें कई अन्य नामांकन भी प्राप्त हुए। इससे पहले 1996 में उनके गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए उन्हें MTV वीडियो संगीत पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय दर्शक पसंद के लिए नामांकित किया गया था। 2002 में सर्वश्रेष्ठ एकल एल्बम उन्होंने जीता। उनको MTV एशिया संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में 2004 में, 2007 में और फिर 2008 में उन्हें जी सिने अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में 2002 में उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार उन्हें 2007 में मिला गया और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पार्श्व गायक पुरस्कार फना के लिए और सांवरिया के लिए उन्हें 2007 और 8 में उनको सम्मानित किया गया। आईफा अवार्ड उन्हें 2007 में, 2008 और 2010 में मिला। GIAM 2010 में, वार्षिक मध्य यूरोपीय बॉलीवुड पुरस्कार उन्हें 2008 में और 2018 में भारतीय टेलीविज़न अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म पुरस्कार उन्हें 2008 में मिला और सर्वश्रेष्ठ आइकन पुरस्कार 2026 में।

0: श्रोता, इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का एक ही गायक पे आधारित कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: Step into the world of Nexa. Upgrade with exclusive offers across the Nexa range.
2: Meet the Maruti Suzuki Fronz, the SUV that's big on style and smart on value.
1: With its sporty design and thrilling performance, it's built to impress every single day.
2: And now it's yours at an effective price of just ₹6.75 lakh.
1: Yes, ₹6.75 lakh, valid till 30th September.
2: Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronz today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply. Nexa.
0: अभी आप सुन रही थी गायक शान पर द्वारा गाए कुछ चुनिंदा गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, फिर बैंड 103

104 MHz पर आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीतादि। कार्यक्रम का पहला गीत लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं विजय भंडारी की आवाज में।

शक्तिचंद और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्रदीप परदेसी की आवाज़ में।

0: लड़िया बोले जान मेरी पिंजरे जोले तोता जा लड़िया बोले जान मेरी पिंजरे।
1: राकेश सिंह की आवाज में ये लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। अगला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं धीरज शर्मा की आवाज़ में। और श्रोताओं, आपको बता दें कि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं लोकगीतों का कार्यक्रम धाम गीतांगी।

धाम गीतन दी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। इस कार्यक्रम का शेष भाग हम आपको सुनवाएंगे। रात्रि के 10 बज चुके हैं और इस समय हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा एशियाई खेल 2026 की दैनिक

0: हरियाणा के एक छोटे से शहर में जन्मी एक नन्ही लड़की को घर की बंदूक थामने का शौक लग गया। परिवार की दुनाली बंदूक से वो टीन के डब्बों पे निशाना लगाया करती, निशाने एकदम सटीक बैठते। उसके ममेरे भाई ने एशियन गेम्स 2018 में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक पाया तो उसने भी सोचा अब ये मौका है गेम को सीरियसली लेने का। ट्रेनिंग में लग गई और 5-6 साल में ही गोली की स्पीड से शिखर पे जा पहुंची और आज उसने स्वर्ण पदक पे निशाना साधा, नया एशियाई रिकॉर्ड बना डाला। खेलों की दुनिया सपनों को सच्चाई में बदलने वाली ऐसी कितनी ही कहानियों से भरी हुई है। 20वें एशियाई खेलों के किताब में भी भारतीय नए पन्ने जोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। एशियन गेम्स आईची नगोया पर आज के हाइलाइट्स कार्यक्रम के साथ हम हैं उपस्थित। नमस्कार, मैं हूँ अनुपम पाठक। आज की हेडलाइंस। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप में इतिहास रचा, स्वर्ण पदक और नया एशियाई रिकॉर्ड। महिला टीम के साथ देश के नाम किया आज का दूसरा पदक, रजत पदक। एथलेटिक्स के अंतिम दिन आया स्वर्ण पदक और साथ में 4 कांस्य पदक भी। बॉक्सिंग में अंकुश पंघाल और परवीन हुडा ने शाम से फाइनल्स में एंट्री की तो नरेंद्र बेरवाल को मिला कांस्य पदक। स्क्वाश में भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची और आर्चरी में भी 3 तीरंदाज रिकर्व स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल्स में। शूटिंग और एथलेटिक्स दोनों में ही शानदार प्रदर्शन आए आज, लेकिन एथलेटिक्स से पहले बात शूटिंग की। नीरू ने नया इतिहास रच दिया आज। शॉटगन की ये शेरनी खेलों के इतिहास में पहला महिला स्वर्ण पदक जीतने वाली शूटर बनी। निशाने इतने सटीक कि नया एशियाई रिकॉर्ड, और यही नहीं उन्हीं के दम पर बहुत कड़ी स्पर्धा में टीम रजत पदक भी भारत के खाते में गया। एक बार फिर तालियां बजाने के लिए सुनिए पूरा विवरण मुदिता से।
1: शूटिंग में भारत ने 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ यादगार प्रदर्शन किया। ट्रैप शूटिंग टीम इवेंट में भारतीय महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय तिकड़ी ने कुल 328 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं कुवैत ने 325 के साथ कांस्य पदक जीता। और फिर आया गोल्ड मेडल जो नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा के फाइनल में हासिल किया। 26 साल की भारतीय शूटर ने 30 में से 28 शॉट स्कोर किए और टॉप पर रही। उनकी सबसे करीबी प्रतिद्वंदी चीन की सुन युनोंग से वो 2 शॉट आगे रही। उनके स्कोर ने एक नया एशियन रिकॉर्ड और एशियन गेम्स रिकॉर्ड भी बनाया। इस जीत के साथ नीरू एशियन गेम्स में इंडिविजुअल ट्रैप शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। इसके पहले 2025 में नीरू ने वुमेन ट्रैप इवेंट में अपना पहला एशियन चैंपियन

0: शिप गोल्ड मेडल जीता। 2026 में नीरू ने इटली के लोनाटो में ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में वुमेन ट्रैप में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया। आइए सुनते हैं उनके कोच मनशेर सिंह ने नीरू ढांडा के बारे में क्या कहा।
1: She joined the academy and then COVID hit. She went back home and she got COVID and we lost her in the hospital. We couldn't find her for 10 days and something happened to her. Found her lying in a bed somewhere with the most distressed full condition. Pulled her out of there, got her support in Chandigarh. Then psychologists had to get involved because she was so traumatized. So we managed all that support, got her back into the academy. Today, she's an Asian champion because of her life-changing experiences. Become the most strongest shooter in a final in the present group of shooters.
2: एथलेटिक्स के अंतिम दिन हुए सभी फाइनल्स में भारतीय उपस्थिति थी, जो दिखाती है भारतीय एथलीट्स के बढ़ते हुए स्तर को। लेकिन हाँ, अगर पदकों के हिसाब से आंकें तो जरूर पोडियम फिनिश में हम कहीं न कहीं थोड़े ढीले दिखे हैं। पिछले एडिशन में 6 स्वर्ण पदक दिलाने वाले इस खेल में इस बार अंतिम दिन तक पहले स्वर्ण पदक की ही बाट जोही जा रही थी और आज ये उम्मीद पूरी हुई। अंतिम से ठीक पहले की स्पर्धा में लड़कियों ने पूरी की 4x400 मीटर रिले में। पहले ही एक पदक जीत चुकी विद्या रामराज ने अंतिम लैप में क्या जबरदस्त एंकर दौड़ लगाई। पूरी ताकत के साथ शानदार फर्राटा और भारतीय राष्ट्रगान की धुन फिजा में गूंज उठी। स्वर्ण पदक 3:01.61 के साथ। आज पूरे समय बारिश की फुहारों के बीच हुई स्पर्धाओं में भारत ने 4 कांस्य पदक और जीते। 4x400 मीटर पुरुषों में डिफेंडिंग चैंपियन था भारत, आज कांस्य पदक आया। लेकिन याद रहेगी तीसरे नंबर पर जय की दौड़ जिसने भारत को लड़ाई की स्थिति में ला दिया और उसके बाद विशाल थिन्नारसु की अंतिम दौड़ बस देखने ही वाली थी। भारत को तीसरे स्थान पर ले आए वो। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जापान की टीम ने पाया। किसान परिवार में जन्मे, फौज में भर्ती होने का सपना सच करने के लिए अलीगढ़ की सड़कों पर दौड़ की तैयारी करते करते फौज में आने के बाद उनका टैलेंट पहचाना गया और आज वो गुलवीर सिंह पिछले 1-2 सालों में सबसे उम्दा प्रदर्शन करने वाले भारतीय एथलीट हैं। अपनी पेट 5000 मीटर स्पर्धा में वो 13:32.75 के साथ तीसरे स्थान पर आए और कांस्य पदक के साथ इन खेलों में अपना तीसरा पदक पाया। 40 साल बाद इन खेलों में 3 या ज्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने वो। ऊंची कूद में पूजा ने अपने 5वें प्रयास में 1.84 मीटर ऊंचाई पार की, जो उन्हें दिला गई कांस्य पदक। स्वर्ण पदक उज्बेकिस्तान की बार्नोखोव ने 1.90 मीटर के साथ जीता। देव कुमार मीणा ने पुरुष पोल वॉल्ट में 7वां स्थान पाया, लेकिन उनकी तारीफ इसलिए कीजिए कि अपना बेस्ट झोंक दिया और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुलदीप 10वें स्थान पर रहे। तो महिला हैमर थ्रो में तानिया चौधरी ने भी अपना बेस्ट दिया, 65.35 मीटर दूर तारगोला फेंका, लेकिन चौथा स्थान ही पाया। महिला 800 मीटर में पूजा 7वें तो पुरुष 800 मीटर में मोहम्मद अफसल अंतिम स्थान पर रहे। एथलेटिक्स में भारत का अभियान 1 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 14 कांस्य पदक। मुक्केबाजों ने रिंग में भारतीय दबदबा आज भी बनाए रखा। पदक तो पहले से ही पक्के थे। आज सेमीफाइनल में 3 मुक्केबाज रिंग में उतरे, 2 के पंच उन्हें ले गए फाइनल्स में, यानी अब दांव स्वर्ण पदक पर रहेगा। वो दृश्य फिर से खींचने की कोशिश प्रेरणा शर्मा द्वारा।
3: इट वॉज एन इनक्रेडिबल डे फॉर इंडिया इन द बॉक्सिंग रिंग एज वेल। टू रिकैप द एक्शन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन, द इंडियन बॉक्सिंग कंटिंजेंट पुट ऑन एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंसेस, लॉकिंग इन 3 मेजर मेडल आउटकम्स। इन द वुमेन 65 kg सेमीफाइनल, परवीन हुडा डिलीवर्ड अ डोमिनेंट डिस्प्ले, डिफीटिंग चाइनाज ली शू 5-0 टू स्टॉर्म इन टू द फाइनल। दैट फर्स्ट हाफ विन गारंटीड हर एटलीस्ट अ सिल्वर मेडल, पुटिंग इंडिया विदिन टचिंग डिस्टेंस ऑफ अनदर गोल्ड। ओवर इन द मेंस 80 kg सेमीफाइनल, अंकुश पंघाल पुट ऑन अ मास्टर क्लास, पुलिंग ऑफ अ ब्रिलियंट कमबैक टू आउटपंच उज़्बेकिस्तान्स फासलुद्दीन। हिज विक्ट्री सिक्योर्ड हिज प्लेस इन द फाइनल एंड अश्योर टीम इंडिया ऑफ अनदर कंफर्म्ड सिल्वर मेडल एट मिनिमम। एंड इन द मेंस प्लस 90 kg सेमीफाइनल, हेवीवेट स्टार नरेंद्र बरवाल स्टूड टो टू टो इन अ फियर्स बैटल अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियन एबेक ओरलबे। डिस्पाइट अ करेजियस एफर्ट, बरवाल वाज एज्ड आउट, साइनिंग ऑफ विद अ हार्ड had earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring. Erwin Huda delivered a dominant display, defeating China's Li Shu 5-0 to storm into the final. That first half win guaranteed her at least a silver medal, putting India within touching distance of another gold. Over in the men's 80kg semi-final, Ankush Panghal put on a masterclass, pulling off a brilliant comeback to outpunch Uzbekistan's Fazliddin. His victory secured his place in the final and assured Team India of another confirmed silver medal at minimum. And in the men's plus 90kg semi-final, heavyweight star Narinder Barwal stood toe-to-toe in a fierce battle against the world champion Ebek Orelbe. Despite a courageous effort, Barwal was edged out, signing off with a hard-earned bronze medal for the nation. His second consecutive Asian Games bronze. Two spots booked in the gold medal finals and a bronze logged in from earlier today. What a phenomenal show by our boxers inside the ring.
2: आज रिकर्व की एकल स्पर्धाएं थीं। धीरज देव बोमरा से तो उम्मीदें स्वाभाविक थीं, लेकिन नीरज ने भी शानदार तीर चलाए और कुमकुम ने कमाल कर दिया, यानी तीन धनुर्धर चिड़िया की आंख, यानी स्वर्ण पदक की राह में क्वार्टर फाइनल तक पहुंच गए। और माइक की कमान मुदिता के पास आप तक ये विवरण पहुंचाने के लिए।
0: तीरंदाजी में धीरज बोमदेवरा और नीरज चौहान ने पुरुषों की रिकर्व एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। नीरज चौहान ने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता रहे कोरिया के किम जे देओ को 6-4 से पराजित किया। वहीं टॉप सीड और मौजूदा एशियन चैंपियन धीरज बोमदेवरा ने ताइपे के चेंग शियांग हुई पर 6-2 से जबरदस्त जीत दर्ज की। अगले राउंड में सेमीफाइनल स्पॉट के लिए वर्ल्ड कप फाइनल चैंपियन धीरज का मुकाबला उज्बेकिस्तान के अमीर खून सादिकोव से और नीरज चौहान का भूटान के लैम दोर्जी से होगा। वहीं कुमकुम अनिल मोहोद महिलाओं की रिकर्व इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में कुमकुम का मुकाबला रिपब्लिक ऑफ कोरिया की कांग च्याय यंग से होगा। यंग ने भारत की ही दूसरी तीरंदाज कीर्ति शर्मा को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है।
2: स्क्वाश में महिला टीम पूरे रॉ में दिख रही है, नए स्टार्स पैदा कर रहा है ये गेम्स। 18 बरस की अनहत सिंह तो स्क्वाश की नई पोस्टर गर्ल बन गई हैं। महिलाओं का जलवा आज भी जारी रहा। खुलासे के साथ मुदिता।
0: भारतीय महिला स्क्वाश टीम ने अपने आखिरी पूल सी मैच में ईरान को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। तन्वी खन्ना ने ईरान की नरगिस सुल्तानी के खिलाफ मैच जीता, जो खेल के बीच में ही रिटायर हो गईं। अनाहत सिंह ने फरिश्ते इख्तदारी को सीधे गेमों में 11-5, 11-4, 11-7 से शिकस्त दी। वहीं जोशना चिनप्पा ने भी अपना मैच ईरान के खिलाफ 11-1, 11-3, 11-9 से जीत कर 3-0 का क्लीन स्वीप पूरा किया। पूल सी में टॉप करने के बाद भारतीय महिला स्क्वाश टीम अब क्वार्टर फाइनल में सिंगापुर से मुकाबला करेगी।
2: हाल ही में हुए डेविस कप मुकाबले में सुमित नागल दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी से हार गए थे और आज भी विपक्षी कोरिया से ही था, लेकिन सुमित के रैकेट के इरादे कुछ और थे। दूसरे राउंड के मुकाबलों में और भी भारतीय खिलाड़ी कोर्ट पर उतरे। टेनिस पर आज की कहानी अभिनव कुमार झा से।
4: एशियन गेम्स में टेनिस खिलाड़ियों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहा। पुरुष एकल के दूसरे दौर में डीके सुरेश ने इंडोनेशिया के गुनावान त्रिसमोहन तारा को कड़े मुकाबले में 7-5, 7-6 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वहीं सुमित नागल ने बारिश के कारण दो दिन तक चले मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सियोंग चान होंग को 6-4, 6-0 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। उनका अगला मुकाबला उज्बेकिस्तान के सरगेई फोमिन से होगा। आज भारतीय खिलाड़ियों के डबल्स मुकाबले भी कार्यक्रम में थे। पुरुष डबल्स के दूसरे राउंड में यूकी भामरी और डीके सुरेश की जोड़ी का सामना कजाकिस्तान की जोड़ी से हुआ, जहां भारतीय जोड़ी ने 6-1, 7-5 से मैच अपने नाम किया। जबकि अनिरुद्ध चंद्रशेखर और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना नेपाल के अभिषेक बस्तौला और प्रदीप खड़का से होना था, जहां पूरे मुकाबले में एक तरफा तरीके से 6-2, 6-1 के साथ भारतीय जोड़ी ने जीत दर्ज की। अब बात करें मिश्रित डबल्स की, तो मिश्रित डबल्स के पहले राउंड में अंकिता रैना और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी का सामना हांगकांग के यूडीस चोंग और कैरन थॉम्पसन से हुआ, जिसमें 4-6 और 4-6 के सीधे सेटों से भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा और इस प्रकार मिक्स डबल्स की इस जोड़ी का सफर एशियन गेम्स में यहीं समाप्त हुआ। हालांकि यूकी भामरी और ऋतुजा भोसले के रूप में मिक्स डबल्स में भारतीय चुनौती अभी कायम है।
2: वॉलीबॉल में पूल सी में आज एक सुपर रोमांचक मैच हुआ। भारत कुवैत से पहले दोनों सेट हार बैठा, लेकिन इसके बाद वो जुझारूपन और संघर्ष दिखाया कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। भारत अपने पूल में टॉप पर और माइक पर प्रेरणा शर्मा।
3: इंडिया हैव प्रोड्यूस्ड अ सेंसेशनल कमबैक टू डिफीट कतर 3-2 इन देयर फाइनल पूल सी एनकाउंटर। इंडिया हैड ऑलरेडी बीटन वियतनाम एंड हांगकांग चाइना 3-0 इन देयर ओपनिंग मैचेस, बट कतर

0: provided a much tougher challenge. They edged the opening set 28-26 after India missed two set points and then took the second 27-25 despite India building a 4-point lead midway through the set. Two sets down, India showed tremendous composure to turn the match around. They kept their hopes alive by taking the third set 25-23 before dominating the fourth to win 25-20 and level the contest. That sent the match into a deciding fifth set, which turned into another dramatic battle. India held their nerve in their extended tiebreak to win 24-22 and complete a stunning reverse sweep. With three wins from three matches, India finished unbeaten at the top of Pool C and advanced to the quarterfinals in style.
1: केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा। केनो स्लालोम बहुत दर्शनीय होती है। तेज बहाव वाले पानी में नाव तेज और संतुलित तरीके से खेना और साथ ही लटकते हुए द्वारों के बीच में से। केनो और कयाक में आज क्या हुआ, बता रहे हैं अभिनव कुमार झा।
2: केनो स्लैलम में भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। पुरुष कयाक सिंगल हीट्स में हितेश केवट ने 118.22 सेकंड के साथ आठवां स्थान प्राप्त किया, वहीं प्रद्युमन सिंह राठौड़ ने 127.70 सेकंड के साथ दसवां स्थान प्राप्त कर सेमीफाइनल राउंड के लिए अपनी जगह पक्की की। बात करें महिला कयाक सिंगल हीट में तो शिखा चौहान ने भी 344.87 सेकंड के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि महिला सिंगल में पल्लवी जगताप और रीना सेन ने हिस्सा लिया था। जहां पल्लवी जगताप ने सातवां स्थान प्राप्त करके तो वहीं रीना सेन ने नौवां स्थान प्राप्त करके सेमीफाइनल के लिए अपना नाम दर्ज कराया।
1: बहाव वाले पानी से अब चलते हैं अपेक्षाकृत शांत समंदर की ओर। मौसम और बारिश ने सेलिंग में आज खासा व्यवधान डाला। सर्फिंग में एक ही भारतीय स्पर्धा में बचा था। आज क्वार्टर फाइनल पुरुष शॉर्टबोर्ड में लहरों से उनकी गुफ्तगु कैसी रही, जानते हैं अभिनव से।
0: Looking back at the earlier action from Pacific Long Beach in Tahara, surfing made its official Asian Games debut, a huge milestone for the sport. In the men's shortboard quarterfinals, Heat 4, India's Kishore Kumar Anbarasu went head-to-head against Toby Espejon of the Philippines. Kishore put up a spirited effort on the waves, finishing with a score of 5.37 to Espejon's 8.53, which unfortunately ended India's historic run just shy out of the medal rounds. Even though the campaign came to a close, Kishore's quarterfinal appearance marked a landmark moment for Indian surfing.
1: आज से साइकिलिंग ट्रैक की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं। भारतीय दल में कुल 14 सदस्य हैं। कई स्पर्धाओं में भारतीय साइकिल सवार हवा से बातें करने की कोशिश करते दिखे। विवरण के साथ एक बार फिर अभिनव।
2: ट्रैक साइकिलिंग में भारत के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। महिला टीम स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में सेलेस्टिना, सरिता कुमारी, कीर्ति रंगास्वामी चिका और त्रिशा पॉल की भारतीय टीम छठे स्थान पर रही, जिसकी बदौलत उन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही चाइनीज ताइपे की टीम से हार का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसा ही सूरत हाल पुरुष टीम स्प्रिंट का भी रहा, जहां रोजित सिंह यांगलेम, डेविड बेकहम, एल्का टोचोंगो और रोनाल्डो सिंह लेतोन जाम की टीम को चाइना से हार के एशियन गेम्स से बाहर होना पड़ा। आपको बता दें श्रोताओं की इसी चाइनीज टीम ने इस इवेंट में यानी पुरुष टीम स्प्रिंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। हालांकि इस इवेंट में भी क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय टीम ने सातवें स्थान पर रहकर फर्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वहीं बात करें महिला टीम परशूट में तो हर्षिता झाकर, पूजा बबन डानोले, मीनाक्षी और स्वास्ति सिंह की भारतीय टीम को फर्स्ट राउंड में ज्यादा समय लेने के कारण बाहर कर दिया गया, किंतु दिन की शुरुआत इन्होंने भी क्वालिफिकेशन राउंड में क्वालिफाई करके की थी, जहां इन्होंने पांचवां स्थान हासिल किया था।
1: कुराश में कल एक पदक आया था और आज अंतिम भारतीय एंट्री भी स्पर्धा में थी। हुआ क्या, बता रही हैं मुदिता।
3: कुराश में पुरुषों के 66 किलोग्राम भार वर्ग में विपिन कुमार का अभियान राउंड ऑफ 16 में खत्म हो गया। वे साउथ कोरिया के यून ह्यूनसो से 0-3 से हार गए और इस नतीजे के साथ गेम्स में उनका इंडिविजुअल कैंपेन खत्म हो गया। इसके पहले कुराश में पिंकी बलहारा ने महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था।
1: स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग के बारे में जानते हैं आप? आज की स्पर्धा की जानकारी अभिनव से।
2: स्पोर्ट क्लाइंबिंग की स्पर्धाओं में भारत की नजरें खास तौर पर महिला स्पीड क्लाइंबिंग पर रहीं। भारत की 19 वर्षीय जोगा पूर्ति ने अपने एशियाई खेल पदार्पण में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में 7.28 सेकंड के साथ 9वां स्थान हासिल करके महिला स्पीड क्लाइंबिंग के क्वार्टर फाइनल में तो जगह बनाई ही, साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी दोबारा से अपने नाम किया। स्पीड क्लाइंबिंग में खिलाड़ी 15 मीटर की एक समान दीवार पर सबसे तेज समय में ऊपर पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसलिए शुरुआत, गति और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण होता है। महिला स्पीड का क्वालिफिकेशन नागोया के पोर्ट में आयोजित किया गया। भारत के नजरिए से जोगा का क्वार्टर फाइनल में पहुंचना स्पोर्ट क्लाइंबिंग में देश की बढ़ती मौजूदगी का अहम संकेत है।
0: India has jumped from the 12th position to the 10th position with the courtesy of 2 gold medals today. India's total medal tally now stands at 52 medals, broken down into 6 gold, 21 silver and 25 bronze. China leads the table with 143 gold, 62 silver and 49 bronze, followed by Japan in second with 45 gold, 71 silver and 67 bronze medals, and the Republic of Korea in third with 24 gold, 27 silver and 44 bronze medals.
1: कल कुश्ती आरंभ होगी जिसमें पदकों की खासी उम्मीद है। निशा और सुनील कुमार मैट पर होंगे। महिला हॉकी सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से भिड़ंत होगी। बॉक्सिंग में प्रिया और लवलीना सेमीफाइनल जीतने के प्रयास करेंगी। शूटिंग में 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश होंगे और मिक्स्ड ट्रैप स्पर्धा भी होगी। आर्चरी में कंपाउंड के मुकाबलों में भारतीय पदकों की ओर बढ़ने के प्रयास करेंगे। स्क्वैश में महिला टीम सिंगापुर से भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। जूडो भी कल शुरू होगा और गोल्फ भी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही मैदान पर होंगे। इसके साथ ही ई स्पोर्ट्स, सेलिंग, कैनो स्लालोम और साइकिलिंग में भी भारतीय खिलाड़ी दिखेंगे।
4: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

एफएम पे 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 10:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं धाम गीतादि कार्यक्रम का शेष भाग। ये लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुशल की आवाज में।

श्रोतो करनैल राणा की आवाज में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का धाम गीता दी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

शो तो कभी कभी प्यार की सबसे खूबसूरत बात उसका इंतजार होता है, वो इंतजार जिसमें हर आहट किसी अपने के आने का एहसास दिलाती है।

हर हवा का झोंका एक संदेश लेकर आता है और दिल बस यही कहता है कि शायद अब वो पल दूर नहीं। पुरानी यादों और अनकहे जज्बातों की इसी मीठी दुनिया में खामोशी से मोहब्बत की कहानी कहता है।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज।
1: कहीं अब न जा दिल

एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं तब शब्दों की ज़रूरत कम और एहसासों की अहमियत ज़्यादा हो जाती है। इन्हीं कोमल जज्बातों और मोहब्बत की मीठी खामोशी को बयां करता है ये खूबसूरत गीत। तो आइए प्यार की उन अनकही बातों को महसूस करते हैं जो आँखों से दिल तक का सफ़र तय करती हैं।

0: जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: श्रोता, मोहब्बत में इंतजार का अपना ही एक रंग होता है। कभी कोई पास होकर भी दूर लगता है तो कभी दूर रहकर भी हर धड़कन में बस जाता है। ऐसे ही पलों में दिल बार बार उसी शख्स को पुकारता है जिसकी याद हर खामोशी में साथ रहती है। जब यादें दिल के दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो जज्बात गीत बनकर होंठों पर आ जाते हैं। इसी मीठे इंतजार और प्यार भरी पुकार को सुरों में सजाया है इस खूबसूरत नगमे को।

क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान

दोस्तों, मोहब्बत हमेशा इजहार की मोहताज नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां दिल हर पल किसी को याद करता है, उसकी खुशियों की दुआ करता है, लेकिन अपने जज्बातों को खामोशी की चादर में समेटे रखता है। ऐसी मोहब्बत में चाहत तो बेइंतहा होती है, मगर कोई शिकायत नहीं, कोई जिद नहीं। इन्हीं अनकहे एहसासों और दिल की गहराइयों में छुपी सच्ची मोहब्बत को बखूबी बयान करता है ये खूबसूरत गीत। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो प्यार की खामोश जुबान को आवाज देता है।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 11:05 पर
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में आज भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का संकल्प साकार करने में भारतीय नौसेना रणनीतिक आधार के रूप में काम कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है।
2: इंडिया रिजेक्ट्स दी अनवारंटेड रेफरेंसेस।
3: भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में अनुचित संदर्भों को खारिज करता है। ये भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है और इस विषय पर किसी भी भारी पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: नो एक्सटर्नल पार्टी हैज एनी लोकस स्टैंडाई ऑन दिस इशू।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की सीमा पार आतंकवाद संबंधी टिप्पणी पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्री ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। अमेरिका के 100% टैरिफ लगाए जाने के विषय पर श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। फारस की खाड़ी में भारतीय जहाजों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि वहां भारतीय ध्वज वाले 6 वाणिज्यिक जहाज मौजूद हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इसमें फसल प्रबंधन, वैज्ञानिक भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को मजबूत करना शामिल है। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 100% सरकारी खरीद सुनिश्चित की जाएगी।
4: किसान को ठीक दाम मिल जाए हम सबकी जिम्मेदारी है और इसमें दोनों व्यवस्था, एक MSP और एक विदाउट MSP, हम बाजार से कैसे जोड़ दे किसानों को। ये तय किया तुअर, मसूर, उड़द 100% खरीदेगी सरकार। खरीदने की तैयारी ठीक से करके रखें जिससे 48 घंटे में पेमेंट हो जाए।
1: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में पुरस्कार पाने वाले 20 कलाकारों को सम्मानित किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन ललित कला अकादमी ने किया। इस मौके पर श्री शेखावत ने रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा ही संस्कृति पहल इसका अच्छा उदाहरण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में श्रम संवाद नाम से जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक निजी कानून फर्म के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं और उद्योग से जुड़े लोगों को नए श्रम कानूनों के प्रमुख प्रावधानों और उनके पालन से जुड़ी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक करना था। नागालैंड में कोहिमा पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की 7,740 बोतल भारतीय निर्मित विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आज जारी एक बयान में बताया कि ये खेप कल दोपहर जुब्बा थाना क्षेत्र में नियमित जांच के दौरान एक ट्रांसपोर्ट वाहन से पकड़ी गई। पुलिस ने वाहन चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 8 पदकों के साथ शीर्ष 10 में जगह बना ली है। महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। इसी स्पर्धा में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 26 कांस्य सहित 53 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Renuka. Defense Minister Rajnath Singh has emphasized that India must make geostrategic thinking and contingency planning as integral parts of its preparedness amid challenges arising from evolving technology, unpredictability, and geographical proximity. Addressing the Indian Navy Commanders Conference in New Delhi today, Mr. Singh said the country's goal is clear that preparedness must reach the crisis point before the crisis itself reaches the doorstep. The minister underlined that the ongoing Operation Urja Suraksha has once again demonstrated the Indian Navy's professionalism and operational readiness to protect the country's energy supply lines and national interests. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said the government is working on a multidimensional strategy to ensure that farmers receive fair and remunerative prices for their produce. The strategy includes strengthening post-harvest management, scientific warehousing and marketing systems. Addressing the second day of the National Agriculture Conference, Rabi Campaign 2026, in New Delhi today, Mr. Chauhan assured 100% government procurement of Tur, Urad and Masoor at minimum support price.
6: It is our collective responsibility to ensure that farmers get a fair price for their produce. We need to connect farmers with the market through both systems, with MSP and without MSP. It has been decided that the government will purchase 100% of Tur, Masoor and Urad. However, whether it is a Kharif or a Rabi crop, the procurement arrangement should be made properly in advance so that farmers receive payment within 48 hours.
5: The minister said India will also leverage the new market opportunities emerging from international free trade agreements and help farmers secure better returns for their produce and enable India to emerge as a major food basket for the world. The Election Commission today issued notification for biennial elections for 11 Rajya Sabha seats. This includes 10 seats in Uttar Pradesh and 1 seat in Uttarakhand. BJP leaders and union ministers Hardeep Singh Puri, B.L. Verma, Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav, Ramji of BSP and 6 others are completing their terms on 25th of November. The commission has also issued notification for bipoll in 1 seat of Rajya Sabha in West Bengal. Finance Minister Nirmala Sitharaman today met her Qatari counterpart Ali bin Ahmed Al Kuwari on the sidelines of the AIIB annual meeting in Doha. Both leaders discussed expanding India's UPI payment system across Qatar and strengthening financial cooperation between the two countries. The talks also focused on the implementation of Qatar's $10 billion investment commitment in India, greater engagement with the National Investment and Infrastructure Fund, and finalization of the bilateral investment treaty. India has rejected the unwarranted references made by Turkish President Tayyip Erdogan on Jammu and Kashmir during his UNGA address. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this is a matter pertaining to India's territorial integrity and sovereignty and no external party has any locus standi on the issue. On the IBSA statement, Mr. Jaiswal noted that a meeting at the level of foreign ministers was held between India, Brazil and South Africa on the sidelines of the UN General Assembly in New York. On the comments made by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on cross-border terrorism, Mr. Jaiswal highlighted External Affairs Minister's remarks on cross-border terrorism, terming it a cause of major concern and that countries need to come together to fight the global menace. In the Asian Games 2026, India today delivered a strong performance, adding 8 medals, including 2 gold, 1 silver and 5 bronze medals in relay, shooting, athletics and boxing. India won women's 4x400 meter relay gold, clocking 3:29.69 at Nagoya in Japan. India also bagged a bronze in men's 4x400 meter relay and another bronze in mixed 4x100 meter relay. Earlier, Neeru Dhanda made history by becoming the first Indian shooter to win gold in the women's trap individual event in Japan. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।